0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए, और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, महीने के हिसाब से वसंत ऋतु, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है, और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के आंगन सोते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना,
एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के

तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रसुंड सूर्य की चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना, इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं। और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारविंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों, अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना। तो माँ के लिए ये मंत्र, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी, यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है, बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है, यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीजों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है, और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख

बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं, तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं, तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गो माता की। कहते हैं ना कि गो माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इनके श्री पग जहाँ भी पड़ते हैं वो जमीन अपने आप में ही माना जाता है कि गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, क्योंकि इनके खुर से ही गंगा का उद्गम माना गया है। सर्व काम दूधे देवी सर्व तीर्थी भीषे चिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमोस्तुते। ये मंत्र गाय की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी तीर्थ उनमें निवास करते हैं, यानी हमारी गौ माता में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

0: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

आइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

अरे भाई हाँ कह तो दिया है, और आज वैसे भी हाँ कहने के बाद संडे आ गया है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके स्पेशल डे संडेज में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। तो चलिए भाई बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, लेकिन पहले इस गाने को मुकम्मल तौर पर सुन लेंगे, वापस से आते हैं। तब तक के लिए हम एक बार और आपका वेलकम करते हैं।

0: क्या बात है, वाह वाह। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपकी मॉर्निंग जॉक अर्जुन अदनान। एंड यस, अब वक्त हो गया है आपको बताने का कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, और आज का थॉट ऑफ द डे आपको क्या पैगाम देता है जो आपके संडेस को बनाता है और भी ज्यादा स्पेशल।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, सो भाई ये चलिए, अब वक्त हो गया है आपको ये बताने का कि आज का मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे क्या है। सो आज का जो मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे है वो बड़ा ही खूबसूरत है अपने आप में, और आज का मॉर्निंग थॉट कहता है, सबसे बड़ी वापसी खुद को फिर से महसूस करना है। थॉट क्या कह रहा है? सबसे बड़ी वापसी खुद को फिर से महसूस करना है। और वापसी का मतलब हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ का लौट आना, फलाने की वापसी हो गई, हम फिर वहाँ से वापसी कर लिए, ये तो उसकी वापसी है। इस तरह के बहुत टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम अपनी जनरल लाइफ में, लेकिन आज जो वापसी की बात हम कह रहे हैं वो खुद को महसूस करने की बात कर रहे हैं, वो भी फिर से। कई बार ऐसी हालात आते हैं जो आपको विपरीत कार्य करने पड़ते हैं, मतलब जो आप नहीं चाह रहे होते हैं, जो बताया जाता है, और कई बार करते करते जब ये वक्त इतना लंबा हो जाता है तो आप कहीं भूल से जाते हैं, खुद को कहीं खुद को छोड़ से आते हैं। और शायद यही वो वजह है जब आप बाद में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, और जब खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं तो शायद वापसी की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हम कहते हैं कि अरे वाह, जब हमने ये काम किया, हम थोड़ा सा बाद में इन चीज़ों को समझ पाए, तो वहाँ से हमारी वापसी हुई, वहाँ से हमने खुद को महसूस किया। यानी कुछ ऐसा काम था, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो हम सोचते तो थे लेकिन हम महसूस नहीं कर पाए थे, राइट? यही वो बात है जो आज महसूस कराने वाली है। यानी एक अरसे बाद, एक वक्त बाद, एक वक्फे के बाद अगर हम खुद को महसूस कर रहे हैं तो ये वापसी ही सबसे बड़ी वापसी है जिसमें हम खुद को फिर से महसूस कर रहे हैं। सो कोशिश करते हैं ना खुद को वापस से महसूस करने के लिए। कहीं हम दौड़ते भागते अपने को इतना साइड तो नहीं कर चुके हैं कि खुद को भूल गए हों? अगर ऐसा है तो अब वक्त है खुद को महसूस करने का, खुद की फिर से वापसी का। सो चलिए, आज का संडेज स्पेशल थॉट ऑफ द डे कैसा लगा मुझे ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, क्या खुद की वापसी के लिए अब आप तैयार हैं? और कौन नहीं होगा भाई कि जो खुद को वापस से पाएगा और बेहद खुश होगा, है ना? बहुत प्यारी बात है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अब आपको कैसा लगा ये आपको ज़रूर समझना होगा। Stay tuned only on Radio Gyanastha 89.6 FM.

0: हाय, क्या बात है भाई। याद आ गई, याद आ गई। और हाँ, याद आ गई। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गुंडा शहर की धड़कन। सो आइए भाई, फिलहाल वापस से आ गए हैं और आने के बाद हम वापस से वही कह रहे हैं कि आपको कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे और कैसी रही मॉर्निंग, आपने बताया है। लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सीधे जुड़ करके सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई इसको लेकर के आप लोगों ने लिखा भी है, और क्या लिखा है ये भी बताते हैं। सो यस, जो सबसे पहला कमेंट आ रहा है वहाँ से शुरुआत करते हैं, और वो आया सविता दुबे जी का, लिखा है सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। और प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही प्रीति जी ने बताया है आज के थॉट ऑफ द डे के बारे में, लिखा है ऑसम थॉट, अपनी ज़िंदगी में वापसी भी कभी कभी बहुत कारगर होती है। डेफिनेटली होती है, और कभी कभी नहीं बल्कि खुद की वापसी तो हमेशा ही कारगर ही सिद्ध होती है। वजह कि भाई ऐसी कुछ बातें होती हैं, ऐसा कुछ दौर आता है बीच में जब हम करते करते ये भूल जाते हैं कि हम किधर हैं, हम कहाँ हैं, बस कर रहे होते हैं। उस बीच में अगर खुद की वापसी होती है फिर से, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। यानी सबसे बड़ी वापसी जो कहलाती है वो खुद को फिर से महसूस करना ही होती है। शुरुआत में क्या होता है, बचपना होता है, अपने मन से चीज़ें होती हैं, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम ये हमेशा इसकी मेमोरीज़, इसकी यादें रहती हैं, लाइफ टाइम रहती है। एंड जब इसको खो जाते हैं, जब हम फील्ड में निकल जाते हैं, हम कहते हैं कि बहुत ज़िम्मेदार हो गए, उसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स है ज़िंदगी से, कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं। एंड इसी बीच में जब हम खुद को महसूस करने लग जाते हैं, शायद किसी शाम की वजह से, धूप की कुछ किरणों की वजह से, खिड़की के पास बैठने की वजह से, कुछ गानों को सुन लेने की वजह से, थोड़ा सा वॉक कर लेने की वजह से, किसी से मिल लेने की वजह से, कोई किसी सिचुएशन के वापस से रिक्रिएट हो जाने की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। और जब हम खुद को वहाँ से फिर से समझ पाते हैं कि हम महसूस कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम वापस से खुद को पा रहे हैं, तो वो वापसी सबसे बड़ी वापसी होती है, जहाँ पर हम खुद को वापस से महसूस कर रहे होते हैं, राइट। इसी बात पे सविता दुबे जी भी लिखती है कि एक टाइम पे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती थी, लेकिन आज जीना चाहती हूँ। आज का सुविचार बहुत अच्छा आया। आज अगर आप जीना चाहते हैं तो कल आपकी शानदार जिंदगी आज आप याद करेंगे। हम भले ही बढ़ते चले जाते हो यार, कभी सोचा है, गौर किया है, हम हमेशा बढ़ते चले जाते हैं ना, और हम ये भी कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, हम ये करके दिखाएंगे, करके दिखाने पे हम पूरी दुनिया में ढिंढोरा भी पीटते हैं, दुनिया भी कहती वाह वाह कर दिखाया। लेकिन ये शुरुआत अगर आज नहीं होती तो ये कर दिखाना तो इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो होता ही नहीं। तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज अगर आपने जीने की चाह शुरू की है, ये आपकी मंजिल से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यही दुनिया भर की सारी मंजिल आपको देने वाला है, और यही हमारे सबके साथ में है। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये छोटी भले ही दिख रही हो, लेकिन ये मंजिल से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और मंजिल ही ये लेकर आती है। तो आज की ये शुरुआत, आज की ये छोटी सी कोशिश बहुत प्यारी है, और यही जो बात है वो शायद हम समझ पा रहे होंगे, राइट। शैलेंद्र जी खजुराहो मध्य प्रदेश से भी आ गए हैं, और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग अदनान जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और आज वैसे भी 7th of June है, और आज है संडे, सो हैप्पी हैप्पी संडे आप सभी लोगों को। चलिए संडे तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत सारी बात करेंगे, और 10 से 11 तो आपका वैसे भी स्पेशल हो जाएगा, गायक गुंडा वेदार जी अदनान। सो आज हम कोशिश करने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, सो इसलिए आज एक थोड़ा सा कम टाइम में ही सबसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था भाई, बहुत सारी कॉल्स रह गई थी, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर पाएँ, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात को कह पाएँ, और जो वो महसूस करते हैं उस पर वो बात अपनी रख पाएँ। फ़िलहाल पार्थ आपका स्वागत है, लिखा है वेरी गुड मॉर्निंग अदनान सर, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं आपका भी मॉर्निंग वाले शो में। और बहुत ही प्यारे से छुटकू से पार्थ जो हैं वो डिस्प्ले प्रोफाइल यानी DP में नज़र आ रहे हैं, और यूं ही क्यूट क्यूट से रहे, ताउम्रिंग की मासूमियत बरकरार रहे, खुशियां अपार रहे आपकी पूरी फैमिली में। एंड यस, उम्मीद करता हूं कि आप पूरी फैमिली बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं जो इस वक्त फ्रिक्वेंसी पर हैं और उन्होंने अपने ट्रांजिस्टर से जो है ट्यून कर रखा है, अपने काम में हैं, अपने किचन में हैं, खेतों में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं,
आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। आज संडे तो होने तो बहुत कुछ वाला है धमाका, बस बने रहना है अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में और साथ ही साथ एंजॉय करते रहना है ये बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स ओनली ऑन गुंडा एफएम 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, और बातचीत करते करते देखिए ना, शहर ने भी कुछ इशारा कर दिया है। हवाएं थोड़ा सा और तेज हो गई है, धूप भी थोड़ा सा और तेज हो गई है, और कहा है मुझसे, चलो अब बता भी दो ना क्या है हमारी सिटी।

0: अपडेट। सो यस, अब हम लोग करते हैं सिटी अपडेट की तरफ और बताते हैं कि भाई आपके शहर गोंडा में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो सिटी अपडेट में आपको बताते हैं कि अब से हर संडे यानी रविवार को मिलेगी मुफ्त जांच सुविधा। कहाँ? बेलसर में। सो बेलसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगूरा में अब हर संडेज में होने वाले मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में मुफ्त जांच की सुविधा मिलेगी। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण भी किया जाएगा। सो CHC परसपुर के अधीक्षक डॉक्टर लवलेश ने बताया कि CMO के निर्देश पर स्वास्थ्य मेले की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया गया है। मेले में परामर्श के साथ ही जांच की सुविधा मिलेगी। टेक्नीशियन ने की भी उनकी तैनाती की गई है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सुबह ही भले ही गोंडा में ना हुई हो बारिश, लेकिन कल गोंडा के अलग अलग जगहों पे बारिश कई जगह देखी गई है। सो कल बहुत मिला जुला माहौल था, यानी कल उमस भी काफ़ी जगह थी और कई जगह ठंडा था। सो जहां बारिश हुई वहां गर्मी से राहत मिली। जैसे कि अगर हम बताएं गौरा चौकी, जयप्रभा ग्राम, तो उसके आसपास के एरियाज में जो है वो कल बारिश भी अच्छी खासी देखी गई। चूँकि गौरा चौकी में दोपहर करीब 1 बजे से आसमान में काले बादल छा गए थे, इसके बाद 20 मिनट तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। सो तेज़ हवाओं के साथ इस बारिश से मौसम जो है वो सुहावना हो गया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन गोंडा शहर की बात करें चूँकि यहाँ नहीं हो पाई थी, सो उमस भी देखी गई थी। इस तरह से आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है वो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो गोंडा से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसको लेकर के है। सो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स की फैसिलिटी के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ के बीच में एक विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सो ये ट्रेन जो है वो संडे 7 जून से 10 जून तक चलेगी, जिससे गोंडा समेत आसपास के ज़िलों के हज़ारों जो कैंडिडेट्स हैं इनको राहत मिलने की बात बताई गई है। सो पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया है कि 05031 गोरखपुर लखनऊ जंक्शन अनारक्षित विशेष ट्रेन 7 से 10 जून तक हर रोज़ संचालित होगी, यानी 3 दिन तक। गोरखपुर से शाम 7 बजे चलकर रात 9:45 बजे गोंडा पहुँचेगी और यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होगी। अगले दिन रात 12:55 पर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी और वापसी में 05032 लखनऊ जंक्शन गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन जो है वो 7 से 10 जून तक लखनऊ से शाम 6:15 पर चलेगी। सो ये ट्रेन रात में 9 बजे गोंडा स्टेशन पहुंचेगी और यहां से आगे गोरखपुर के लिए रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन का जो ठहराव है वो खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज, बाराबंकी और बादशाहनगर स्टेशन्स पर होगा। सो जो द्वितीय श्रेणी के हैं सामान्य 10 और SLRD के 2 कोच सहित 12 कोच इसमें लगाए जाएंगे। सो इस तरह से ये 3 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें गोंडा सीतापुर पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो 18 दिन के लिए फ़िलहाल निरस्त कर दी गई है। सो सीतापुर से गोंडा के बीच यात्री ट्रेन का संचालन जो है वो 18 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। ये फैसला जो इसका नॉन इंटरलॉकिंग का काम तेज़ी के चलते किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे की इस जो है अनाउंसमेंट से थोड़ा सा यात्री बेचैन भी हो गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गोंडा बुढ़वल सीतापुर के बीच में रेल पटरी पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। इस काम में जो है 22 से 10 जुलाई का जो काम है वक्त है वो प्रस्तावित है और इस वजह से ट्रेन नंबर 55091 अप और 55092 डाउन जो है वो यात्री ट्रेन का संचालन निरस्त कर दिया गया। ये ट्रेन सीतापुर से गोंडा के बीच में चलती है। यात्री ट्रेनें जो है 22 जून से 10 जुलाई तक बंद रहेंगी और वहीं इस ट्रेन के लिए बंद होने से यात्रियों के तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। उन्हें महंगे दामों पर बाकी जो साधन है वहां से यात्रा करनी पड़ सकती है और बड़े पैमाने पर यात्रियों को अब रोडवेज बसों का सफ़र करना होगा। सो इसके अलावा अब आपको बता दें नेक्स्ट अपडेट क्या है। सो किसान सम्मान निधि के लिए 30 तक करा सकते हैं आप EKYC। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किश्त है वो उसको लेने के लिए लाभार्थी किसानों को 30 जून तक EKYC और फार्मर रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है। उप कृषि निदेशक
संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया है कि भाई जो निर्धारित वक्त है उसकी सीमा तक ई के वाई सी नहीं कराने वाले किसानों को आने वाली किश्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। किसानों के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे फेशियल ई के वाई सी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके लिए जन सेवा केंद्रों पर बायोमेट्रिक ई के वाई सी कराई जा सकती है। जिन लाभार्थियों ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च के बीच में ई के वाई सी नहीं कराई है वो 30 जून से पहले ई के वाई सी और फार्मर रजिस्ट्री अपना पूरा कर सकते हैं। सो इस तरह से ये किसान सम्मान निधि योजना को लेने के लिए 30 तक के समय की बात हमने आपको बताई, यानी इस अपडेट में आपने जाना कि अब आपको जल्दी से इसमें अप्लाई कर देना जो हमारे किसान भाई हैं। इसके अलावा जन आरोग्य मेला लगाया जा रहा है आज सुबह 10 बजे से सिविल लाइंस समेत ज़िले के 55 जो पीएचसी हैं वहां पर ये जन आरोग्य मेला इसका आयोजित किया जा रहा सुबह 10 बजे से। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है उसमें नर्सिंग में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पहुंच गए हैं 4368 कैंडिडेट्स। जी हाँ, सो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कल शनिवार को ज़िले के 9 परीक्षा केंद्रों पर की गई और इसमें 4368 कैंडिडेट्स का नाम रजिस्टर्ड था। एंड इसके अलावा अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं भाई अगली अपडेट कहां से आ रही है। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो अघोषित बिजली कटौती से जो कंज्यूमर्स परेशान हैं उसको लेकर के भी आ रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और परसपुर नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में जो जारी है अभी अघोषित बिजली कटौती उसने काफ़ी परेशानी बढ़ा दी है, जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। सो ये रही आज की अपडेट जो आपकी सिटी से होती है। आई होप कि आपको सिटी अपडेट मिल गई होगी और ज़रूर पसंद आई होगी। सो फिलहाल अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और संडे स्पेशल शो आपने ट्यून किया अपने गोंडा एफएम 89.6 एफएम पर अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। सो फिलहाल सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए भाई, मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग वाली वाइब है और हमारा आपका साथ है।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

यस भाई, फिलहाल 9:59 हो गए हैं आपके 99.6 FM के स्टूडियो में। और मेरा आपसे ये सवाल है, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही 10 बजेंगे हम आपकी कॉल्स को उठाना प्रारंभ करेंगे। सवाल ये कि बचपन की वो कौन सी आदत है जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी, लेकिन आज वही सबसे बड़ी खूबी या फिर वो आपकी पहचान बन गई है। जी हाँ, सो देखिए, चूँकि अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत थी, बड़े बात करते थे हम, बीच में बोल दिया करते थे या बिला वजह यूं ही घुस के कुछ ना कुछ बात ही किया करते थे। सो बड़े बोलने की आदत थी और हमको इस पे डांट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। फिलहाल आज मैं रेडियो जॉकी हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ, आज बातचीत करना ही मेरा काम हो गया है। सो ये था कि बचपन की वो डांट थी, आदत थी मेरी, जो कि बचपन में जिसको लेकर के डांट पड़ती थी, लेकिन फिलहाल अभी वो मेरी पहचान है। सो आपके साथ ऐसा क्या था जो बचपन में जिसको लेकर के आपको सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी, आज वो आपकी या तो पहचान है या फिर वो आपकी ताकत है, क्या है या खूबी है आपकी? अगर कुछ भी ऐसा है तो आप जो है वो बता सकते हैं। सो चलिए फटाफट से अब कॉल करिए और बताइए कि भाई आपके बचपन की वो कौन सी आदत है जिसको लेकर आप बहुत डांट खाए हैं, लेकिन फिलहाल आज वो आपकी खूबी या आपकी पहचान भी बन गई है।

0: क्या बात है, वाह भाई भाई, बिल्कुल संडे वाली वाइब आने लग गई है। सो चलिए, सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, सवाल भी बहुत प्यारा है कि बचपन की वो कौन सी ऐसी आदत जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, लेकिन आज वही आपकी सबसे बड़ी पहचान है या फिर आपकी खूबी है। अब चूंकि आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हम सभी लिसनर्स से बात कर सके और सभी लिसनर्स को हम जोड़ सके अपने लाइव कॉल इन प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले लिसनर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई कॉल पर इस वक्त हमारे साथ कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
1: सूरज की किरणें छू जाए आपको, सूरज की किरणें छू जाए आपको, खुशियों भरा हर दिल हो आपका, बस दिल की यही चाहत है हमेशा आप मुस्कुराते हो। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग अनु, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमारा सवाल सुना। चलिए बताइए, कौन सी आदत है जिसके लिए सबसे ज्यादा डांट खाया है आपने और आज वो आपकी या तो खूबी है या तो आपकी पहचान है।
1: सर, आज ना मेरी खूबी भी है, मेरी पहचान भी है, और मैंने बचपन में डांटे भी बहुत खाई है। सबसे ज्यादा डांट तो मैंने खाई है ना बोलने के लिए और ज्यादा हंसने के लिए।
0: तो वो खूबी या पहचान कैसे है आपकी?
1: आज ना मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो आज मेरी आवाज ही, मेरी बातें करने का अंदाज ही मेरी पहचान है।
0: है? ये किसने कहा?
1: सारे रेडियो वाले जो सुनते हैं उसको रेडियो।
0: अरे रेडियो वाले बहुत मजाक करते हैं, सीरियस नहीं लेना है।
1: अच्छा, ये तो अभी पता चला।
0: अच्छा, तो यही आपको लगता है कि आप जब ज्यादा बातें करते उसके लिए आपको डांट पड़ती थी और यही आज आपकी पहचान है, राइट?
1: हाँ।
0: अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई और आदत?
1: एक हंसने वाली आदत।
0: हाँ, उससे क्या फायदा होता है?
1: उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, कभी कभी हंस दो तो डांट नहीं मिलती है।
0: अच्छा। तो भाई ये अनु जो है अपनी दो आदतों को लेकर के फिलहाल आ गई हैं और बता रही हैं कि दोनों आदतें इनके इस वक्त काम आ रही है जिसको लेकर के इनको बचपन में बहुत डांट पड़ती थी। चलिए हाँ। आपसे यही कहेंगे कि आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस आदत को जरूर बरकरार रखिए।
1: जी सर, वो तो हमेशा रहेगी, कभी कम नहीं होगी, वो तो बढ़ती जा रही है।
0: बेशक, एंड थैंक यू सो मच ये आदत बताने के लिए।
1: एक मिनट, मुझे भी बहुत बात करनी है।
0: बहुत आज बात नहीं हो पाएगी क्योंकि आज हम जल्दी जल्दी से कॉल लेंगे, बहुत सारी कॉल्स लास्ट टाइम छूट गई थी, आज सिर्फ हम क्वेश्चन का जवाब लेंगे फटाफट से। ओके
1: सर, बस मुझको थोड़ा सा बोलना है।
0: हाँ बताइए।
1: वो भी रिझारिया भाई के लिए बोलना है। और समझ लो मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, स्टूडियो में बैठी हूँ। पलके बिछाए हैं आपके स्वागत में, पलके बिछाए हैं आपके स्वागत में, गीतों की माला सरोए हैं आपके मनोरंजन में, उठाइए फोन झारिया जी, उठाइए फोन झारिया जी, लगाइए कॉल, बेकरार होके बैठे हैं स्टूडियो में सुनने के लिए भाई जी आपकी आवाज। आप सबसे पहले ही कॉल लगा लीजिया कीजिए, फिर हम कॉल लगाएंगे। वैसे भी अतिथि देवो भला, तो हम गोंडा वाले स्वागत के लिए बहुत आगे रहते हैं।
0: चलिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे।
1: और एक बात सर, जिस बार रिजारिया भाई कॉल पहले नहीं लगाए ना इस शो में, तो अगले 3 शो में सबसे पहले हम आएंगे, उसके बाद वो आएंगे, यही उनकी सजा रहेगी।
0: नहीं, ये तो आप पहले भी सजा बहुत शुरुआत से देते चले आ रहे हो, तो टॉर्चर कर रहे हो आप।
1: इसीलिए तो मैं पहले ही दिन आ गई थी, ये सबसे पहले दिन आओ, पहले ही रह जाओ।
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे बिहार को मैसेज किया।
1: मेरी सिस्टर भी थोड़ी सी बात करेगी, बस थोड़ा सा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दी हमारे लिसनर्स को।
1: रिवांशी।
0: हाय रिवांशी, कैसी हैं आप?
1: सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस आप बताइए कि आप कैसे हो।
0: बहुत बढ़िया, हम चाहेंगे कि रिवांशी अपनी कोई ऐसी आदत बताएं जिसको बचपन में बहुत डांट पड़ी और अभी फिलहाल वो पहचान है रिवांशी की या फिर वो खूबी है।
1: सर बोलने के लिए, मुझे बोलने के लिए बचपन में भी डांट पड़ती थी और अब भी डांट पड़ती है।
0: ये पारिवारिक प्रॉब्लम है क्या आप लोगों की? है सबको बोलने के लिए। अच्छा, सो अभी अभी उसका फायदा कैसे मिलता है?
1: बोलने के लिए ना, मैं जब बोलती हूँ तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे स्पीच अगर देती हूँ तो उसमें प्राइज मिलती है।
0: अरे वाह, क्या बात है, स्पीचेस में प्राइजेस भी मिलते हैं आपको?
1: हाँ।
0: वाओ, मतलब आपने
1: तो बोलती हूँ,
0: आपने डांट खाने वाली आदत का फायदा उठा लिया, राइट?
1: हाँ, बोलने वाली आदत का ना मैंने फायदा उठा लिया।
0: सही बात है, तो एक मिनट में आप कितने शब्द बोल सकते हैं?
1: एक मिनट में तो मैं एक पेज बोल बोल सकती हूँ और आपको कुछ सुनाना भी चाहती हूँ। आप टाइम देखिए, मैं देखिए कितनी देर में आपको सुनाती हूँ।
0: अच्छा, तो प्लीज जल्दी से सुनाइए क्योंकि हम फटाफट से बाकी कॉल्स भी लेंगे।
1: अच्छे भले होते हैं लोग, पर इसकी लत बेकार कर देती है। जो चखते हैं पान मसाले का रस, ये उनका दांत खराब कर देता है। बचपन में खाते सुपारी है, यही तो शुरुआत की बारी है। दूसरों को देखते हैं खाते, कहते अब भी मेरी भी चखने की बारी है। एक बार खा लेने से क्या होता है, इसी से तो लत की पड़ी बीमारी है। अब आगे पान मसाला खाने की बारी है, अब आगे दांत खराब करने की तैयारी है। गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट से घर खूब सजाते हैं, नहीं सोचते इससे क्या होगा। जहां बैठते वहीं सिगरेट जलाते हैं, खुद तो बीमारी गले लगाते हैं, दूसरों को भी इसकी खुशबू सुहाते हैं।
0: पूरा हो गया?
1: हाँ।
0: अच्छा। वैसे वो खुशबू नहीं होती है सिगरेट की, सिगरेट की कभी खुशबू नहीं होती है, सिगरेट की बड़ी खराब सी स्मेल होती है, उसको खुशबू नहीं कह सकते।
1: हाँ होती है, लेकिन जो लोग उसको पीते हैं ना उनके लिए वो खुशबू ही तो होती है। जिनको... लोगों के लिए जो नहीं उसका सेवन करते हैं उनके लिए तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा खराब होती है।
0: जो लोग पीते हैं वो तो देखते हैं, सामने भी चेतावनी होती है बट नहीं मानते, उनकी बात ही क्या किया जाए उनकी दरिया दिली की। राइट,
1: मैं पिछली बार आपसे बात करना चाहती थी, मैं बिजी थी, आपसे बात नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा मैं इस बार बात करके और आपको सुना दूंगी।
0: बहुत अच्छा है, और इस तरह की कोई भी आप कविताएं लिखती हैं तो प्लीज आप लाइव कॉल इन प्रोग्राम में हमको जरूर सुनाया करिए।
1: जी सर, और मैंने बहुत अभी और लिखा है, पर अब नेक्स्ट संडे के लिए।
0: हाँ पक्का, नेक्स्ट संडे के लिए हम जरूर रखेंगे, और तब तक आप और भी लिख लिए आगे के संडे के लिए। ओके, थैंक यू सो मच रेवांशी।
1: ओके सर,
0: बाय बाय, टेक केयर। सुबह ये तो थी रेवांशी जिनसे हमने बात किया, और चलिए अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल किसकी है और कौन है कॉल पे। हाँ जी हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, ये आवाज जानी और पहचानी दोनों है, ये किसकी है जानी?
2: बिल्कुल,
0: ये आवाज किसकी है जानी?
2: पूर्णिमा बोल रहे हैं सर।
0: पूर्णिमा की ही है, मैं तो पहचान गया था, बस आपसे ही नाम सुनना चाहता था।
2: आज मुझे ना संडे वाला गुड मॉर्निंग आपको विश करना था, वो मैं मैसेज से तो नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी।
0: अरे कोई बात नहीं, संडे वाला अर्ज करिए, हम सुन रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
2: तो प्रोग्राम तो मैं सुन रही थी, और गाने के लिए सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगी जो आपने सॉन्ग लिखे, जुबिन गर्ग का।
0: अच्छा, या अली गैंगस्टर मूवी का,
2: मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बहुत ज्यादा सही बात है, बहुत इस गाने की बात ही अलग है, मतलब इसका एक पूरा चार्म है।
2: जुबिन गर्ग का जब भी नाम आता है तो ये गाना मुझे लगता है नंबर एक पे हमेशा रहता है।
0: बिल्कुल नंबर एक पर रहता है, यही पहचान यहीं से उनको मिली, सही बात है।
2: जी, बहुत बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
0: बिल्कुल, सो प्यारी सी वो हमको आदत भी जरा बता दीजिए जिसके लिए आपको डांट पड़ती थी, फिलहाल वो आपकी खूबी बन गई है या फिर पहचान बन गई है?
2: वो तो अभी एक घंटा पहले मुझे मेरे से बात हो रही थी फोन पे, तो अभी भी आज भी मैं वही कह के चिढ़ाई जाती हूँ।
0: अच्छा, क्या
2: चिढ़ाने का? मेरे दोस्त भी अक्सर अब उसी नाम से मुझे बुलाने लगे हैं, बनिया गिरी कहने लगे हैं।
0: बनिया गिरी, ये क्या कर रहा आपने?
2: बनिया गिरी इससे बहुत ही ज्यादा पुराना ताल्लुक ऐसे है कि जब मैं छोटी थी तो मैं पापा जब भी कोई सामान लेने जाते थे तो मैं उनके साथ जाती थी, जब मुझे पीछे बाइक पे बिठा लेकर जाते थे तो मुझे उतनी मतलब समझ नहीं थी चीजों की, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ना पापा को सब ठग रहे हैं।
0: अच्छा,
2: सारे पापा से लूट लेंगे, तो मैं हमेशा कहती थी पापा ये मत लेना वो मत लेना, तो पापा हमेशा कहते थे अच्छा तो फिर लो क्या जब कुछ ना लूटो, तो मैं हमेशा कहती थी कि आपको ना बेवकूफ बना रहे, सारा चीज महंगा दे रहे हैं। और आज भी मैं यही करती हूँ, तो खैर पहचान की तो ये नहीं कह सकती कि पहचान बनी, लेकिन हाँ उन चीजों से कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूर हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चीजों को टोल मोल करके या फिर चीजों को खरीदने लगते हैं या जब उन चीजों में जाने लगते हैं तो समझ कहीं ना कहीं आपको अच्छी हो जाती है।
0: अच्छा,
2: तो मैंने कई ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह है जहाँ मैंने लॉस होने से चीजों को बचाया है।
0: ऐसा तो नहीं जैसे कि आप किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए गई हो लड़का दिखवाने वगैरह? नहीं भैया, दूसरा वाला निकालना ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ?
2: कहने का मतलब जी सर,
0: मैंने कहा कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी फीमेल फ्रेंड के साथ आप गई हो किसी लड़के को देखने शादी के लिए, आप कह नहीं भैया दूसरा दिखाना ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये बजट ज्यादा है इसका?
2: कहने का मतलब ये है कि आप लॉस से बच जाते हैं, आप चीजों को समझने लगते हैं, आप तोल मोल करना सीख जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे उसका जो है लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है।
0: बिल्कुल, सही बात है।
2: तो इन चीजों में मैं थोड़ी सी कह सकती हूँ कि एक्सपर्ट हो गई। अभी एक घंटे पहले मेरे फ्रेंड का कॉल आया तो कहती बनिया गिरी तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे।
0: जब तक तोलेगा ना आए तब तक छोड़ेगा ना आए।
2: इनफैक्ट राजस्थान की जब मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड गए हुए थे तो एक जगह वो लोग सामान ले रहे थे तो उनको बहुत महंगा दे रहे थे। तो मैं पीछे से मैंने कहा हटिए जरा, ये कितने का दिया? तो बोले यार बहुत प्यारा ले लेने देना, इतना अच्छा तो लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो महंगा क्या है। मैंने कहा महंगा ठीक है, महंगा लू मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो, और क्वालिटी चलो ठीक है अच्छी है, तो क्या इतने में महंगे में है? थोड़ा और सस्ता करिए ना। देखो बगल वाले भैया इतने में दे रहे, तो कहीं बगल वाले के पास है ही नहीं एक ही पीस तैयार, ले लेने दे। हमने कहा चुप रहो, मैं थोड़ा सा प्राइस कम करवाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा प्राइस कम करवाया और फिर उन्होंने दिया और मैंने उनको थैंक्स बोला, उन्होंने कहा चलिए ठीक है थैंक यू।
0: तो जाके उस रात आपको फिर नींद आई होगी प्रॉपर है?
2: मतलब मैंने जो खरीद के दिलवाया तो कहा यार मानना तो पड़ेगा कुछ तो है, मतलब तूने मेरे कहने से नहीं करा था, लेकिन देखा कैसे झट से कम कर ली। हमने कहा तोल मोल करने का वो होना चाहिए ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेरे पास है।
0: तो एक आप YouTube पे चैनल डालिए tolmol.com करके, जिसपे आप लोगों को पैसे बचाने के तरीके जरूर बताइए, और मुझे लगता है ये चैनल काफी हिट होने वाला है, राइट? वो भी इंडिया में तो बहुत ज्यादा।
2: अब तो अच्छा है कि नहीं अच्छा, बट मेरे लिए अच्छा है।
0: बिल्कुल सही,
2: हर जगह नहीं चलता, लेकिन हाँ कुछ चीजों में आप बच जाते हैं मूर्खता से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच पूर्णिमा कि आपने अपनी इस हैबिट को बताया, और वही हैबिट अभी भी आप उसको जारी रखे हो, इसको जारी रखिएगा।
2: जी सर, हम कुछ सुनाना चाहते हैं आपको, दो लाइन।
0: जी प्लीज।
2: जी, इससे पहले कि पश्चाताप करें, इससे पहले कि पश्चाताप करें, आओ दो चार और पाप करें, प्रेम में ढोंग हम नहीं करते, प्रेम में ढोंग हम नहीं करते हैं, आप कर पा रहे हैं ये तो आप करें।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब लिखा, बहुत प्यारा लिखा है, क्या बात है, वेरी नाइस,
2: थैंक यू।
0: बहुत बढ़िया, एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट आपकी लेखनी को लेकर के।
2: थैंक यू, बाय
0: बाय बाय, टेक केयर। ये तो थी भाई पूर्णिमा, जिन्होंने हमसे बातचीत किया, बहुत ही अच्छा अंदाज है इनका, प्यारा अंदाज। और साथ ही साथ चूंकि आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है, सवाल आप सुन ही चुके हैं, इतना सही है कि भाई आपकी कौन सी ऐसी आदत रही है बचपन की जिसको लेकर के आप ज्यादा डांट खाए हैं, लेकिन अब वो आपकी पहचान है या फिर आपकी खूबी है, आपके काम आती है। चलिए चलते हैं इसमें अगले लिसनर की तरफ और देखते हैं कौन है और क्या कहना है उनको। हाँ जी, हेलो
3: हेलो
0: जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
3: जी हमको आ रही है, आपको आ रही है?
0: जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
3: हमारा नाम राघव गोयल।
0: जी कैसे हैं आप?
3: बस आपके आशीर्वाद है।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो आप अपनी कोई एक ऐसी आदत बताइए जिसको लेकर के बहुत ज्यादा डांट खाया, लेकिन आज फिलहाल वो आपकी खूबी या फिर पहचान है आपकी। वो
3: दो आदत है,
0: दो आदत है, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। ओके,
3: एग्जाम्पल क्या है? एक तो ये आदत है कि खाने में ना नुकुस निकालने की बहुत आदत खराब है।
0: अच्छा,
3: तो उसका बेनिफिट समझ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए तो घर में कुछ बनेगा और नमक भूल गए या कुछ टेस्ट रखना है तो बुलाया जाएगा, देखो इसमें नमक है कि नहीं है।
0: अच्छा, टेस्टर के तौर पे काम करते हैं? घर में टेस्टर के तौर पे काम करते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक अलग से डेजिग्नेशन पद दे दिया गया आपको।
3: जी,
0: उसके अलावा
3: एक आदत जब से मोबाइल आया 2003-04 से, तब से मोबाइल में खुचुर करने की आदत ज्यादा थी, फिटबिट
0: खुचुर। अच्छा,
3: वो मतलब दिन भर जिसका पा जाओ उसका लेके टेस्टिंग शुरू कर दो।
0: इंजीनियरिंग
3: तो अब वो भी वही है कि अब कुछ मोबाइल में बिगड़ता है, कुछ ऑप्शन ढूंढना है तो फिर बादल को खोजा जाता है।
0: यहाँ मोबाइल में बिगड़ने में बादल को खोजा जाता है या जब सूखा पड़ता है तब?
3: नहीं, अब सूखा पड़ता है तब तो सावन में ना आने वाला है।
0: ओके,
3: ये दो दो आदतें हैं जो कह सकते हैं खराब भी है और अच्छी भी है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार इरिटेट हो जाएगा इंसान खाना बनाने वाला, भाई अभी कुछ बनाएंगे अभी इनको कमी निकल आएगी यार, एक तो इतना मेहनत करो, इतनी गर्मी में पसीने के बीच इतने तपते हुए किचन में काम करो, ऊपर से फिर इनकी कमियों को देखो, है ना?
3: यस।
0: एंड दूसरा ये कि भाई कितना फोन चलाएंगे आप, जिंदगी चल ही नहीं पा रही उस तरह से, आप फोन आपका ज्यादा चल रहा है।
3: ज्यादा नहीं है, बस 20-25 टू फोन है।
0: ज्यादा नहीं, बस 20-25 फोन है पूरे घर में।
3: वही में
0: कहाँ पर?
3: जिसमें अभी तक मैं कीपैड यूज कर रहा हूँ।
0: अभी तक आप कीपैड ही यूज कर रहे हैं? वाओ,
3: कीपैड भी यूज कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कीपैड भी यूज कर रहे हैं आप? पुराना और नया जमाना दोनों लेकर चल रहे हैं, राइट?
3: जी। चलिए, पुराने जमाने की नई टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बड़ा ही बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं आप। जी बताइए, क्या कह रहे थे?
3: 4G टेक्नोलॉजी अब कीपैड में भी आ गया है ना, से तमाम मोबाइल ऐसे आने लगे हैं। तो अब नेटवर्क का इशू नहीं रहता है, कोई भी सिम लगा लीजिए।
0: कोई भी सिम लगा ले, नेटवर्क का इशू नहीं रहता है।
3: अब नेटवर्क का उतना इशू नहीं है, पुराने 2G फोन अब मार्केट से बाहर जा रहे
0: हैं। करेक्ट, बड़ी ही अच्छी से इन्फॉर्मेशन दिया आपने, और साथ ही दो हैबिट्स के बारे में आपने बताया कि जो आपकी जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, लेकिन फिलहाल अभी वो आपको खूबी के तौर पर भी कई बार मिल जाती है। चलिए, अच्छी
3: बात। डांट अभी भी पड़ जाती है,
0: डांट अभी भी पड़ जाती है, और वो तो पड़ती रहेगी, जाहिर सी बात है, घर है, मम्मी है, तो डांट तो लाजिम है। ये बात तो सही है।
3: मैक्रोनी बनाया गया था, उसमें मटर डाली, मटर सब मैक्रोनी में घुस गई।
0: मटर मैक्रोनी में घुस गई? ये कॉम्प्लीमेंट मिला आपको कि आपको कानून बहुत आता है?
3: यही कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिलता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसे ही आप भी छिपी हुई मटर को खोजते रहिए, किसके? माइक्रोनी की पाइप्स में से। जल्दी जल्दी कुछ अच्छा मिल जाएगा आपको, हो सकता है। थैंक यू सो मच टू यू बादल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुबह ये हमारे साथ में बादल गोयल जी थे जिन्होंने हमसे बातचीत किया। फिलहाल वक्त है अगले म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार कॉल्स आती जा रही है और हम आपकी कॉल्स को रिसीव करके आपसे बातचीत करने वाले हैं। सवाल हमारा इतना सा ही है कि भैया आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसको लेकर बचपन से आप डांट खाते रहे, फिलहाल वही आपकी खूबी बन गई है या फिर आपकी पहचान।

0: हाँ जी, फिलहाल वापस से आ गए हैं गेंदा फूल, मतलब सॉरी, एक बार वापस से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और आज तो वैसे भी संडे स्पेशल शो है। सो चलिए चलते हैं अपने अगले लिसनर की तरफ और देखते हैं भाई उनकी ऐसी कौन सी आदत है बचपन की जिसको लेकर वो डांट खाते रहे हैं, लेकिन आज वही उनकी पहचान और स्ट्रेंथ है।
1: Are you listening? Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

0: हाँ जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर कौन है और उनकी आदत क्या थी जिसकी वजह से उनको डांट पड़ती थी लेकिन फिलहाल अब उनकी खूबी बन चुकी है। हाँ जी, हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। मोहसिना बात कर रही हैं आप, राइट?
1: जी सर।
0: ओके, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: मस्त हैं जी, अपनी आदत को एंजॉय कर रहे हैं बचपन वाली।
1: सब तो सभी करते हैं।
0: सब नहीं कर पाते हैं, सब तो डांट खाते रहते हैं अभी भी बादल गोयल जी की तरह।
1: आप कुछ कहते हैं, डांट खाने वाली हरकतें करके डांट खाते रहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। सो आप बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो बचपन से जिसको लेकर के बहुत डांट पड़ी है और अभी लेकिन वो आपकी खूबी है या तो फिर आपकी पहचान है?
1: कुकिंग, मुझे खाना बनाने का बहुत ही शौक था क्योंकि मेरे घर में मुझसे दो बड़ी बहनें थी तो मैं उनको जब किचन में देखती थी तो मुझे भी शौक होता था कि मैं भी कुकिंग करूं। पर एक्चुअली मैं छोटी बहुत थी ना, इस वजह से मुझे मेरी बड़ी अप्पी और अम्मी के हाथों डांट बहुत पड़ी है और एक बार तो इत्तेफाक से मार भी पड़ी है मुझे अम्मी के हाथों कि अब तुम दोबारा किचन में नजर ना आओ मुझे।
0: ये कैसे घर वाले हैं जिनको खाना ही नहीं खाना है?
1: नहीं सर, खाना तो खाना है क्योंकि दो बहनें हैं, माशाल्लाह वो अच्छा बनाती थी और उन लोग का ही जो है मुझे भी मिला है तो मैं भी अच्छा बनाती थी, बनाती हूँ फिलहाल। जब मैं छोटी थी तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे हाथों से फैलावा बहुत हो जाता था किचन में, बाद में अम्मी और अप्पी को समेटना पड़ता था तो उन लोग को चिढ़ होती थी कि एक बार मना किया फिर भी तुम किचन में आ जाती हो। और सर फैलावा तो फैलावा, साथ में खुद का नुकसान भी हो जाता था, कुछ फ्राई करने जाओ अपने हाथ ही जला लो या तेल ही गिर जाए या फिर अपने ऊपर आ जाए, तो इस वजह से अम्मी को डर लगता था कि तुम जाओ जो कर दियो वो तो हम समेट लेंगे लेकिन अगर तुमको नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम्ही को ही भुगतना पड़ेगा इस वजह से।
0: क्या बात है, बात तो खैर सही है। तो आज ये आपकी पहचान कैसे?
1: क्योंकि सर मुझे बहुत बहुत ज्यादा कुकिंग का शौक था और अब ये पहचान बन चुकी है क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक डिश की फरमाइश होती है कि अगर अब आप आए हो तो ये बना के खिलाओ फिर जाओ, तो मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है अगर किसी रिश्तेदार के घर जाऊं या अपने अप्पी के घर जाऊं या अम्मी के घर जाऊं। मेरा छोटा भाई है वो तो मैं जब तक अम्मी के घर रहती हूँ कुछ ना कुछ अप्पी ये अप्पी वो करके बोलता ही रहता है और मैं बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक है भाई, मुझे अच्छा लगता है नई नई चीजें ट्राई करने का और बना के खिलाने का और उससे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है सर। इसीलिए
0: अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको?
1: कि आप बिरयानी और दही बड़े ये बहुत ही अच्छा बनाते हो अप्पी, आपके जैसा कोई नहीं बनाता।
0: क्या बात है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना बनाते हैं उस खाने के लिए कि भाई बस बन जाए और पेट भर लेंगे, आपके अंदर जब आप खाना बना रहे होते हो तो क्या ख्याल ऐसा आता है, आप इतना जुनून उसको लेकर कैसे देखते हो, इतना प्यार खाना बनाने को लेकर के?
1: खाना बनाते वक्त ये सोचती हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए ही ना हो, उसमें स्वाद हो, प्यार हो, जो सबको पसंद आए और एटलीस्ट घर में कोई एक तो ये कहे कि हाँ आज खाना अच्छा बना। और इत्तेफाक से सर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट हर दिन मिलता है और मैं बहुत खुश होती हूँ अपने कुकिंग से।
0: क्या बात है। सो ये बहुत प्यारी बात आपने कही और मैं कह सकता हूँ कि शायद आपकी लव लैंग्वेज जो है वो खाना बनाना है, जैसे सबका कुछ ना कुछ होता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये अच्छी बात है, बस ये है कि अगर आप घर पे ना बना रहे हो तो मुझे लगता है आप कैटरिंग की सर्विस अभी तक खोल चुकी होती, चलो अब हम लोगों को खिलाएंगे।
1: मेरे घर में बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा सुझाव दिया है कि अगर आप कुछ भी कर लो अपना बाहर खुद का बिजनेस के रूप में तो काफी सक्सेस रहेगा। पर सर अब क्या है ना, फैमिली के बीच में हूँ तो मैनेज नहीं हो पाएगा घर को और बाहर को मैनेज करना, बस इसी वजह से पीछे रह जाती हूँ, वरना मैं भी आज कहीं पे होती।
0: क्या बात है। सो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ बहुत अच्छी जगह है, आप ये कर सकते हैं।
1: सर इसी वजह से अगर मैं दुखी होती या मुझे करना ही होता तो अब तक कर लिया होता, लेकिन मैं अपने घर और घर वालों से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है अपने घर को और अपने घर वालों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहर का क्या है, वो तो लोग खा के पैसे दे के जाएंगे फिर वो तो कहेंगे कि अच्छा, लेकिन अगर ये काम आपके घर में ही प्यार से कोई कह दे तो आपकी मेहनत पूरी हो जाती है और बस मुझे यही चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ।
0: वाओ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात कही आपने और सही कहा कि एक जगह तो पेमेंट दे करके इंसान खुश होता है, लेकिन जहाँ प्यार से होता है मिलता है वहाँ की बात अलग होती है। सो चलिए ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते रहिए, क्या कि मोरबी से जो खुशबू है वो गोंडा तक, उत्तर प्रदेश तक आए, हम ऐसी चाहत रखते हैं। और इसी तरह आप खाना बना बना कर ज़रूर खुश रहिए। थैंक यू सो मच टू यू मोहसिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। अब हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ। ऑफकोर्स ये तो थी मोहसिना अंसारी, जिन्होंने हमसे बात की मोरबी गुजरात से, और इनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है जब ये छोटी रही होंगी तो खाना बनाने के लिए काफ़ी रिस्की भी होता है बच्चों के लिए, उसमें ऑयल भी है, गैस भी है, तो इतनी सारी चीज़ों में मतलब सामंजस्य से बैठाना और उसके बाद उस चीज़ को पूरा करना, मुकम्मल करना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। फिलहाल चलेंगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन है मौजूद। लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी का रिप्लाई आ चुका है। अनु ने सबसे पहले उनका जिक्र किया था और लिखा है, अनु जी आपने जो कहा अच्छा लगा, अतिथि देवो भवा का भाव हमेशा रखिए, मैं भी रखता हूँ। और हाँ, आपकी सज़ा भी आपके भाई को मंजूर है, पर मैं पहला कॉल करूँ ये सही नहीं होगा, क्योंकि मैं लेडी फर्स्ट का भाव रखता हूँ। और हाँ, काफ़ी अच्छा लिखती हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अभी देखिए जेंट्स फर्स्ट में, देखिए इनको ले करके हम लेडीज़ फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़रूर करने वाले हैं। सो चलिए फिलहाल अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना नाम बता दे हमारे श्रोताओं को।
2: मेरा नाम रीता पाठक है।
0: रीता पाठक जी, कैसी हैं आप?
2: बढ़िया सर, आप कैसे हो?
0: बहुत मस्त है जी, बहुत मस्त है। आदतों पे आज बात कर रहे हैं जिस पे आप बहुत डांट खाएंगे।
2: हाँ जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, आदतों पर ही बात हो रही है।
0: क्या बात है, कौन सी आदत है ऐसी आपकी?
2: मेरी आदत रोकने टोकने वाली है, और तो कोई ऐसी आदत है नहीं।
0: तो ये तो
2: परफेक्शन वाली आदत है थोड़ी।
0: माता पिता वाला काम आप कर रहे हैं खुद?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कैसे रोकते टोकते हैं, मतलब किन चीजों पे ज्यादा आप कहते हैं, जरा हमको ये भी जानना, और किसको ज्यादा करते हैं रोकते टोकते, ये भी जानना है।
2: मतलब मेनली साफ सफाई पे ज्यादा रोकना टोकना होता है।
0: अच्छा,
2: पापा को भी, बहन को भी, किसी अदर को तो नहीं टोक सकते, लेकिन हाँ अगर कोई चप्पल अंदर तक पहन आया तो अरे पापा जूता बाहर निकालिए, भूल रहे, या यही सब है थोड़ी सी क्लीनलीनेस को लेके। और मतलब हर काम बहुत परफेक्शन से, अगर झाड़ू भी लगाना है तो मतलब बहुत ही परफेक्शन से, इसीलिए चीजें अगर कोई और करता है तो उससे अच्छा है हम ही कर लें, क्योंकि वो बाद में दोबारा करना अजीब लगता है सामने वाले को भी कि भैया मैंने किया तुमको समझ में नहीं आया, अब तुम ही करो।
0: करेक्ट, सही बात है। लेकिन गौर करिए, कहीं ना कहीं तो आप बाहर वालों को भी टोकते होंगे, भले ही सफाई के लिए तो नहीं टोकेंगे कि भैया पोछा लगा है रोड पे मत आओ, लेकिन आप कहीं तो टोकते होंगे, जरा सोचिए फिर हमको बताइए कहाँ टोकते।
2: अब मैं एक आदत बताऊं, इसे मेरी आदत है कि मैं इसे बैठती हूँ बिस्तर पे तो बिना झाड़े उसको नहीं बैठती हूँ, तो कभी कभी मैं बाहर किसी के यहाँ भी जाती हूँ, मान लीजिए किसी के यहाँ बेड पे बैठना है या उन्होंने ऑफर किया कि आइए बेड पर आराम से बैठते हैं, तो मतलब आते थे झाड़ के बैठने का, तो फिर मेरी बहन कहती है बाहर ना ये सब किया करो, अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा क्या बताएं, वो आदत ही पड़ गई है कि इतना झाड़ रहे तो धूल उड़ा हो।
0: वाह क्या बात है। तो मतलब आप दूसरों के यहाँ भी जाते हैं तो चादर झाड़ के बैठते हैं?
2: हाँ हाँ, मतलब वो आदत में है सर, वो सोचते नहीं है, कभी कभी खुद को रोक भी लेते हैं, बहन आंख दिखा देती है तो।
0: अच्छा,
2: लेकिन ये है कि मतलब अगर खुद से अगर बैठेंगे तो एक आदत है कि थोड़ा सा ऐसे से कर लेंगे हाथ से।
0: अरे वाह, चलिए भाई, कोई लोग जो इनको सुन रहे हो वो जरूर अपने घर एक बार बुला करके इनका टेस्ट कराए। ये चीज तो इसका परीक्षण होना चाहिए भाई। कि ये होता है कि नहीं होता है।
2: नहीं सर, रियलिटी बता रही हूँ अपनी, ये तो एक तरह से कमियां ही है, कमियां क्या है, वो चीजें थोड़ी आदत में है।
0: तो ये इसको खूबी कैसे मानते हैं आप?
2: खूबी है कि भाई साफ सफाई का ये तो ध्यान रखा जाता है, मतलब ये नहीं कि बेड पे नमकीन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है तो मैं वैसे बैठ जाऊँ, मेरी घर में भी ये आदत नहीं है।
0: अच्छा, आपके घर में भी आपकी आदत नहीं है?
2: मतलब मेरी चादर पे आपको सिलवट नहीं दिखेगा, मैं सो के उठती हूँ तो अपना बेड बनाना है, चादर वगैरह तय करके रख देना।
0: अच्छा
2: जी,
0: तो ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो लोग अक्सर कर जाते हैं, ट्रेन में जब सफर करते हैं तो खा करके या तो नीचे डब्बे में ही डाल देंगे, डब्बे मतलब बोगी में ही फेंक देंगे जहाँ बैठे हैं, और उससे ज्यादा कॉमन होता है कि भाई झांक करके विंडो की तरफ जाना और फेंक देना बाहर। आप ऐसे वक्त में क्या करती हैं?
2: वहाँ भी मेरी वही आदत है, मैं सीट झाड़ कर ही बैठती हूँ।
0: रेलवे में भी?
2: बिल्कुल।
0: झड़ी हुई सीट को क्या झाड़ती हैं आप? जो ऑलरेडी झड़ी हुई सीट है उसमें क्या झाड़ती हैं?
2: नहीं नहीं, अगर मान लीजिए मैं देख रही हूँ कि हाँ कुछ पड़ा है या लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ पड़ा हुआ है, उससे कुछ गंदगी है, तो मतलब आदत में है सर वो, अब झाड़ने झाड़ने और साफ सफाई वाली आदत है, तो वो हर जगह आपको दिखेगी मैं कहीं भी रहूं।
0: चादर ही झाड़ने की आदत है या इंसानों को भी झाड़ देने की आदत?

0: का मिजाज एक तरह का नहीं होता ना, कभी कभी लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, जैसे बहुत लोग सिगरेट फूकने लगते हैं, बहुत लोग कुछ जो है पान गुटखा है ये सब खा के एंट्री कर लेते हैं, तो मतलब इन सब की स्मेल से भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम तुरंत टोक देते हैं कि भैया खा के आना है तो बाहर थूक के तब आओ
1: सही बैठो। बिल्कुल,
0: तो भाई उससे हमको दिक्कत है, हमको खुद जैसे वोमिट होने लगता है मतलब स्मेल से ही।
1: सही है,
0: तो फिर उसको कह देते हैं कि भैया अगर आपको खाना है खाइए, लेकिन ये है कि जो भी चीजें हैं आप बाहर थूक के या बाहर ही अपना सिगरेट वगैरह पी के तब आइए अंदर बोगी में।
1: बहुत बढ़िया, तो मतलब आपका अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ कि रीता पाठक जी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है झड़ी झड़ान। हाँ मतलब वही झड़ी झड़ान। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह से साफ सफाई का है आपको खुमार तो इससे काफी लोग भी ध्यान देते हैं, बात सच है, तो कहीं ना कहीं ये आदत आपकी खूबी भी है, ये मैं खुद भी मान रहा हूँ इस बात को। सही है, एंड थैंक यू सो मच कॉल करके इस बात को बताने के लिए।
0: थैंक यू सर,
1: थैंक्स टू यू। चलिए भाई अब हम भी बाय बाय, टेक केयर। अब हम भी झड़ी झड़ान मतलब चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन सा गाना आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम संडे स्पेशल शो गायक गोंडा विद आरजे अदनान। संडे चल रहा है और अब चल रहे हैं वेलकम मूवी की तरफ। किया किया वैसे क्या किया, झड़ी झड़ान तो नहीं किया।

0: क्या किया भाई, ये क्या किया आपने? ऐसी कौन सी आदत डाली जिसकी वजह से आप बहुत डांट खाए, लेकिन फिलहाल उसी आदत को आपने अपनी पहचान बना ली, अपनी खूबी बना ली। इस सवाल को लेकर के हम गोंडा में पहुंच चुके हैं, गलियारों में, घर घर में, और ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी आज अपने संडे स्पेशल लाइव शो गायगा गोंडा विद आरजे अदनान में सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। सो फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगले कॉलर पे कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो हेलो। ओके, सो मुझे लगता है कि भाई फिलहाल कुछ नेटवर्क ग्लिचेस हैं। सो इसके साथ ही साथ, चूंकि सवाल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस सवाल को करने में, क्योंकि ऐसे आपकी कई सारी आदतों का पता चल रहा है, जिन आदतों में आपको डांट तो काफ़ी पड़ी है लेकिन फ़िलहाल आपकी वो खूबी बन गई है या फिर वो आपकी पहचान बन गई है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इस बात को बताने के लिए आप हमको कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग का नंबर 6393 है, और फ़िलहाल इसी नंबर पे हम चलते हैं देखने कि भाई कौन है, उनसे बातचीत करते हैं। सवाल हमारा भाई है। हाँ जी, हेलो
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: कमल नयन बोल रहे हैं।
0: अरे कमल नयन जी, कैसे हैं आप भाई? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे वैसे। कहाँ हैं आप?
1: जी सर।
0: आपका ही इंतजार कर रहे थे, कैसे हैं आप?
1: सर अच्छे हैं।
0: नहीं सर, तो अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं, कैसे हैं?
1: सर बहुत अच्छे हैं।
0: ये बहुत अच्छे कैसे हो गए आज आप? एक तो ये आप घाम नहीं छोड़ेंगे, पिछले दो हफ्ते से आपने घाम पकड़ के रखा है।
1: नहीं सर, क्या ना अभी धूप में था ना, आज तक ऑफिस के अंदर जो है काम कर रहा था, ए सी ऐसी लगा हुआ है, इसकी वजह से बहुत राहत है।
0: अच्छा, इसीलिए आप बहुत अच्छे हैं आज। अरे फुल एकदम पूरा मजा ले रहे हैं आप, 16 नंबर वाली एसी का है।
1: सर छत का गरम गरम हवा खाने वाला अगर किसी दिन एसी में पड़ जाए तो उसको आनंद ही आएगा ना।
0: सही बात है, सही बात है। तो वैसे आपसे अभी ये सवाल पूछना था कमल जी कि ऐसी कौन सी आदत रही है बचपन की जिसको आप लेकर डांट बहुत खाए हैं लेकिन फिलहाल अभी वही आपकी पहचान है या फिर वही आपकी खासियत बन गई है?
1: सर उसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी गलतियां हैं जिससे मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा जो है डांट पड़ी है, और आज जा करके ये हो रहा है कि हम लोग जा करके सही डांट खा रहे थे, आज इसको और करते हैं।
0: जैसे
1: ये सर पढ़ाई के तौर पर जब पढ़ने के लिए जाते थे तो बस्ते को कहीं लिखवा देते थे, उसके बाद में नहर में जो पानी आता था उसमें नहाते थे, उसके लिए डांट बहुत पड़ती थी। अब आज जाकर के जब पानी आता तो उसमें नहाने मन ही नहीं कर रहा है।
0: आज नहाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? आज घाम नहीं लग रहा
1: है? नहीं, क्योंकि सर समझ में आ गया ना कि वो पानी इस समय लाल नहीं, गंदा, उसमें जानवर पड़े रहते हैं, मतलब बहुत सारे गंदगी रहते हैं।
0: अच्छा, आज समझ में
1: जानकारी सर, पहले जानकारी नहीं था, जितने मना करते थे पापा उतने जाकर के नहाते थे, मालूम पड़ जाता था घर पे, आते थे और धुलाई हो जाती थी, अच्छे से कटाई हो जाती थी।
0: मतलब जितनी नहर में धुलाई होती थी उससे ज्यादा पापा धुलाई करते थे।
1: हाँ सर, अब हम सोचते हैं कि हाँ अच्छा ये जाते थे और आज खुद नहीं नहाने जाते हैं।
0: अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: सर बचपन, सर बचपन की कुछ ऐसे सामान्य गलतियाँ होती हैं।
0: जी जी,
1: जीवन भर मतलब असर रहता है सर।
0: अच्छा, जीवन भर असर रहता है
1: जी। अच्छा। लास्ट में जा करके जब दिमाग आता है इंसान को तो सही मार्गदर्शन मिलता है उसको कि हाँ ये चीज हमें डांट पड़ रही तो अच्छाई के लिए मिला
0: था। अच्छाई के लिए था, सही बात है। नहीं लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कमल जी कि कोई ऐसी भी आदत थी क्या जिसके लिए आपको डांट पड़ी थी लेकिन अभी वो आपके काम आ रही है, वो अच्छी बात हो गई है अब जा करके?
1: सर ऐसा तो कोई गलती है नहीं हमारे पास, मतलब जो अभी आप मुझे काम आए, या मतलब पढ़ाई लिखाई को कोई लेकर तो कोई मतलब दिक्कत नहीं पढ़ने में तेज से, बल्कि मम्मी पापा पढ़ाने के लिए मना करे थे हम जबरदस्ती पढ़ रहे थे, और उनसे कोई गलती है ही नहीं।
0: नहीं ये तो अच्छा ही थी, आपकी गलती कहा अगर आप पढ़ना चाह रहे थे तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ तो सर आपने गलती पूछा ना, अच्छाई तो पूछा नहीं है।
0: नहीं हमने पूछा। ऐसी कौन सी आदत थी जिसको लेकर आपको डांट पड़ती थी लेकिन अभी वही आपके लिए अच्छी बात हो गई है?
1: सर जिस चीज को ऐसे तो कोई है नहीं सर, पढ़ाई के लिए तो मतलब कभी डांट पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं जबरदस्ती पढ़ने के लिए जाता था, जबरदस्ती पढ़ाऊँ जहाँ तक पढ़ाऊँ।
0: अच्छा, यानी आपने सारी गलतियां सही वाली की है, डांट खाने वाला काम किया ही किया है।
1: नहीं, असल में क्या ना, मैं बचपन से ही मतलब ऐसे गलती नहीं करता था कि मतलब डांट पड़े, लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं कि की जब नादानी यही तो हो जाती थी, लेकिन छोटी मोटी सब के पास होती रहती है।
0: अच्छा, अभी अभी जैसे आपके घर वाले क्या कहते हैं, कोई गलती करते हैं तो सब माफ कर देते होंगे, आप इतने प्यार से बात करते हैं तो ऐसे ही माफ कर देते होंगे, क्या क्या ख्याल है?
1: अब घर में सर, हमारे घर में लगभग 22 परिवार है, लेकिन हमसे कोई शिकायत नहीं करता कि आप ऐसा, अगर हम कोई गलती कर भी देते हैं तो मतलब वो खुद ही डर जाएंगे कि मतलब गलती नहीं गलती हमको मतलब कहेंगे नहीं,
0: वो डर जाते हैं खुद ही
1: खुद ही डर जाते, क्योंकि मैं गलती कोई करता हूँ, अगर जैसे गलती हो भी जाती है तो उसको स्वयं छुपा लेंगे कि उनसे मत बोलो।
0: अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है
1: सर? पता नहीं सर क्यों, क्योंकि मुझसे बड़े हमारे दो भाई हैं, लेकिन आज तक समझ लीजिए कभी हमें उन लोगों ने कभी डांटा नहीं, कोई गलती होती ही है तो मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं।
0: अच्छा, दो बड़े भाई होने के बावजूद आपको डांटनी पड़ती है, तो बहुत अनोखी बात होगी, सच बता रहे हैं।
1: और सर मैं स्वयं जो है अपने बड़े भाइयों को मतलब गलत रहा या कोई गलती है तो मैं तुरंत उन लोगों को तोड़ देता हूँ कि ये चीज आपकी गलती है, हम स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग हम नहीं बोलते हैं।
0: नहीं, वो तो अच्छी बात है कि अगर आप गलत है तो बड़े भाइयों को भी बोल देते हैं, बात सही है, लेकिन आपने जो बताया वो थोड़ा सा अलग लगा मुझे, मतलब काफी अलग लगा इवन चलिए अच्छी बात है।
1: दिक्कत सर, दिक्कत ये है कि जैसे घर का कोई एक आदमी ऐसा होता है कि जो होशियार होता है, तो घर का सबसे एक मेन आदमी मैं हूँ, हमारे घर में जो है कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ही एक आदमी हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, घर में कोई कागज आएगा, बिजली का बिल आएगा या कोई भी चीज आएगा तो हमारे सामने पेश किया जाएगा कि भैया देखिए क्या चीज आया है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब हमारे घर में जितने भी मतलब सरकारी कागजात है, कुछ भी कराना, तो मुझे ही आना है कराने में, और कोई नहीं जा सकता
0: है कराने। ये समझ में आता है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारे काम, बल्कि इवन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ना लिखना आना चाहिए और वो आप कर लेते हैं, इसलिए घर वाले आपको ज्यादा तवज्जो देते हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं?
1: जी सर, अब कोई भाई जो है पांचवी पढ़ा है, कोई चौथी पढ़ा है, मैं हूँ जो मतलब हाई तो पढ़ा था, मतलब 11 में नाम लिखाया था, मतलब 5 महीने पढ़े थे, उसके बाद में वो भी छूट गया था। इसकी वजह से मुझे घर में जो है इसी की वजह से माल सामान मिलता है, वो थोड़ा सा मतलब महंगे से पढ़े लिखे नहीं, सोचता हूँ कि मैं कहा था, अगर मेरी मम्मी पापा मुझे पढ़ाते तो आज मैं ये धूप धूप वाली बात कर वहाँ से धूप धूप वाली बात नहीं करता, मैं कब ऐसी वाली बात करता।
0: अरे नहीं नहीं, जो देखिए बात, आप कहीं के भी हों, आप इंसान बहुत प्यारे हैं, ये मैटर करता है, आप कहीं से भी बात करें, लेकिन अगर आप इंसान उतने प्यारे नहीं हैं तो वो प्रभाव होता नहीं है, लेकिन आप बहुत प्यारे हैं, तो आप जहाँ जहाँ पे भी हों, आप जहाँ भी रहेंगे हम लोगों के लिए बहुत खास रहेंगे, ये बात तो सच है।
1: नहीं, वो तो बात इस बात रहते हैं, जितने परिवार के साथ में काम करते हैं कहीं भी रहते हैं, लोग इतना हमारे पर विश्वास करते हैं, सर जी क्या बताएं?
0: वही हम कह रहे हैं, इस बात पे जरा मुस्कुरा दीजिए, एक बार हंस के हमको सुना दीजिए कि आप हंस रहे हैं वहाँ से।
1: नहीं तो सर, हम अगर मुस्कुराएंगे तो आप देख नहीं पाओगे, तो आप जान जाइए, हाँ हाँ मैं मुस्कुराएंगे तो खाली मैं ही तो देख सकता हूँ।
0: हंस दीजिए भाई साहब। अरे हंसिए, हम इंतजार कर रहे हैं। आ रही आ रही है, थोड़ा सवाल लाइए।
1: सर, आपकी हंसी को अगर दिमाग में डाले तो हो सकता है कि हंसी आ जाए। आ गया सर।
0: बहुत जबरदस्त आया ये, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते का एक साथ आ गया है। बहुत प्यारे हैं आप, सच में जितना कहा जाए, बहुत क्यूट बोलते हैं हम, और आप बिल्कुल सही में क्यूट
1: है। नहीं सर, जब हम आपसे बात करते हैं तो कई लिसनर जो है उनको दुख होता है कि मतलब ये ना बात किया करें या कुछ तो अच्छी रहता है, लेकिन हम खाली आपसे बात करते हैं, कोई कुछ भी मुझे कहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम खाली आपसे बात करने के लिए कॉल करते हैं, आपका मतलब सवाल का जवाब सही दे या गलत दे, कैसी दे रहे, हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, अच्छा है या गलत है इसको भाई बताएं।
0: बिल्कुल सही आप,
1: हम आपस में बात कर लेते हैं सर, तो हमारे शरीर की पूरी एनर्जी जो है डबल हो जाती है, अगर पहाड़ पे चढ़ना होगा अगर आपको बात करने के बाद में तो हम चढ़ जाएंगे।
0: अरे क्या बात है। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए, और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि बात तो सही कहा, आप बात करते हैं, हम सवाल इसलिए नहीं करते कि वो सही या गलत है, बस हम इसलिए करते हैं कि हमारी आपका जो कनेक्शन है, जो प्यार है, वो हमेशा बना रहे, और ये बिल्कुल सही आप सोचते हैं, और मैं दुआ करता हूं कि आप यूं ही खुश रहिए और यूं ही सबकी फिक्र हटा करके आपको जो लगता है वो आप हमेशा ऐसे ही करते रहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कमल लैन जी, आपने कॉल किया हमको।
1: सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में कमल नैन जी, और जिन्होंने हमसे बातचीत किया। फिलहाल दो कॉलर मैक्सिमम और लेंगे, एक कॉल और लेंगे, और उसके बाद एक सरप्राइज अचानक से मुझे खुद ही मिल गया स्टूडियो में, तो हम उनकी तरफ भी चलने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर आज सरप्राइज में हमारे साथ में कौन और क्या है। लेकिन साथ ही साथ आपको अवगत करा दें कि भाई आज के जो सवाल थे वो बड़े ही लाजवाब रहे, क्योंकि आज का सवाल हमने पूछा कि ऐसी कौन सी आदत रही है बचपन से जिसको लेकर के आपने काफ़ी ज़्यादा डांट भी सुनी है, लेकिन साथ ही साथ उसका अब वो फ़ायदा मिलता है, यानी वो अब खूबी बन गई है या अब आपकी वो पहचान बन गई। जैसे कि मैंने कहा था मेरे बोलने की आदत, इसको लेकर बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं वो अब हमारी पहचान बन चुकी है। सो फिलहाल ये नेक्स्ट कॉलर है, ये देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
2: सृष्टि।
0: हाँ सृष्टि, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। तो सृष्टि हम पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी आदत है जिसको लेकर के आपको बहुत डांट पड़ती थी बचपन में, लेकिन फिलहाल अभी वही आपके लिए बहुत खास हो गई है।
2: राह चलते दोस्त बनाना।
0: हाँ ये हो सकता है। क्या होता था बचपन में?
2: मैं कहीं भी जाती थी सबको अपना फ्रेंड बना लेती थी, चाहे छोटा बच्चा हो फिर हमसे बड़े यंग भैया लोग भी हो।
0: अच्छा
2: हाँ।
0: तो इस तरह
2: आज भी करती हूँ।
0: वाह, और आज क्या फायदा कैसे मिलता है आपको?
2: फायदा ये मिलता है कि हाँ उनसे मिलती कुछ अच्छी बातें मिलती है, तो कुछ भी मिलता है मुझे, मिलता है।
0: चलिए, जहाँ जमाना और समाज कहता है कि भाई नए लोगों पर विश्वास ना करो, वहाँ पे कुछ विश्वास जता करके ये दोस्ती करती हैं, ये बड़ी अलग बात है एंड काफ़ी अप्रिशिएबल भी है। और यूं ही आप बस खुश रहिए, जिस तरह भी आप खुश रह सकते हैं, यानी जो चीज़ें आपके लिए सेफ हो प्लस आप खुश भी रह सके, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड थैंक यू।
2: हाँ जो बिस्किट खाने से बहुत लोग को बिस्किट की भी लत लगती मॉर्निंग में।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल सही कहा आपने। लत तो किसी भी चीज की लग सकती है, ज्यादा बिस्किट खाने की हो सकती है, लेट नाइट जागने की भी आदत हो जाती है। जी बिल्कुल सही है। सो लत होती है, और वो लत जो है वो सही नहीं होती, यानी वो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए सही नहीं, इंजुरियस होती है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
2: उनका एक लौता बेटा था, इतना बिस्किट खाते थे, उसको इतना बिलार में रखा गया कि उसकी बॉडी से पूरे मतलब वायरस निकल रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर ने उसको जवाब दीजिए बोल दिया कि लखनऊ या दिल्ली लेके जाओ। ऐसे मिले मेरे मोहल्ले में।
0: ओके, तो ये बहुत अच्छा आपने इशू उठाया है कि भाई बिस्किट जिसे हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन अगर रोज और आदत में शुमार कर ले तो जरा सोचिए कि वो जानलेवा भी हो सकता है या कितना ज्यादा घातक हो सकता है। राइट,
2: सबसे बिस्किट वो मीठा होता है, उससे वायरस बनते हैं, हमारे बैक्टीरिया इतने निकलते हैं बॉडी से, पूछिए ना। उस लड़के को मैंने देखा तो उसकी बॉडी हर एक
0: नहीं, तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, लेकिन चूंकि ये रिस्की है, जिस चीज को कई बार हम बहुत सिंपल से आसान से समझ लेते हैं वो बहुत नुकसानदेह होता है, और ये आपने बहुत सही से बताया। थैंक यू सो मच सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बाय
0: बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी हमारे साथ सृष्टि, अब चलते हैं अपने सरप्राइज की तरफ, क्योंकि हमारे भाई इसमें आ चुकी है भाई हमारी ऑफकोर्स सविता दुबे जी। जी हाँ, उन्होंने अचानक से आके स्टूडियो में हमको सरप्राइज दे दिया, फिलहाल हमारे साथ बैठी हैं। चलिए हाय बाय कर लिए भाई हमारे लोगों से। कैसी हैं आप?
3: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: अरे वाह,
3: मेरा भी आदत है कि बचपन में जिस वजह से मैं बहुत डांट सुनी हूँ वही आदत आज मेरे लिए बहुत काम आ रही है।
0: सो ऐसी कौन सी आदत है जिसके जैसे आप डांट सुनती थी लेकिन फिलहाल अभी वो आपके काम की है?
3: घर से बाहर निकल जाना।
0: अच्छा, इसको लेकर डांट खाती थी आप?
3: जी, कुछ शैतानी करती थी, घर से बाहर निकल जाती थी, इसके लिए भी बहुत डांट खाई हूँ, पर वो धीरे धीरे आदत बन गई। आज जाके वही आदत मेरे लिए फ़ायदा हो गया कि घर से बाहर निकलने के बाद भी अपने आप को किस तरह से सभी के मुसीबत के बीच अपने आप को संभालना। आज से मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं लखनऊ से आ रही थी गोंडा, तो 4 बजे की ट्रेन पकड़ी थी, तो बीच में गोमती नगर में ट्रेन पता नहीं किस वजह से खराब हो गई थे, 2 घंटा लेट हो गया। छः बज गए थे, अब 6 बजे के बाद गोंडा पहुँचू तो 8 बज जाएगा। एक तो छोटा ये रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अकेले कैसे रह पाऊँगी, ना मैं घर वाले को भी कुछ नहीं बताई, तो मैं सीधा पहुँच गई गोंडा गोरखपुर।
0: अच्छा,
3: गोरखपुर बड़ा रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत रहता है, तो उन लोगों के साथ रहने से मेरा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं वहाँ पे सेफ रहूँगी। मैं वहाँ पहुँच गई, फिर जाके सुबह 4 बजे की ट्रेन से फिर मैं अपना गोंडा आई सुबह 8 बजे, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा ऐसा घटना मेरे को 2-3 बार हुआ है। एक बार मैं दिल्ली से दुर्गापुर आ गई थी,
0: दिल्ली से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल
3: अकेले।
0: ओके, सो ये बड़ी ही अलग बात आपने कही है कि भाई बाहर निकल जाने के लिए आप डांट खाती थी, लेकिन फिलहाल यही आदत ने आपको बहुत मजबूत बनाया और आप खुद से समझ पाएं कि ऐसी सिचुएशन में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो किस तरह धैर्य के साथ खुद को बचाया जाए, सेफ किया जाए। वाह, मुझे लगता है ये आपके लिए क्या, ये हम सभी लोगों के लिए एक सीख है कि हम इतना ज़्यादा ना सोचें और जब हमको लगे कि हमको सेफ होना है तो हम उसके लिए अपने जो ज़रूरी कदम है वो ज़रूर उठाएं। वाह, बहुत बढ़िया।
3: और एक चीज़ के लिए मैं स्टूडियो आई हूँ, मैं आई हूँ पूर्णिमा मैम से मिलने के लिए, ताकि उन्होंने शुक्रवार को हमें चैट बॉक्स पे बोली थी कि संडे को आएंगे, वो फिलहाल आ रही कि नहीं आ रही हमें बताइए चैट बॉक्स पे जल्दी।
0: चलिए भाई, पूर्णिमा आपके लिए बेचारी आके बैठी हैं, हमारी सविता दुबे जी, आपने संडे को मिलने का कहा था स्टूडियो में, तो अब आप चैट बॉक्स पे इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कहाँ हैं, ये जानना चाहती हैं। एंड थैंक यू सो मच सविता दुबे जी कि आप यहाँ तक आई, आप भले ही उनके लिए आई हूँ लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इससे जस्ट पहले आप हमारे पास आई थी 5 तारीख को, जिसमें हम लोगों ने मनाया था अपना पर्यावरण दिवस, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। एंड थैंक्स टू आप सभी लोगों को जो लोग इस वक्त बने हुए थे इस मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का संडे स्पेशल शो कैसा रहा हमको ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं। सविता दुबे जी ने भी डाला था मैसेज, उनका भी स्वागत है। मुस्तफ़ा फ्राम सऊदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं, क्या बात है। एंड रेखा कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू। तानिया गोंडा से हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैट बॉक्स पे मैसेजेस किए, और साथ ही साथ इस वक्त जो बने हुए हैं हमारे 89.6 FM के स्टूडियो से। फिलहाल जाते जाते ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग आपके लिए।

0: भी तावे के
1: नानी के घर गर्मी के छुट्टियाँ भी तावे के
0: नानी माँ जो के बने हैं सरदा से खाए के।

0: घर नानी के घर जाएंगे।
1: नानी के घर, नानी के घर, नानी के घर जाएंगे।
0: हलवा पूरी, मीठी चूरी और जलेबी खाएंगे। नानी, नानी, नानी, नानी, नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे। नानी, नानी, नानी, नानी, नानी के घर जाएंगे।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: हाँ जी, सो भाई चलिए अब फाइनली आपका स्वागत करते हैं हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी वाले प्रोग्राम में। और गीता दीदी आ चुकी हैं, ग्रैंड एंट्री मार चुकी हैं, आज पीला पीला सूट पहने। भाई मैं इनके कलरफुल कपड़े को बहुत देखता हूँ क्योंकि अक्सर बदलते रहते हैं। क्या क्या बात क्या है दीदी, आज आप ये बता दीजिए।
5: बताइए, बुड्ढों की तरह बस ऐसे सिंपल कपड़े पहनूं?
4: अरे बुड्ढा किसने कहा, कहने वाला बुड्ढा। आप तो इतना कलरफुल कपड़े पहन के आती कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे बस ये डर है कि किसी दिन आप सातों कलर के एक साथ ना पहने। हम कहें लो भाई इंद्रधनुष दीदी आ रही है, रेनबो दीदी आ रही है। बस बहुत बढ़िया, आज इतना नया नया इतना कलरफुल कपड़ा क्यों, जरा इसका आप बताइए भाई।
5: अच्छा आप बताइए, इतनी गर्मी में आपने काला काला क्यों पहना?
4: क्योंकि मुझे लगता है जो गर्मी है उसको अवशोषित कर ले।
5: नहीं अवशोषित नहीं, आपको हाँ। लगता है कि मैं इतना क्यूट हूँ मुझे नजर ना लग जाए।
4: आप भी शर्मवा देते हैं हमको। हाँ वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप बताइए कि आपने क्यों इस तरह का पहना है। चलिए
5: देखिए, ये कितना अच्छा, बच्चों के बीच में बैठेंगे, बच्चे कलरफुल कपड़े ही तो पहनते हैं, तो बस थोड़ा सा मिक्सअप होने के लिए बच्चों को लगे ना कि दीदी हमारी थोड़ी बड़ी हो रही है।
4: अरे बिल्कुल कभी नहीं बड़ी हो सकती, बच्चे बड़े हो जाएंगे, दीदी बड़ी नहीं होंगी।
5: दीदी नहीं बड़ी होंगी
4: क्योंकि बच्चे तो चेंज होते रह सकते हैं लेकिन दीदी वही
5: तो
4: रहेंगे।
5: इसीलिए मैं इतने कलरफुल कपड़े पहनती हूँ क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मैं कभी रेड, कभी येलो, कभी ब्लू।
4: अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के।
5: जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है।
4: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इतने कपड़े ना पहन लिए कि भाई दुनिया में रंग ही खत्म हो जाए, सारे के सारे गीता दीदी के पास।
5: बस सारे के सारे रंग मेरे और मेरे बच्चों के पास।
4: और इस शो को सुनने वालों के पास।
5: बिल्कुल।
4: सो चलिए गीता दीदी अब बताइए भाई, संडे की स्टोरी में आज आप क्या लाई हैं?
5: आज मैं बहुत ही पहली वाली स्टोरी लेके आई हूँ।
4: पहली वाली?
5: कहते
4: तो
5: हैं ना कि अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी हो, अपने अंदर सूझबूझ हो, थोड़ा सा धैर्य हो, तो फिर कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकल ही आता है। तो कुछ कहानी हमारी ऐसी ही है कि इसमें कुछ पहेलियां हैं और उन पहेलियों को एक व्यक्ति ऐसे हल करता है कि सारी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती
4: है। वाओ क्या बात है, तो हमें तो लगता है ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है,
5: बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है।
4: चलिए अब मजा दे ही दीजिए भाई इस स्टोरी से, और हमारे कई सारे श्रोता इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं।
5: तो चलिए मैं कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और सबसे पहले मैं अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनको सुबह की बहुत प्यारी प्यारी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बोलती हूँ, और आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं कि कहानी बहुत ही पुरानी होती है, तो बहुत समय पहले की बात है। एक राज में चार घनिष्ठ मित्र रहा करते थे, उनमें एक राजकुमार था, तो दूसरा मंत्री का पुत्र था, तीसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र था, और चौथा कोतवाल का पुत्र था। इस तरीके से ये चारों मित्र थे और चारों मित्र बहुत ही बुद्धिमान थे, साहसी भी थे, हंसमुख भी थे। वो जहाँ भी जाते तो साथ साथ जाते और एक दूसरे की सहायता करते, और दिन भर मौज मस्ती में उनका दिन गुजर जाता। एक दिन चारों मित्र अपने अपने सुंदर सुंदर घोड़ों पे सवार होकर किसी दूसरे नगर की ओर निकल पड़े, तो रास्ते में उन्हें एक महाजन मिला। वो महाजन बेहद ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था, तो चारों मित्रों को किसी आवश्यक कार्य से धन की आवश्यकता पड़ गई, पर उस समय उनके पास धन का अभाव था। सो उन्होंने महाजन से कहा कि मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए और फिर मैं ब्याज सहित रुपए लेकर आपके घर वापस करने आ सकता हूँ, आ जाऊँगा, दे दूँगा। तो महाजन बहुत ही सज्जन था। महाजन ने रुपए तो दे दिए, परंतु उसे यह चिंता हुई कि वह उनके घरों को पहचानेगा कैसे। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, भाइयों पहले तो ये बताइए कि मैं आपके घरों को पहचानूंगा कैसे अगर मैं आपके घर आना चाहूं, क्योंकि ना तो मैं आपका नाम जानता हूं ना ही आपका घर जानता हूं, फिर भी मैंने धन देखो दे दिया है। तो चारों मित्र जैसे कि स्वभाव से मजाकिया थे ही, तो उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय पहेली के रूप में संकेत दिए। तो जो राजकुमार वाला बेटा था बोला, आँख के आगे पक्षी। और जो मंत्री का बेटा था उसने नख पर लख कहा। और जो व्यापारी का बेटा था बोला, आंत पर दांत। और जो कोतवाल पुत्र था वो बोला, आय जितनी व्यय उतना। अब इतना कहकर हंसते हुए वे चारों मित्र अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए महाजन से दूर आगे निकल गए अपनी मंजिल की ओर। अब महाजन उनकी बातें सुनकर बहुत ही हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन संकेतों का क्या मतलब है। वह घर पहुंचा तो बहुत ही चिंतित था। ना उसे खाना अच्छा लग रहा था, ना उसे पीना अच्छा लग रहा था। वह दिन रात सोच रहा था। उसे लगने लगा था कि उसने अजनबियों को रुपए देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ना तो वह उनके घर को पहचान पाएगा और ना ही वो अपने रुपए वापस ले सकेगा। अब इस तरह की चिंता के कारण कई दिन बीत गए। वो ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा था, उदास होकर चारपाई पर लेटा रहता था। तभी उसकी एक बुद्धिमान बहू थी वहाँ आई। उसने देखा और अपने पिता समान ससुर से परेशानी का कारण पूछा कि पिताजी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं, मुझे बताइए। तो जो व्यापारी था, महाजन था, उसने धीरे धीरे करके सारी घटना अपनी बहू को सुना दी और बोला, मुझे लगता है कि मेरे रुपए डूब गए, मैं उन पहेलियों का अर्थ अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बहू मुस्कराई और बोली, पिताजी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आराम से खाइए पीजिए और उन संकेतों का अर्थ मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। महाजन को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह आश्चर्य से अपनी बहू की ओर देखने लगा। फिर बहू ने समझाना शुरू किया। उसने कहा, राजकुमार ने क्या कहा था कि आँख के आगे पक्षी, तो जानते हैं पिताजी इसका क्या अर्थ होता है? नारियल का पेड़। नारियल पर तीन निशान होते हैं जो आँखों जैसे ही दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर पक्तियाँ होती हैं जो पक्षी के पंखों की जैसी लगती हैं। इसलिए जिस घर के सामने नारियल का पेड़ हो वह राजकुमार का घर होगा। फिर वह बोली, मंत्री पुत्र ने क्या कहा? बोले, नख पर लख, तो इसका संकेत मेहंदी के पौधे की ओर है। मेहंदी लगाने से नाखून और हाथ सुंदर तो हो ही जाते हैं, इसलिए जिस घर के सामने मेहंदी का पौधा हो वह मंत्री पुत्र का घर होगा। व्यापारी पुत्र ने कहा था कि आंत पर दांत, तो इसका अर्थ होता है कटहल का पेड़। कटहल के भीतर रेशेदार भाग आंत जैसे दिखाई देते हैं और बाहर उसके नुकीले कांटे दांतों जैसे लगते हैं, इसलिए कटहल के पेड़ वाला घर उसी का होगा। अब कोतवाल पुत्र का नंबर आया। कोतवाल पुत्र ने कहा था, आय जितनी व्यय उतना, इसका संकेत कुएं की ओर है। कुएं से जितना भी पानी निकाला जाता है उतना ही फिर भर जाता है, इसलिए जिस घर के सामने कुआं हो वह कोतवाल पुत्र का घर होगा। महाजन अपनी बहू की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन वह उन संकेतों के अनुसार घरों को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसे नारियल का पेड़ दिखाई दिया, खुश हो गया, और फिर उसे मेहंदी का पौधे वाला घर भी दिखाई दिया, बाद में कटहल का पेड़, और अंत में कुएं वाला घर अंततः मिल ही गया। चारों मित्रों ने महाजन का खूब आदर सत्कार स्वागत किया और उनका सारा उधार ब्याज समेत चुकता कर दिया। अब महाजन अपने घर रुपए लेकर खुशी खुशी पहुंच गया और उसने अपनी चतुर बहू की बहुत खुश प्रशंसा की और बहुत खुश हुआ कि उसके घर में एक सुंदर सुशील और बुद्धिमान बहू है। तो बुद्धि और समझदारी से बड़ी समस्या का समाधान निकल ही जाता है मिस्टर अदनान।
4: अब इतनी सारी पहेली आपने बता दी। मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के सामने सफेद घर है, इसकी क्या पहेली बनाऊँ? अगर अगली बार मुझसे कोई एड्रेस पूछे तो मैं क्या बताऊँ?
5: अब देखिए, आपके घर के सामने तो घर है ही, सफेद है, हरा है, नीला, ये पहचान हो गई कि आप रंग बता करके अपने घर मुझे बुला सकते हैं। वैसे आप बुलाते नहीं हैं।
4: नहीं, सीधा वाला नहीं बताएंगे, थोड़ा घुमा के। अमरूद का पेड़ है, इसका पहले आप पहली बता दी, फिर मैं आपको इनवाइट कर देता हूँ।
5: अब मैं बताऊं पहली?
4: हाँ, ये अगले सप्ताह आपको बताना पड़ेगा कि अमरूद का पेड़ होगा तो उसके लिए हम किस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे।
5: हाँ, ये बात तो है, मुझे पहेली बनानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी।
4: मेहनत करनी पड़ेगी
5: और इसलिए मेहनत का फल मीठा ही होगा, अमरूद की तरह
4: सेवैया होगा। सो भाई, बिल्कुल सुना लोगों ने, आपने कैसी लगी आपको गीता दीदी की आज की स्टोरी? वैसे मैं बताऊं गीता दीदी, तो आज की स्टोरी मैं सच में सोच रहा था कि जिस तरह पे नख पे लख और पक्षी पेड़ के आगे, मतलब ये जो लाइंस थी ये सच में सोचने पर मजबूर कर रही थी।
5: बिल्कुल, अगर कोई ऐसे साधारण व्यक्ति हो तो वो समझ ही नहीं सकता है कि आंत पर दांत, नख पर लख और आंख के आगे पक्षी, तो ये सारी चीजें जो थी थोड़ा भ्रमित कर रही थी।
4: और उस चतुर बहू की वाकई मतलब तारीफ करनी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं दीदी, तो हमारे पास जो रास्ते होते हैं वो भी हमको दिखाई देते
5: हैं, बंद दिखाई देते हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो लेकिन उस समय क्या काम देता है? आपकी अपनी बुद्धिमानी, आपकी अपनी सूझबूझ और आपका अपना धैर्य।
4: धैर्य सबसे जरूरी है। जब धैर्य के साथ सोचते हैं तो आपको सब समझ में
5: आता है, सारी परेशानियों का हल निकलता
4: मिल जाता है,
5: मिल जाता है।
4: बिल्कुल। सो चलिए, आप भी अपनी जिंदगी में आ रही परेशानियों को जरा उस बहू की तरह धैर्य से सोचिए
5: और सुलझ जाएंगी परेशानियां, चुटकियों में हल हो जाते हैं मसले।
4: बिल्कुल। सो कैसी लगी आज की स्टोरी हमको जरूर बताइए। और फिलहाल गीता दीदी किधर चली?
5: चली चली मैं तो चली अपने बच्चों की टोली में, यानी हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पर।
4: यस, सो गीता दीदी लौट रही हैं
5: और आप तब तक सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: तो भाई समय हो गया है बच्चों के प्रोग्राम यानी हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी का, और हम आ गए हैं बच्चों के इस मंच पर यानी हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे। और आज हमारे साथ ढेर सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ बच्चे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी का मज़ा लेने के लिए बच्चों को जाना पड़ता है अपने नानी जी के घर या नाना जी के घर या मामा जी के घर। तो शायद हमारे बच्चे कहाँ गए होंगे?
1: नहीं, सब तो ठीक है,
0: नाना के घर गए होंगे ना
2: जी दीदी?
0: सब तो ठीक है मैम, लेकिन आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं और कुछ नाना जी के घर गए हुए हैं, लेकिन हमारी देखिए सानिध्या एकदम पंचुअल कैंडिडेट है और वो आ चुकी है। आ सानिध्या, क्या क्या सुनाओगी
2: दीदी? पोयम और स्टोरी।
0: पोयम और स्टोरी, अरे वाह, तो आज सानिध्या पोयम सुनाने वाली है और साथ में स्टोरी भी सुनाएगी। तो कौन सी पोयम सुनाने वाली हो आज सानिध्या
2: दीदी? कोयल पे।
0: कोयल पे, कोयल पे पोयम सुनिए। वैसे देखिए आजकल कोयल बोल बहुत रही, क्योंकि बहुत सारे आम आ चुके हैं और कोयल को आम का पेड़ और आम के पेड़ पे बैठना और आम खाना ये सारी चीजें बहुत पसंद है ना सानिध्या?
2: मुझे पत्ता आम नहीं, उससे ज्यादा कच्चा आम पसंद है।
0: कच्चा? तो देखो हम लोग को भी तो कच्चा आम पसंद है, नमक के साथ चटकारे लेके खाना है ना।
2: मुझे कच्चे आम की चटनी में सादा कच्चा आम खाना पसंद है।
0: हाँ, बहुत मजा आता है ना कच्चा आम खाने में, खूब खट्टे खट्टे से दांत हो जाते हैं और फिर मम्मा डांटती है क्यों खाया खट्टा आम, अब खाओगी खट्टा आम? तो खट्टा आम का अपना एक विशेष मजा होता है। तो चलिए पहले हम सुनते हैं सानिध्या की प्यारी सी पोयम।
2: कोयल ताली न्यारी न्यारी मीठा मीठा डाटी है, बालों में जब टू टू डाटी मन तो ठुस्टर जाती है। काले रंग की प्यारी कोयल सबते दिल तो भाती है, आम की डाल पर बैठे जब मीठे गीत सुनाती है।
0: वाह, तो देखो हम तो कह ही रहे थे कि आम की डाल पर बैठ करके कोयल मीठे गीत सुनाती है, और मालूम कैसे बोलती है? कू। अब एक बार अगर कोयल को चिढ़ा दिया जाए, उसको बोल दो कू, तो बोलती कू कू कू कू कू कू कू कू। तो भाई सानिध्या ने तो बहुत प्यारी सी ये पोयम सुनाई है। कोयल काली न्यारी न्यारी मीठा मीठा गाती है, बागों में जब कुकू गाती मन को खुश कर जाती है। काले रंग की प्यारी कोयल सबके दिल को भाती है, आम की डाल पे बैठे जब मीठे गीत सुनाती है। तो वास्तव में कोयल की आवाज़ तो बहुत प्यारी होती है। तो चलिए हमारे साथ हमारे अच्छा तुम कह रही थी कि एक और कुछ सुनाने वाली हो स्टोरी। अभी आपको हम थोड़ी देर में फिर मौका देते हैं, तब तक और बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे साथ सत्यम जी हैं और हमारे साथ यश राज भी हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम मौका देते हैं सत्यम को। और सत्यम आज क्या सुनाने वाले हो?
3: आज मैं बताने वाला हूँ इतिहास का सबसे अकेला इंसान।
0: कहाँ का?
3: इतिहास का सबसे अकेला,
0: इतिहास का सबसे अकेला इंसान।
3: जी हाँ।
0: ये क्या होता है इतिहास का सबसे? इतिहास तो कई लोगों से मिलकर बनता है, इतिहास का अकेला इंसान कौन है?
3: माइकल कॉलिंस।
0: ओहो, माइकल कॉलिंस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हम सत्यम के साथ माइकल कॉलिंस के सफर पे और जानते हैं उनके बारे में आज क्या विशेष बताने वाले हैं।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम शायद उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना उनके साथियों का है, लेकिन जिसकी कहानी बेहद अद्भुत है। यह कहानी है माइकल कॉलिंस की, जिन्हें कई लोग इतिहास का सबसे अकेला इंसान मानते हैं। साल 1969, पूरी दुनिया की निगाहें अंतरिक्ष पर टिकी थी। अमेरिका का अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अभियान बन चुका था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतर गए, लेकिन माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में स्थिर कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में अकेले रह गए। उनका काम था यान को सुरक्षित रूप से संचालित करना और अपने साथियों के लौटने का इंतजार करना। एक रोचक तथ्य यह है कि जब कोलंबिया चंद्रमा के पिछले हिस्से में पहुंचता था तब लगभग 45 मिनट तक माइकल कॉलिंस का संपर्क न पृथ्वी से रहता था और न ही अपने साथियों से।
0: उस समय वो इतिहास का अकेला मानव था।
3: जी, उस समय वह ब्रह्मांड में पूरी तरह अकेले इंसान थे। पृथ्वी पर अरबों लोग थे लेकिन उनसे संपर्क करने वाला कोई नहीं। इसीलिए माइकल कॉलिंस को पूरे इतिहास का सबसे अकेला इंसान कहा जाता है।
0: अब बात समझ में आई है।
3: लेकिन उनसे संपर्क करने वाला कोई नहीं। माइकल कॉलिंस ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, उन्हें उस समय डर नहीं लगा बल्कि वह अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि वह अकेले जरूर थे लेकिन खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यदि चंद्रमा से लौटते समय कोई दुर्घटना हो जाती तो माइकल कॉलिंस को अकेले ही पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ सकता था। यह जिम्मेदारी बेहद कठिन और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। अक्सर लोग नील आर्मस्ट्रांग को पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखते हैं, लेकिन माइकल कॉलिंस की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उनके बिना यह मिशन सफल नहीं हो सकता था।
0: बिल्कुल।
3: उनकी कहानी हमें सिखाती है हर सफलता के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुर्खियों में नहीं आते लेकिन उनका योगदान बहुत अमूल्य होता है।
0: सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं और मैं भी लेके जाने वाली हूँ अपने बच्चों को और इस गाने को साथ में गाने वाली हूँ।

0: जाए तो भाई सब लोग चांद पे चलने वाले हैं ना
1: जी दीदी।
0: क्यों सानिध्या, मजा आएगा ना? हम सब हमारे ये सारे हम्प्टी डम्प्टी वहाँ पे मौज मस्ती करने वाले हैं, और आप लोग भी चलना चाहे तो आप लोगों का भी स्वागत है। तो चलते हैं, हमारी सानिध्या बड़े आस लगाए हमारी तरफ देख रही कि मेरा नंबर कब आएगा। अब क्या सुनाने वाली हो छोटी सी सानिध्या? कहानी सुनाने वाली है हमारी सानिध्या। तो आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं सानिध्या से?
1: जी दीदी।
0: तो चलो भाई सुन लेते हैं सानिध्या की प्यारी सी कहानी।
2: एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की डाली तोड़ी, जिसमें उस पर बना टूटे का घोंसला टूट गया और उसमें रखे अंडे।
0: ओ सो सॉरी, तोते का घोंसला ही तोड़ दिया। ओ
2: तोते का रोना सुनता टट फोड़वा वहाँ आया और उसने उसे रोने का कारण पूछने लगा। तोते ने उससे सारी बात बताई। टट फोड़वा बोला, चलो मट्ठी की सलाह लेते हैं। वह मट्ठी के पास गए और उसे तोते की दर्द भरी कहानी सुनाई। मट्ठी ने मेंढक की सहायता लेने की सलाह दी। तोता टटफोड़वा मट्ठी तीनों मेंढक के पास गए और उसे पूरी बात बताई। मेंढक बोला, हम सब एकजुट हो जाएंगे तो हमारी सामने हाथी क्या कर लेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मट्ठी तुम दोपहर में हाथी के पास में जाना और उसके तालों में तो मीठी सी धुन सुनाना। जब वह धुन से मदन होते वह अंधा हो जाएगा।
0: फिर क्या होगा?
2: वह आंखें बंद कर लेना। तब फोड़वा उसकी आंखें फोड़ देना। वह अंधा हो जाएगा और जब उसे प्यास लगेगी तो वह पानी की खोज करेगा। तब मैं दलदल के पास जाकर वहां से तर तर तरने लगूंगा। वह समझेगा कि यहाँ पानी है और वही दलदल के पास
0: फंस जाएगा
2: और वहीं पे फंस कर मर जाएगा। चारों ने मेंढक की योजना के अनुसार अपने अपने काम अच्छी तरह से किए और बिना सोचे समझे काम करने वाला हाथी मर गया। मैटिक से अच्छा शारीरिक बल से बुद्धि बल भारी होती है।
0: तो ये तो सही बात है कि अगर कोई विपत्ति हो तो सोच समझ कर काम करना चाहिए, और सोच समझ के किया गया काम अच्छा होता है, अच्छा फलदायी होता है। तो देखिए चारों ने मेंढक की सहायता लेके योजना बनाई और अपने अपने काम को अच्छे से किया। अब सोच समझ के किया गया काम हाथी के लिए दुर्भाग्य बन गया, यानी हाथी उसी कीचड़ में फंस कर मर गया। तो कैसी लगी बच्चों कहानी?
1: बहुत अच्छी।
0: देखो हमारी सानिध्या कितनी अच्छी कहानी सुनाई है ना? तो एक तो संघ शक्ति का भी संदेश मिलता है इसमें कि सबको साथ साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
1: जी दीदी।
0: तो दुश्मन हमारा कभी भी बाल बांका नहीं कर सकता है।
3: संगठन में शक्ति आपने हाँ, कहानी में भी सुनाई होगी।
0: बिल्कुल, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ कहानी सुनी है ना तुम लोगों ने? हाँ, ये वाली
3: मतलब जो कबूतरों वाली कहानी।
0: हाँ, वो भी कहानी बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही मतलब संदेश देती है कि हमको एकजुट रहना चाहिए। और एक और इसी से मिलती जुलती कहानी है, वो कौन सी है कहानी मैंने सुनाई थी? लकड़ियां वाली कहानी नहीं बताई थी क्या? अकेले अकेले लकड़ी तोड़ देते हैं सभी, लेकिन जब बंडल बांध के लकड़ी दी जाती है तो वो चारों बेटे नहीं तोड़ पाते हैं।
3: तोड़ते हैं तो फिर वो जो बंडल होता है वो आसानी से टूट जाता है।
0: बंडल नहीं, लकड़ी आसानी से,
3: लकड़ियों की जो बंडल रहती है वो आसानी से टूट जाती है।
0: बंडल कैसे टूटेगा? लकड़ी एक एक करके दिया था उनके पिताजी ने,
3: तो उसको तो तोड़
0: उसको तो तोड़ लिया, लेकिन जब उन्होंने उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बंडल बना के दिया तो उसको वो नहीं तोड़ पाए कोई। इससे मिलता है, उन्होंने कहा कि अगर तुम चारों मिल करके रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता।
3: और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चारों लोग आपस में बहुत लड़ाई करते थे।
0: हाँ, लड़ते रहते थे। तो पिताजी ने कहा, मेरा तो अंत निकट आ रहा हो, ये ऐसे ही लड़ेंगे तो इसका कोई ना कोई फायदा उठाएगा। तो इसलिए उन्होंने लकड़ी दे करके उनकी समस्या का
3: समाधान
0: कर दिया था। तो देखो कितनी अच्छी कहानी सुना दी मैंने बातों बातों में, और सानिध्या की कहानी के साथ साथ तुम लोग हमारी कहानी को भी याद करते रहे हो, ये अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम अथर्व की ओर, और अथर्व आज क्या बताने वाले हो सबको?
3: तो दीदी, जैसा कि आपने मुझे एक नाम दिया, टाइटल दिया है, उपनाम
0: हाँ,
3: दिया
0: विचारक
3: है
0: जी हैं आप, हमारे छोटे तो विचारक हैं,
3: तो आपने मुझे कैसे राइट दे दिया है, एक मतलब इंडिपेंडेंट राइट दे दिया है कि मैं कोई भी टॉपिक पर विचार
0: बोल
3: कर
0: सकता हूँ, विचार करके अच्छा सा संदेश तो भी दे सकता हूँ।
3: तो बस ऐसे ही विचार को लेकर के मैं आप सभी के सामने कैसे टॉपिक को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि हमारे इंडिया से ही रिलेटेड है और ये साइंस के फील्ड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि साइंस से रिलेटेड है।
0: तो मुझे कुछ लग रहा है कि
3: आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है और हमारी भारत की जो अचीवमेंट्स है उसको लेकर के तो बहुत ही बड़ा ये मतलब कह सकते हैं डे है। तो आज मैं आप सभी को भास्करा सैटेलाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ,
0: यानी इसरो से संबंधित कहानी।
3: जी हाँ, ये इसरो ने ही लॉन्च किया था इसको आज ही की तारीख में 7 जून को, लेकिन मैं अभी आपको साल बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ भास्करा सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखिए क्या था, भास्करा सैटेलाइट को इसरो ने इसीलिए लॉन्च किया था ताकि वो भारत की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएं और ये जान पाएं कि उसमें क्या और इम्प्रूव करना है, तो इसीलिए भास्करा सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके बारे में भी और आगे जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग इसरो की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, चंद्रयान, मंगलयान और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, 3, ऐसे सारे मिशंस आते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की जो एक कह सकती बैकबोन जो होती है, जिसकी वजह से ये लोग खड़े हुए हैं, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो एक नींव है वो भास्करा सैटेलाइट ही है। तो मतलब कह सकती हैं कि भास्करा सैटेलाइट ही इन सब की नींव को मजबूत करने वाला एक सैटेलाइट है और यही है जो इसरो ने इसको बनाया था और उसकी वजह से आज हम लोग और मिशंस आगे जान पाए, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए अब जानते हैं कि भास्करा सैटेलाइट को लॉन्च कब किया गया था। मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि 7 जून को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको साल 1989 में लॉन्च किया था। और मैं आपको बता दूं कि इसरो ने इसे अपने लॉन्च साइट पर नहीं लॉन्च किया, इसने इसको कपुस्तिन यार जो लॉन्च साइट है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था।
4: ये सोवियत यूनियन, जो कि आज के हमारे वर्ल्ड में रसिया के नाम से कहा जाता है, ये रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, ये वहीं।
3: और इसको एक लॉन्च व्हीकल के अंदर रखा गया था जिसका नाम था इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे क्या था कि उस सैटेलाइट में एक रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था। अब आप सोचेंगे कि रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंटल है क्या आखिर में। तो देखिए क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि ये हमारी जो अर्थ है, जब ये सैटेलाइट ऊपर पहुँच जाता है तो नीचे जितने भी हमारी पूरी अर्थ है उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो रिमोट सेंसिंग सेंस करता है, और जितनी भी नेचुरल सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, जैसे मौसम की जानकारी हो गई और जैसे समुद्र की जो ऊंचाई है, पहाड़ों की ऊंचाई है, जल की स्थिति है, इन सबको स्टडी करने के लिए रिमोट सेंसिंग को उसमें इंस्टॉल किया गया था। और यही सबसे मेन था कि नेचुरल रिसोर्सेस को समझना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मैं आपको बता दूं कि इस सैटेलाइट में 2 टेलीविज़न कैमरास भी लगाए गए थे जो विजिबल लाइट और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के रूप में काम करते थे, और इन्हीं के मीडियम से, इन्हीं के सपोर्ट से फॉरेस्ट्स को, रिवर्स को और क्रॉप्स की जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की जो इमेज है उसको ली जाती थी। आज जब भी हम जैसे मोबाइल पर फोरकास्ट देखते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं, और जो फ्लड की वार्निंग्स आती रहती हैं हमारे मोबाइल में, जैसे कि आप देखी थी बहुत 3-4 दिनों से ऐसे ही आ रहा था, थंडर स्टॉर्म की वार्निंग आ रही थी, तो ये सब हम ही लोगों को इस सैटेलाइट की वजह से पता चलता है। तो और जैसे कि हम लोग मैप्स का भी यूज़ करते हैं, तो इन सब में इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट ही होता है जो
0: काम कर रही होती है।
3: और मैं आपको बता दूं कि जैसे जो भास्करा सैटेलाइट था उसका जो नाम है, जैसे कि आप जानते हैं भास्कर, उसका भी नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया था। आप जानते हैं कि भास्करा हमारे जो भारतीय गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री जो थे उन्हीं के नाम पे रखा गया। अब क्या हुआ, भास्करा सैटेलाइट जब सक्सेसफुल हो गया था तो इसके बाद भास्करा सेकेंड को लॉन्च किया गया था 20 नवम्बर 1981 को लॉन्च किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भास्करा सैटेलाइट से थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन था ये उसका। इसमें क्या था कि आप जो हमारी अर्थ है उसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके पास क्या था कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ इसके पास सबसे ज़्यादा थी भास्करा फर्स्ट के कंपैरिजन से। तो इसीलिए भास्कर सेकंड को दोबारा से लॉन्च किया गया ताकि हम लोग और इम्प्रूवमेंट जान सकें अपने देश के बारे में।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी है और लोगों ने, मतलब जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा कि किस तरीके से हमें वेदर की जानकारी मिल रही है, किस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ पर हैं, कितनी मात्रा में, उसकी जानकारी मिल जाती है।
3: और मैं आपको बता दूं कि जैसे सोवियत यूनियन के जो कपुस्तिन यार लॉन्च साइट है, वहाँ से इसरो ने लगभग 6 साल तक लॉन्च करते रहे, जितनी भी उसके लॉन्च व्हीकल हैं 6 साल तक उसी के मदद लेती रही उन्होंने,
4: क्योंकि उस समय भारत की इकोनॉमिकल स्थिति जो थी वो,
3: आप वो तो जानती
0: बहुत अच्छी नहीं
3: थी, खराब
4: थी। तो हम लॉन्च पैड, लॉन्च व्हीकल, ये सब अपने सबसे अच्छे दोस्त माना जाता है अभी तक इंडिया का, रशिया से ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो हर मंच पे बोलता भी तो है पुतिन कि हम भारत के हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।
3: लेकिन लॉन्च साइट तो सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, लेकिन हम, आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में हमारे साइंटिस्ट इतने ज़्यादा महान थे कि उन्होंने खुद ही डेवलप किया, खुद ही डिज़ाइन किया और बाद में लॉन्च तो दूसरे के मदद से किया।
0: तो भाई बातें तो बहुत हो गई हैं, चाहते हैं कि थोड़ा सा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारी सानिध्य को थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है और ये थकाने वाले दिन ही है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, हमारा पसीना बहुत निकल जाता है और पसीना निकल जाता है तो पसीने के साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हमारे बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, जिससे कि हमको वीकनेस लगने लगती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें खूब सारा पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और तरह तरह के, तो आज हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको पीना चाहिए। केवल कौन से कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए भाई, ये जो नेचुरल हमको पीना चाहिए और ये जो कोका कोला और ये तुम्हारे
3: इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा हो,
0: ये वाले अवॉइड करना चाहिए। हमको क्या पीना चाहिए, सत्तू की ड्रिंक बना के पीनी चाहिए, हमको दही की लस्सी बना के पीनी चाहिए, हमको छाछ पीनी चाहिए और हमको
4: ऐसे फल खाते रहने चाहिए जिसमें वाटर जो है
0: जो ज्यादा हो, तो हाँ बिल्कुल वाटर कंटेंट जिन फलों में ज्यादा,
3: उनको पीना, वाटरमेलन हो गया, ये
0: तो मजा भी आता है ना ऐसी गर्मी में, ठंडे ठंडे हो जब उनको फ्रिज के अंदर से निकालते हैं और खाने में बहुत मजा आता, बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये फ्रूट, और इनको खा करके अपनी मतलब बॉडी को
4: हाइड्रेट
0: कर सकते हैं। और तो चलिए पी लेते हैं हम थोड़ी सी ड्रिंक और ले लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम और मिलते हैं अल्प विराम के बाद आपसे।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं बोलो।

कमा को लेकर गाते चले। तो चलिए भाई, सारे गामा तो ख़त्म हुई, अब हमारे जो ये हम्टी डम्टी है इनकी सारे गामा शुरू हो।

0: सुनेंगे और इसका मोरल भी समझेंगे। तो ठीक है ना बच्चों, सुनते हैं ना कहानी।
1: जी दीदी,
0: चलो शुरू हो जाते हैं।
2: दो युवा दोस्त राम और श्याम ने जंगल जाने का फैसला किया और किसी भी खतरे के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का वादा भी किया। अचानक जंगल के रास्ते में एक भालू ने उन पर हमला कर दिया।
0: Oh my God.
2: राम जल्दी से दौड़ा और एक पेड़ पे चढ़ गया। दूसरी ओर श्याम के पास पर्याप्त समय नहीं था बचने के लिए, वह जमीन पर लेट गया जैसे वह मर गया हो। तेजी से आगे बढ़ा और श्याम के पास आया और ऐसा लगा जैसे भालू राम के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। श्याम ने अपनी सांस रोक तर रखा और कुछ देर बाद भालू चला गया। राम पेड़ के नीचे आया और पूछा, श्याम भालू ने आपके कान में क्या फुसफुसाया? राम ने जवाब दिया, भालू ने मुझे शिक्षा दी, दोस्तों से दूर रहने के लिए कहा जो खतरे के समय में भाग जाते हैं।
0: तो ऐसे तुम लोग तो नहीं भागते हो हाँ, एक दूसरे का साथ छोड़ के?
1: नहीं दीदी, ऐसे हम लोग
0: देखो
1: नहीं।
0: अगर श्याम ने चतुराई से काम ना लिया होता, वो जमीन पर एकदम सीधा लेट गया, उसने अपनी सांस रोक ली, तो भालू उसका काम तमाम कर चुका होता।
1: जी दीदी।
0: भालू की क्या खासियत है ना कि वो उसने श्याम को मरा हुआ समझा और जो ये जानवर हैं ये मरे हुए चीजों को नहीं खाते, मरे हुए लोगों को
1: और
0: नहीं खाते।
1: आपने सबसे अच्छा एग्जांपल एक और सुना होगा कहानी से, दो बैलों की कथा, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है।
0: बिल्कुल दोस्ती
1: का। जैसे आपने हीरा और मोती की, जो जब वो एक भयंकर सांड से भिड़ने गए थे
0: हाँ,
1: तो देखेंगे कि
0: तो दोनों ने बराबर से हमला किया,
1: मोती ने, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानी भी बहुत मुझे हार्ट टचिंग लगती है। जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ ये कहानी। मुंशी प्रेमचंद
1: जी, प्रेमचंद जी जब कहानी लिखते हैं तो उस कहानी में जैसे वो रहते हैं
0: बिल्कुल वही परिवेश एकदम उतार करके रख देते हैं। जैसे अगर गांव की बात की जाए कि उन्होंने बहुत सारी कहानियां गांव पर ही बेस्ट करके लिखी हुई
1: है। दीदी आप जानते हैं कि 9th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन ये जो कहानी है ये अभी भी हम लोग की किताब में है और मैं जब भी इस कहानी को पढ़ता हूँ मन करता है कि इसे बार बार ही पढ़ता।
0: बिल्कुल, एक ये कहानी और एक जो ईदगाह कहानी है मुझे बेहद पसंद आती है, बार बार मैं पढ़ता हूँ ईदगाह। तो एक माँ की ममता उसमें दिखाई देती है और एक बच्चे का माँ के प्रति प्रेम दिखाई देता है कि उसने अपना कितना मतलब सैक्रिफाइस किया ना, उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया और उसने अपनी दादी की चिंता करी कि उनके हाथ रोटी बनाते समय जल जाया करते थे तो उसको कुछ नहीं मिला। उस छोटे बच्चे को एक चिमटा दिखा कि अगर चिमटा मैं ले करके जाऊँगा तो हमारी दादी इससे रोटियाँ पकाएंगी तो उनके हाथ नहीं जलेंगी। और फिर उस चिमटे को ले करके उसने जो दलीलें दी है कि सारे खिलौनों से अच्छा उसका चिमटा है क्योंकि वो सबका मुकाबला कर सकता है। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे दुख भी होता है कि वो समय कैसा था। आज बच्चों के पास हर चीज़ होती है, जहाँ उन्होंने कोई अपनी इंटरेस्ट दिखाया तो पेरेंट्स उनको खरीद के दे देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो एक भारत का दर्शन जो कराते हैं मुंशी प्रेमचंद, वो बिल्कुल हूबहू होता है, उस समय का उतार देते हैं
3: और बिना धर्म को देखे, बिना किसी चीज को भी देखे।
0: हाँ नहीं नहीं, कोई उस समय ऐसा था ही नहीं,
3: धर्म जाति।
0: आज जो जैसा समय आ गया वैसा पहले कहीं भी ये सब चीजें नहीं दिखाई देती थी। भाई चारा दिखाई देता था, एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव सब कुछ था। आज हम देखते हैं कि नफरत की जो है राजनीति हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फैला रखी है, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है।
1: जी दीदी, दीदी
2: मैं
0: आज क्या खा के आई हो भाई सानिध्य, जो तुम्हें इतनी सारी कहानियां याद हो गई हैं। चलो अभी आप भैया लोगों से कुछ और बातें करते हैं, है ना, फिर तुम्हारी कहानी सुनते हैं। तो चलो हम चलते हैं यश की ओर और आज यश एक महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने वाले हैं, जो हम लोग इतने बड़े सबसे कहे तो सबसे बड़ा देश है हमारा पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन ऐसे भी दो देश हैं जो हमारे बहुत छोटे से मोहल्ले के बराबर भी हो सकते हैं, क्यों ऐसा ही है ना।
3: बिल्कुल हाँ। आज हम बात करने वाले हैं वेटिकन सिटी के बारे में, क्योंकि आज ही के दिन जो वेटिकन सिटी है

0: वो आज एक सॉवरेन नेशन बना था।
1: हाँ।
0: मतलब ये 11 फरवरी के दिन जो था ये उस दिन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ये जैसे लागू किया जाता है कुछ चीज़, हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हाँ। है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी को, तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। वैसे ही आज के दिन एक सॉवरेन नेशन पूरी तरह से वेटिकन सिटी हो गया था
1: हाँ।
0: तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे 7 जून से। और मैं आपको बता दूं वेटिकन सिटी और भारत के रिलेशन, चूँकि वैसे वेटिकन सिटी उतना भी कुछ मतलब कह सकते हैं कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं जियोपॉलिटिक्स में उसमें कुछ अपना खास जो इसका हाथ रहता है वो बताता नहीं है, वो बस अपने काम से काम लेता है जो उसका जैसा देश चल रहा है। मैं आपको बता दूँ एक
1: किसी से उसका कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है,
0: वो एक मोहल्ले के बराबर है। और बस आप इतना समझ जाइए कि वो चारों तरफ से इटली जो देश है उससे घिरा हुआ है, तो वो एक देश से घिरा हुआ है और उसी से देखिए वो इटली चाहे तो वेटिकन सिटी पे आज इन्वेट करके आज ही वो
1: अपने में मिला
0: अपने
1: सकता
0: में
1: है।
0: मिला सकता है
1: हाँ।
0: तो वेटिकन सिटी खुद ही नहीं चाहता है कि हम किसी से देश रखें, वो कहते हैं ना कि तालाब में रह के ही मगर से देश कैसे
1: हाँ सकते बिल्कुल और क्या।
0: तो बस वही वाली बात है कि वो भी इटली नाम है एक तालाब में है और वो उससे देश या किसी भी देश से या ऐसा देश नहीं रखना चाहता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट और आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक ऐसे देश की यात्रा पर जो क्षेत्रफल में इतना छोटा है कि कई शहरों के एक मोहल्ले से भी छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 800 सिर्फ 800 की पॉपुलेशन। और मैं आपको बता दूं ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, वहाँ का एक प्रेसिडेंट भी है, वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर भी है, कई मिनिस्टर्स भी हैं, ये घर के मिनिस्टर से क्या है वो? जैसा हम लोग कहते हैं अपनी मम्मियों को होम मिनिस्टर, वहाँ पे क्या पता ऐसा कुछ होता हो, मैंने ऐसा सुन रखा है। वहाँ पर खुद की उसकी एक करेंसी भी है, खुद का जो रेलवे नेटवर्क है उसके पास वो भी है, एयरपोर्ट बनाने का जगह
1: कुछ है, पर इतना कम पॉपुलेशन है वहाँ पे
0: क्या ही कहा जाए उसके बारे में। उस देश वो देश लगता ही नहीं है देश, लेकिन वो हमारे नक्शे पे है और यूनाइटेड नेशंस उसे एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर
2: रहा है। हम लोग तो उसे एज अ मोहल्ले के रूप में देखते हैं, लेकिन वो है एक देश ही।
0: अब जरा सोचिए दुनिया का सबसे छोटा देश है वो कितना छोटा होगा, मतलब है तो छोटा लेकिन वो कितना छोटा, अभी मैंने बोला मोहल्ले के बराबर। वेटिकन सिटी का असल क्षेत्रफल केवल लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर है। 0.49 वर्ग किलोमीटर। और मैं आपको ये भी बता दूं हमारा जो गोंडा है वो 4003 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर में फैला है,
1: एक गली समझ लीजिए।
0: यानी आप कुछ ही मिनटों में इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। ये देश पूरी तरह से इटली के राजधानी रोम,
1: मेरे ख्याल से पैदल पैदल ही इसका चक्कर लगाया जा सकता है,
0: बिल्कुल उसमें कोई वही नहीं है। और आप आसानी से इटली, और ऐसा भी नहीं इटली भी इससे कोई चीज नहीं रखता, इटली भी इसे ऐसा देश रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि इटली भी एक पीसफुल कंट्री है
1: जी।
0: और आप जो इटली इटालियंस लोग हैं वो आसानी से जाके वेटिकन से मिल सकते हैं, जो वेटिकन सिटी के लोग हैं उनसे जाके आसानी से बॉर्डर पार कर सकते हैं। वो बॉर्डर सिर्फ एक रोड पे एक लाइन है और बाकी और कुछ नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि वो उन्हीं के देश का एक पार्ट है, बट है वो एक कंट्री, एक अलग कंट्री। लेकिन अब बात करते हैं ये वेटिकन सिटी इतना छोटा ये बना कैसे। सदियों तक पोप्स मध्य इटली के बड़े क्षेत्रों पर शासन करा करते थे, फिर 1929 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे लैटरन ट्रीटी कहा जाता है। यही जो लैटरन ट्रीटी थी ये ख़त्म हुई थी 11 फरवरी को, लेकिन फिर उसके बाद 7 जून को, जो कि आज का दिन है, 7 जून को ऐसा डिक्लेयर इसको सही से कर दिया गया था कि आज ये कंट्री है। इस ट्रीटी के बाद वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था और तभी से दुनिया का सबसे छोटा सॉवरन स्टेट माना जाता है। ये बात हुई थी 11 फरवरी को, लेकिन ये हुआ था 7 जून को, क्योंकि समय तो लगता है। लेकिन असली आश्चर्य अभी भी बाकी है, इतना छोटा देश होने के बावजूद वेटिकन सिटी का अपना डाक विभाग है, अपना रेडियो स्टेशन है, अपनी नागरिकता प्रणाली है।
2: अब आप सोच सकते हैं उस मोहल्ले में क्या क्या नहीं है, सब कुछ है जो एक देश में होना चाहिए,
0: अपने सिक्के, अपने डाक टिकट, और यहाँ तक कि अपनी सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध स्विस गार्ड जो वहाँ की आर्मी है वो भी होती है। वहाँ की पॉपुलेशन 800 है,
1: यानी कि घर का हर मेंबर हर मतलब हर किरदार निभा रहा है।
0: और उनकी रंग बिरंगी वर्दी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आप जाके देख सकती हैं गूगल्स पे। अब बात करते हैं वेटिकन सिटी के सबसे प्रसिद्ध स्थान की सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये दुनिया के सबसे भव्य चर्चों में से एक माना जाता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये जो चर्च है

0: ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वेटिकन सिटी को एज अ कंट्री रिकग्नाइज करने के लिए। इसके विशाल गुंबद, शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को देखने हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। मतलब आप देखिए वेटिकन सिटी के जो टूरिज्म है वो भी इतनी ज्यादा है,
1: 800 लोगों को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं।
0: अब देखिए ये इटली से जुड़ा हुआ है लेकिन वैसा ये कंट्री है। अब ऐसा हमारे साथ भी एक समय हो चुका है, ये जब हमारे 1947 का पार्टीशन हो रहा था तब हैदराबाद और जूनागढ़ ये जो दो प्रिंसली स्टेट थे ये चाहते थे कि हमारा विलय पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि जो हैदराबाद और जूनागढ़ की प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चारों तरफ से इंडिया के इंडिया से ही
1: घिरे।
0: अब यहाँ पर दिक्कत एक ये पड़ जाती कि देखिए ऐसा हो सकता था उस समय पर कि उनको एज अ पाकिस्तान का पार्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा जो समय के हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और हमारे सबसे बड़े दुश्मन देशों में से एक है पाकिस्तान, या नंबर एक भी कह सकते हैं। तो दुश्मन देश से कनेक्शन और हमारे बगल में ही हम इंडिया में, हमारे बगल में ही पाकिस्तान है, तो ऐसा नहीं चल
1: नहीं चल सकता
0: ऐसा। और जो इटली रोम ये वाली बात है वेटिकन सिटी इटली, तो ये लोग दोस्त हैं तो दोस्त की तरह आप रह सकते हैं भले, क्योंकि हमारे घर के बगल भी तो हमारे पड़ोसी रहते हैं, लेकिन वो हम उनसे उनके साथ रह पा रहे क्योंकि वो हमारा ऐसा दोस्त है, तो हम ऐसा उस समय नहीं कर सकते
1: भाई। सीमावर्ती क्षेत्र होता तो एक बार विलय भी किया जा सकता था
0: और फिर टेररिज्म जो होता वो क्या ही वो, क्योंकि रूट्स जुड़े रहते हैं और इंडिया चाहता तो इसको बना सकता था लेकिन उसने पार्ट नहीं बनने दिया। अब बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर एक तरफ से पाकिस्तान से भी जुड़ा था, एक तरफ से चाइना से भी जुड़ा था, थोड़ा बहुत उसका पार्ट अफगानिस्तान से भी जुड़ता था, फिर उसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वहाँ से भी थोड़ा बहुत उसका बॉर्डर, तो आसानी से उसको एक स्टेट या अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जा सकता था और ऐसा हुआ भी। लेकिन फिर जो होता है मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अगर मैं अपने विचार यहाँ रखूँगा तो
1: नहीं भाई, हम बच्चे हैं अभी, हमको विवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं।
2: दीदी हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं,
1: बस बस ये हमारे कोर्स का एक हिस्सा हो सकता है, ये जानकारी के लिए हमें बस है, हमारे पास इतना ही काफी है, बाकी हमें हम बच्चे हैं, हमको राजनीति से अभी कुछ भी लेना देना नहीं क्योंकि अभी तो हमारे सामने बहुत बड़ी लाइफ है, हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है,
0: भारत को आगे
1: भारत को आगे बढ़ाना है। तो चलिए चलते हैं, हमारे बीच में सत्यम अभी फिर कुछ सुनाने वाले हैं, लग रहा है कि कुछ मनन करके बैठे हुए हैं।
3: जी दीदी,
1: क्या क्या सुनाने वाले हो
3: आज? दीदी मैं भी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं।
1: तो आज बहुत सारी कहानियां हो गई और हमारी सानिध्य ने जैसे कहानियों का सिलसिला शुरू किया तो देखिए सबका मन करने लगा है कि कहानी सुनाई जाए, तो चलो सुनते हैं आपकी कहानी।
3: जी कहानी का नाम है दोस्ती की असली सीख। एक छोटे से गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल में दो बच्चे पढ़ते थे, आरो और मोहन, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते।
1: बिल्कुल ऐसे ही होना ही चाहिए।
3: एक दिन स्कूल में परीक्षा होने वाली थी, मोहन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था जबकि आरो बहुत होशियार था। परीक्षा से एक दिन पहले मोहन उदास बैठा था, तभी उनकी टीचर जी आकर बोली, क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने धीरे से कहा, मैडम जी मुझे डर लग रहा है कि मैं परीक्षा में कहीं अच्छे नंबर से ना पास हूँ।
1: ये तो सभी को डर लगता है
3: जी। यह सुनकर आरो बोला, मैडम जी मैं आज से मोहन को रोज पढ़ाऊंगा।
1: वाह,
3: हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। टीचर जी मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्ची दोस्ती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। उस दिन के बाद आरो रोज मोहन को पढ़ाने लगा, धीरे धीरे मोहन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। परीक्षा हुआ और जब परिणाम आया तो मोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे, उसने कहा, अगर आरो मेरा साथ ना देता तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। टीचर जी ने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों याद रखो, दोस्तों की केवल हंसी मजाक का नाम नहीं है, दोस्ती का मतलब यह है कि एक दूसरे को आगे बढ़ना, हिम्मत देना और सही रास्ता दिखाना।
1: भाई सच्ची दोस्ती तो इसी को कहेंगे।
3: जी दीदी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में आपका हाथ थामे और आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे।
1: बिल्कुल, और ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए कि जो हमको गर्त में गिराने वाले हैं, गड्ढे में ढकेलने वाले हैं, तो ऐसे दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
2: आप ये मतलब नहीं होता कि आपका फ्रेंड सर्कल कितना ही बड़ा हो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे फ्रेंड्स हैं तभी आपका फ्रेंड सर्कल
1: बिल्कुल
2: फ्रेंड सर्कल कहलाएगा, नहीं तो फिर वो,
3: और चाहे वो एक ही दोस्त क्यों ना हो।
1: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, तो यही तो सच्ची दोस्ती है। तो चलो अब अथर्व, आप कुछ कहना चाहते थे?
2: जी दीदी, जैसे कि आप जानती हैं कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भास्करा सैटेलाइट भी एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, एक अचीवमेंट की तरह ही है। सेम वैसे ही हमारे इंडिया से रिलेटेड एक और चीज़ है जो कल होने वाली है, ऑल इंडिया रेडियो का कह सकती हैं फाउंडेशन डे।
1: अरे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं।
2: जी हाँ, मतलब कह सकती हैं उसका एक बॉस मतलब कि सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रेडियो को ही सुनने वाले जो लिसनर्स हैं
1: जी,
2: वो हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल करके कल के दिन 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो यानी कि कह सकती हैं आकाशवाणी कर दिया गया था
1: जी।
2: अब आप में से बहुत से लोगों ने रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनी होगी, या सुबह सुबह जैसे भक्ति जो गीत होती है वो आपने सुना होगा, या रात को पुरानी फिल्मी गाने जो हमारे गुंडा के
1: चलता रहता है
2: हमारे रेडियो में। और अगर हाँ तो कहीं ना कहीं आप ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया रेडियो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका
1: है। बिल्कुल,
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ कि ऑल इंडिया रेडियो है क्या। तो क्या था कि ये इंडिया का एक नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1936 में हुई थी, यानी कि 1936 में इसका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से नाम बदल करके 1936 में इसका 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया था। और फिर बाद में इसका एक पॉपुलर नाम पड़ा आकाशवाणी, जिसे मतलब बहुत ही ज्यादा सुना जाने लगा था। जब इसका नाम एक नया नाम आया तो और भी ज्यादा लिसनर्स बढ़ गए।
1: पहले वालों को रेडियो सुनते थे, ये आकाशवाणी का रेडियो केंद्र है, अब आप समाचार सुन रहे हैं जब बचपन में इस तरीके से सुनाई देता था तो सब लोग सतर्क हो जाते थे और वो सुनने के लिए रेडी हो जाते थे।
2: अब आप जरा इमेजिन करिए कि इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे,
1: कुछ नहीं,
2: सोशल मीडिया तक भी नहीं था, लेकिन फिर भी देश भर की जो खबरें थी, संगीत थे, सरकारी जानकारी थी, वो लोगों तक रेडियो के माध्यम से पहुंचा। तो मतलब कितना कह सकते कितना अमेजिंग था वो जब जमाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पे हम लोग बैठे हुए हैं।
2: और आकाशवाणी ने आजादी के दौर से लेकर के आज तक करोड़ों लोगों के घर तक ये आवाज पहुंचाई है, कि चाहे इलेक्शंस हो या डिजास्टर अलर्ट ही क्यों ना हो और वेदर अपडेट्स हो, ये सब भी जितने भी हैं इन सब के पीछे AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का रोल है। और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो ऑल इंडिया रेडियो है वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश तक ही नहीं लिमिटेड था, बल्कि भारत की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो थी उसको भी रिप्रेजेंट करता था। मतलब कि कह सकते हैं आप बहुत सारे जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं 22, तो उन सभी को ये एज अ लाइव ब्रॉडकास्ट करता था। तो आप सोच सकती हैं कि जितने भी डायलेक्ट्स थे, लैंग्वेजेस थे, वो सब ऑल इंडिया रेडियो में मिक्स था, यानी कि ऑल इन वन
1: यानी कोई भी भाषा हो भारत की, सारी भाषाओं में प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे।
2: और इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो है ट्रस्ट, भरोसा।
1: जी,
2: जब रेडियो पर कोई बुलेटिन आता है, मतलब कि कोई जैसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो, तो उसे लोग सीरियसली इन्फॉर्मेशन के रूप में देखते हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है तो सीरियसली तो देखना ही पड़ेगा। और इसी के साथ AIR ने इंडियन म्यूजिक को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स थे, फोक म्यूजिक थे, रीजनल आर्टिस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराया, कि बहुत सारे रीजनल आर्टिस्ट आते थे स्टूडियो में, अपना परिचय देते थे और यहीं से उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो भी बढ़ जाती थी।
1: जैसे हाँ, आप लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है
2: अब वो दीदी हमारे लिसनर्स के ऊपर ही है कि अगर वो हमें और भी ज़्यादा सुने और ये बातें अपने जितना भी हो सके, जितना भी दूर हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, तो हमारी भी फैन फॉलोइंग बढ़ सकती है।
1: तो भाई हमारे जो भी लिसनर्स बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप हमारे बच्चों का प्रोग्राम काफ़ी दूर तक फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि सारे लोग इस प्रोग्राम को सुने और इंजॉय करें बच्चों की बहुत प्यारी बातें।
2: और लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल पूछता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, कि आज के डिजिटल ज़माने में रेडियो का क्या मतलब रोल है। तो वैसे रोल तो मैंने आपको पहले ज़माने का बता दिया, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आज भी रेडियो हम लोग के लिए एक यूनिक स्ट्रेंथ है।
1: बिल्कुल।
2: और जब भी आप गाड़ी चला रहे हों, काम कर रहे हों, या आपका इंटरनेट वीक हो, तो आप फोन को साइड में रख करके रेडियो आपके पास हो तो उसको सुनिए।
1: आज हमारे फोन में ही रेडियो है।
2: हाँ वो तो है, लेकिन कभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे कभी भी आपका मोबाइल बंद पड़ जाए तो आप फिर कैसे गाने सुनेंगे, या फिर अपने आपको कैसे अनडिस्टर्ब रखेंगे। तो फिर इसीलिए आप एक रेडियो खरीद करके अपने घर लाइए, अगर है पहले से तो उसी में ही उसको हर जगह लेके घूमते रहिए।
1: पहले तो मालूम है हर घर में एक रेडियो बड़ा सा होता था, उसकी एक प्रॉपर प्लेस होती थी और वहाँ पे वो सेट कर दिया जाता था।
3: जी दीदी,
2: जैसे कि ड्राइंग रूम में एक रेडियो रखा
1: रहता था, बच्चों को छूने की इजाजत नहीं थी उस रेडियो को।
3: दीदी मुझे
1: ऊपर सबसे ऊपर रखा जाता था, जहाँ पापा पहुँच सकते थे, जहाँ मम्मा पहुँच सकती थी, वहाँ वो रेडियो रखा जाता था, हम बच्चों से काफी दूर, कहीं टूट ना जाए, वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी।
3: जी दीदी,
1: तो आज भी मतलब आज तो हर मोबाइल में रेडियो लेकर हम घूम रहे हैं।
3: दीदी मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा मतलब रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे।
1: हाँ, कमेंट्री बहुत लोग पसंद करते थे, क्योंकि जो भाई देखने नहीं जा सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए रेडियो ही एक माध्यम था।
2: खैर वैसे आज तो टीवी में हम लोग लाइव सुन सकते हैं और मैच देख सकते हैं।
0: मैं तो अभी देखते हुए आ रहा हूँ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच।
1: एक छोटा बच्चा भी, आप लोगों जैसा बच्चा भी अभी जल्दी ही जो है खेल में शामिल हुआ है।
3: वैभव सूर्यवंशी
1: जी 15 वर्ष का वो बालक है और बहुत अच्छा खेल रहा है।
3: जी दीदी,
0: और इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया है।
1: हाँ,
3: इंडिया की तरफ
2: इंटरनेशनल डेब्यू भी है
1: जी।
2: हम तो यही चाहते हैं कि
0: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। 19 साल के उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अपना जो इंटरनेशनल डेब्यू था वो किया था पाकिस्तान के खिलाफ, 16 या शायद 19 साल, तो अभी वो 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, और वो हम लोग से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। मैं 14 साल का हूँ, वो 15 साल के हैं। और अभी वो ऑरेंज कैच जीता उन्होंने, सियारा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, और ना जाने कैसे कैसे एंजल वन सुपर।
1: तो वही है बच्चों की, जिस पे आप फोकस कर रहे हो, जिसको आप अपना आदर्श मान रहे हो, जिस फील्ड में आप निकलो, जिस स्ट्रीम में आप बहना चाहते हो, वो सब आपके अंदर है
3: जी।
1: बस
0: 100% देना होगा।
1: हाँ, उसके लिए जो है आपको मेहनत करनी होगी, आगे तक जाना होगा। तो चलिए हमारा समय अब यहीं पर समाप्त होता है, आप लोग यूं ही सुनते रहिए रेडियो ज्ञानेश्वरी 89.6 FM।
2: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और इस समय दोपहरिया है भाई, आप सभी को आदाब है, आप सभी का प्रणाम है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है, इस्तकबाल है। आप सुन रहे हैं और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर के रकन और कार्यक्रम चल रहा है। आज का विशेष खास, जी हाँ, ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM। हम रोज़ तो नहीं लेकिन हफ्ते में एक दिन इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं आप सभी के साथ, तो ये खासा विशेष कार्यक्रम बन जाता है। मैं हूं आप सभी का दोस्त मनु और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट आरजे
1: अदनान। सो यस, संडे का वक्त है और मुझे लगता है भारी भरकम लंच करके लोग खर्राटे ले रहे हैं।
0: हाँ ये बात तो सही,
1: दोपहर का वक्त है,
0: दोपहर का वक्त,
1: और ये भी सोच रहे हैं कि ये संडे इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है।
0: क्यों बीत जाता है,
1: अभी हम रात में ही तो सोए थे और इस

0: एक बज गया
1: सो कोई बताएगा यहाँ मौजूद पार्टिसिपेंट में कि ये संडे इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है, क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं दो नहीं तीन तीन पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले तो बता दे हमारे साथ में हमारी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी लिसनर सविता दुबे जी हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, सभी को नमस्ते।
1: अरे बहुत स्लो बोला है ये, गया ही नहीं, सब खर्राटे में चबा रह गया।
0: तेज बोली
1: एक बार फिर से,
0: धारी
2: सभी को नमस्ते, सभी को शुभ दोपहरिया।
1: और एक बार बंगाली में बोली ना,
2: शुभ दोपहर, शुभ सकाल থেকে দুপুর হয়ে গেছে, কিন্তু রবিবারে কারোর জন্য ছুটি নেই, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য তো ছুটি নেই, সারা কাজ করতে হয় রবিবারের দিন।
1: ये ज्यादा था, अब समझ में नहीं आया।
0: समझ में ये उन्होंने कहा कि रविवार का दिन महिलाओं के लिए कोई खास नहीं होता है, उनको काम करते करते ही बीत जाता है।
1: ओ क्या बात है, सो लगता है आपका भी काम ऐसे ही करते करते बीतता है।
0: अरे क्या बताएं, अभी आए हैं, फिर 6 से 11 यहीं रहेंगे।
1: चलिए बहुत बढ़िया।
0: हमारा तो दिन यही गुजरता है
1: जी। सो इसके साथ ही साथ सृष्टि भी मौजूद है और रिया भी मौजूद है। आप लोग कैसी है, अपना हाल चाल बता दें।
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: सब बहुत बढ़िया। रिया क्या हाल चाल है?
4: सब बढ़िया है।
1: बढ़िया। मेरा सवाल प्रश्न ये था कि इतनी जल्दी संडे क्यों बीत जाता है, बताइए।
4: क्योंकि घर पे सब लोग रहते हैं।
1: क्योंकि घर पे सब लोग रहते हैं,
3: बाकी दिन काम बहुत होते हैं।
1: काम बहुत होते हैं
0: संडे को, काम बहुत।
1: कौन सा काम ज्यादा होता है जो बाकी दिन इतना नहीं होता है? मंडे टू सैटरडे संडे ज्यादा होता है।
3: साफ सफाई सब रहता है।
1: साफ सफाई, ये सिर्फ यहाँ आके माइक पे बोलते हैं आप लोग या सच में करते भी हैं?
3: मतलब लग,
1: कहने और करने वाला थोड़ा अलग फेस हो जाता है।
0: मतलब आप झाड़ू लगाने में एक्सपर्ट हैं?
3: सारे काम
0: जी हाँ। फिलहाल कितने घर पकड़े हुए हैं आपने?
3: खुद का घर।
0: अच्छा, हमको लगा शायद ये नहीं, इस समय मंदिर चल रही है भाई, लोग मिल नहीं रहे हैं,
3: सोच रहे मंदिर का भी पकड़ लेते हैं।
4: हाँ। मंदिर का मैं पकड़ी हूँ।
0: अच्छा
1: अच्छा। सो घर भी एक मंदिर है, और शुरुआत अगर घर से होती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं। रिया ने तो सीधे बोल दिया भैया काम ही नहीं करती। काम नहीं करती तो क्या करती है आप?
3: काम चोरी।
1: काम चोरी नहीं, ये तो इनसे ही पूछेंगे भाई ये क्या करती है, अगर काम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? संडे को क्या करते हैं आप?
4: संडे को
1: संडे को ही पूछ रहे हैं क्या करते हैं आप?
4: 10 बजे सो के उठते हैं।
1: 10 बजे सो के उठते हैं और
4: जी, फिर उसके बाद
1: फिर सो जाते हैं?
4: नहीं, नहा धो के फ्रेश होके मंदिर आते हैं।
1: अच्छा, फिर सो जाते हैं?
4: नहीं, अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं।
1: अच्छा, फिर सो जाते हैं?
4: फिर उसके बाद 12 बजे यहाँ के लिए निकलते हैं।
1: निकलने में फिर सो जाते हैं?
3: नहीं सर। अच्छा। निकलती फिर चौक चली जाती है,
4: चौक घूमने वैसे ही
3: 12 बजे बताती स्टूडियो जा रहे हैं।
1: अच्छा, फिर उसके बाद ओपन माइक में आ जाते हैं आप? ओपन माइक से जाके फिर सो जाते हैं?
4: नहीं, तो सोते ही नहीं, क्योंकि 10 बजे सोते हैं, उठते हैं सुबह, फिर यहाँ से जाएंगे, खाना ना खाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर फोन चलाएंगे, फिर इसके बाद घर के बगल में चले जाएंगे, फिर वहाँ से हटेंगे तो दूसरे बगल में चले जाएंगे, फिर अपने घर आ जाएंगे।
1: ये घर के बगल और उसके भी बगल में है क्या
4: काम? मतलब इस समय गर्मी की छुट्टी है।
1: हाँ।
4: तो मेरी फ्रेंड लोग आई हैं,
1: फ्रेंड्स
4: मतलब बुआ की लड़कियाँ आई
1: हैं। अच्छा, बुआ की लड़कियाँ आई हैं, तो क्या मतलब बगल में ही आपके रिलेटिव्स होते हैं?
4: मोहल्ले की हैं।
1: अच्छा,
4: मतलब मेरा उनका बहुत अच्छा ही वो है,
0: बॉन्डिंग है।
4: Yes.
1: बॉन्डिंग है। ओ, जेम्स बॉन्ड।
4: मतलब वो आ जाती है तो मतलब मैं अपने घर पे नहीं रहती, केवल रात में जाते हैं सोने के टाइम।
0: क्या बात,
1: मतलब ये दोस्ती इतनी बढ़िया है या मम्मी और पापा की परमिशन इतनी ज्यादा मिली?
4: मम्मी पापा की परमिशन, मम्मी पापा तो बुलाते जाते हैं, हम कहेंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, कहते हैं चलो आ रहे, फिर उसके बाद 2 घंटा 2.5 घंटा बाद फिर आएंगे, लेकिन मैं वहाँ से हटने वाली नहीं।
0: कितनी आज्ञाकारी बेटी मिली है माता पिता को।
1: नहीं, मतलब तो दोपहर का खाना और शाम का वो नाश्ता भी उन्हीं के घर होता है। हाँ। मंदी में बचाने का तरीका बना। हाँ। पड़ोसी के घर जा जाके खाओ,
0: खाओ, खाओ, खाओ।
4: नहीं मतलब अपने घर पे सुबह ब्रेकफास्ट अपने घर से ही करके जाते हैं।
1: और उसके बाद तो
4: उसके बाद वही, क्योंकि दोपहर में मैं खाना खाती नहीं हूँ, यही बाजार से चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया।
1: अच्छा,
4: यही सब खा के अपना भी खाएंगे, उन लोग को भी खिलाएंगे, मतलब बिगड़े हैं तो साथ में बिगड़ो।
1: ये लो,
0: मतलब आपने कभी हम लोग को नहीं खिलाया? मतलब
4: चलिए आप चौक चलिए खिला देंगे,
1: ये चलते चलते ही बेहोश हो जाएंगे फिलहाल इतनी। अब आप खुद कैसे चल रहे हैं तो हम लोग खुद सोच रहे हैं।
4: मतलब चलने में चाहे जितनी धूप हो, घूमने को मिल जाए मेरे को, फिर चाहे दिन हो दोपहर हो रात हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल घूमने को मिल जाए,
1: केवल घूमने को मिल जाए। बस एक छाता दे दो हाथ में,
4: छाता भी नहीं चाहिए,
1: अच्छा छाता
4: कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को लोअर टी शर्ट मिल जाए और घूमने को मिल जाए।
1: अरे वाह,
3: चप्पल
1: चप्पल
4: चप्पल भी नहीं चाहिए मेरे को,
1: चप्पल लो भाई। अब बात ही खत्म हो गई। नहीं, अब आपको इस शो में अलग से हम इनवाइट करेंगे, विशेष आप बन गए हैं।

0: गई और आपका हम आईक्यू लेवल चेक कर लेते
1: क्योंकि
0: हैं।
1: मैं विदाउट स्लीपर ही जाती
0: हूं। देखिए अच्छा एक वॉशिंग मशीन है
1: जी,
0: वॉशिंग मशीन में पानी भर दिया गया
1: जी,
0: और पानी भरने के बाद आपको एक बाल्टी दी गई
1: जी,
0: एक जग दिया गया
1: जी,
0: और एक गिलास दिया गया
1: जी।
0: अब बताइए कि आप तीनों में से किसका प्रयोग करके वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकालेंगी?
1: वॉशिंग मशीन में पानी पूरा फुल है कि
0: फुल है? फुल है
1: तो बाल्टी से निकालेंगे, जाहिर सी बात है बाल्टी से
2: निकालेंगे। मुझे इतनी सिंपल सी बात आप जान नहीं पाए, बताइए।
0: बहुत प्यारा दिमाग है आपका, मतलब मस्त है।
2: क्या बात है। अच्छा हम इसीलिए कहते हैं चप्पल पहन के निकला करो।
0: चप्पल पहन
1: के वॉशिंग मशीन में छोटी बाल्टी चली जाएगी,
2: छोटी बाल्टी चली जाएगी। अरे ड्रम चला जाएगा अगर वॉशिंग मशीन बड़ी है तो।
1: मेरे घर में इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन
0: है। मतलब आपसे एक अनुरोध है कि आप जब निकले घर से या कभी भी सुबह जब योगा करें,
1: योगा नहीं करते हम
0: तो, कीजिए थोड़ा सा मेरे कहने पर, तो थोड़ा सा नूरामेंट और आयोडेक्स इन दोनों को मिलाकर घुटने पर लगा लीजिए, आप हमेशा जो है वो कामयाब रहेंगी। ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा आपका।
1: मेरे को दर्द ही नहीं होता।
0: नहीं हम दिमाग की बात करें मतलब। अच्छा तुम बताओ क्या करती सिस्टर, अगर तुम कुछ दिया जाता तो?
3: मशीन में तो ऑलरेडी पाइप रहती है।
0: हाँ
1: भूल गए
3: निकालने में।
0: मतलब हाँ ड्रेन वाला बटन ऑन करना है और निकाल देना है, है कि नहीं आंसर? अभी देखिए बाल्टी का प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी हमारी तरह समझदार निकली, इन्होंने बताया कि पाइप होता है ड्रेन वाला ऑन करेंगे और पानी निकल जाएगा।
2: नहीं तो देखिए उससे ज़्यादा समझदार मैं रिया को मानता हूँ, क्योंकि अगर बाल्टी से पानी निकालेंगे तो पानी आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
0: हाँ
2: और अगर ड्रेन करेंगे तो सीधे पानी
1: नाली
2: में जाए। ये यहाँ से पकड़े, देखिए आपसे भी एक कदम आगे निकल के तब इन्होंने बताया, इसीलिए चप्पल नहीं पहनते। आप हल्के में ले रहे हैं इनको,
0: नहीं हम भारी मिलेंगे।
2: चलिए सो संडे क्यों जल्दी बीत जाता, हम ये पूछ रहे थे। फिलहाल एक बार वापस से हम सविता दुबे जी की तरफ चलेंगे और जानना चाहेंगे कि संडे आखिर इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है?
4: क्योंकि संडे के दिन ज़्यादा काम काज रहता है घर का, घर में छुट्टी भी रहता है सबको, तो इसीलिए जल्दी बीत जाता है। और साथ में साफ सफाई भी अच्छे से कर पाते हैं सबके ही को साथ में लेके, इसीलिए जल्दी बीत जाता है संडे।
2: कहते हैं कि संडे को छुट्टी होती है जो ऑफिस वाले हैं उनका बंद होता है, बिजनेस वाले भी एक दिन छुट्टी ले लेते हैं। कहते हैं फीमेल्स को छुट्टी मिलती ही नहीं है,
4: नहीं मिलती है।
2: क्या आपके लिए संडे कोई माने रखता है या संडे भी वैसे ही होता है जैसे बाकी दिन होते
1: हैं?
4: नहीं महिला के लिए संडे भी एक ही जैसा है, महिला के लिए कभी भी मतलब छुट्टी का दिन अलग से उसको लेना पड़ता है, अपने लिए निकालना पड़ता है।
2: तो एप्लीकेशन कहाँ देते हैं फिर छुट्टी की?
4: वो अपने मन में देना पड़ता है।
2: अच्छा, मन में देना पड़ता है।
4: मन को देना पड़ता है कि आज चलो जल्दी सारा काम कर लिए, थोड़ा टाइम के लिए छुट्टी मिल जाए।
2: अगर मान लीजिए एक एप्लीकेशन पत्र लिखना हो पतिदेव के नाम पे तो क्या होगा उसमें, मैटर लिखा क्या जाएगा उस पत्र में?
4: पतिदेव को
2: प्रिय पतिदेव संडे अवकाश के संबंध में
0: विषय है,
4: मेरे पतिदेव के लिए कभी भी मुझे छुट्टी नहीं देगा, बोलेगा हर टाइम काम करो तो ही ठीक है।
2: अच्छा
0: मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि संडे को पत्नियाँ ज्यादा परेशान होती हैं, हमारी वाली तो कहती है संडे आता ही क्यों है।
2: घर पे ज्यादा रहते होंगे, इससे अच्छा जैसे बच्चों वाला होता था कि इससे अच्छा बाहर ही खेल लो, अपना काम तो कर लो।
0: वही होता है, कैसा हलवा बना लो, अच्छा पकौड़ी बना लो। अब उसी गर्मी में बेचारी भूजती है और सोचती है कि संडे आता क्यों है। तो महिलाओं को तो लगता है विशेष दिक्कत होती है।
2: नहीं एक दिन तो मतलब लिटरली देखिए 6 दिन हम भी काम करते हैं तो एक दिन हमको भी लगता है कि नहीं यार थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, आराम से उठे मॉर्निंग में, भले फिर दिन में और काम कर लेंगे। बट ये सालों साल फिक्स्ड रूटीन जो चल रहा है वो थोड़ा सा अजीब रहता है, ये ज़रा सोचने वाली बात होती है ना?
0: अच्छा जी बिल्कुल सोचने वाली बात होती है।
2: ओके
0: तो हाँ तो एप्लीकेशन नहीं भी पूरा किया।
2: हाँ उसमें लिखा क्या जाएगा?
4: हमें भी एक दिन छुट्टी चाहिए।
2: हाँ इस नहीं जैसे पत्र लिखते हैं ना तो उस पर क्या लिखा होगा? प्रिय प्रतिदेव, नहीं पतिदेव सॉरी, प्रति हो जाएगा इसे। प्रति पीस हो जाएगा। हाँ छुट्टी के संबंध में मैं आपकी धर्म पत्नी
4: सविता दुबे मैं चाहती हूँ कि मुझे हफ्ता में एक दिन छुट्टी चाहिए।
2: हफ्ता में एक दिन हफ्ता वसूली करने तो
4: वसूली नहीं करेंगे हमें। अच्छा। छुट्टी चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मैं अपने घर में आराम से बैठ पाऊँ, गाना सुन पाऊँ, FM सुन पाऊँ, बस और कुछ काम नहीं करना चाहूँगी उस दिन।
2: आओ कितना खूबसूरत लेटर है पता है ये
0: बहुत है। और मतलब ये टाइटल याद रखिएगा, हमारे एक मित्र हैं तो मतलब वो बाहर कमाने चले गए लुधियाना, तो उनकी पत्नी से हमारे संबंध ठीक ठाक थे, आए हमारे पास कहीं भैया पत्र तो हमको लिखना आता है लेकिन खाली शुरुआत का अंत का बता दो, शुरुआत में क्या लिखेंगे अंत में क्या, संबोधन तुमने कहा कि लिखिएगा प्रिय प्राणनाथ आपके चरणों की दासी, तो रटते हुए चली गई प्रिय प्राणनाथ आपके चरणों की दासी। बीच में ट्रैफिक था, अचानक कुछ शोरगुल हुआ तो वो बोल रही थी लेकिन बोलते बोलते वो आवाज़ उनकी दब गई। अब वो पत्र लिखने बैठी तो हल्का सा कन्फ्यूजन हो गया, उन्होंने पत्र लिखा प्रिय चरणदास आपके प्राणों की प्यासी। वो गड़बड़ा जाता है।
2: अरे बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया।
0: यहाँ तो हमने कहा कि संबोधन याद रखिएगा क्योंकि संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, पत्र लिखते समय संबोधन का ध्यान रखना चाहिए, क्या लगता है आपको?
2: नहीं नहीं लगता नहीं, आपने तो सीधे फील करा दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये पत्र हम कंप्लीट जरूर करेंगे, लेकिन अब चलते हैं फिलहाल परफॉर्मेंसेस की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या क्या ऑफकोर्स लेके आए हैं। और सबसे पहले रिया को हम कॉल करना चाहेंगे और जानते हैं कि रिया आज क्या क्या लाई हैं जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हैं। चलिए बताइए क्या लाई हैं आप?
1: सर एक कविता है, कर्मों का हिसाब।
2: एक कविता है जिसका टाइटल है कर्मों का
1: हिसाब।
2: हिसाब, अच्छा चलिए करिए आप अपने कर्मों का हिसाब। काम तो खैर आप करते नहीं, हिसाब क्या होगा। जी
1: एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, वह अमीर इसलिए था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी गाड़ी बंगला, मतलब बहुत ज्यादा सफल आदमी था। उसकी कंपनी भी थी।
2: अच्छा।
1: उसके पास कहने के लिए तो सब कुछ था लेकिन वह दूसरों को अपने आगे एकदम तुच्छ समझता था।
2: अच्छा।
1: वो अक्सर बेवजह ही अपनी कंपनियों के मैनेजरों को और बाकी लोगों को गुस्से में रखता था और डांटता था।
2: ओके।
1: एक दिन ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर उसने अपनी कंपनी के मैनेजर को बहुत बड़ी खरी खोटी सुनाई,
2: मतलब डांट दिया।
1: जी। बेचारा मैनेजर कंपनी के मालिक के आगे कुछ न बोल सका। लेकिन बाद में फिर उसने सारा गुस्सा अपने नीचे काम कर रहे बाकी कर्मचारियों पर निकाल दिया। कर्मचारी बिना कुछ बोले बिना गलती के डांट सुनकर मन से दुखी और गुस्से से भर गए।
2: ओके।
0: ये मतलब ये क्या था ये?
2: वैसे तो खैर कविता तो नहीं थी, है कहानी लग रही थी और वो भी अधूरी कहानी।
1: नहीं सर पूरी थी।
2: गुस्से से भर गए।
1: हाँ मतलब जितने मतलब कर्मचारी थे हैं, वो गुस्से में आ गए कि मतलब बिना वजह मुझे डांट दिया इसने।
2: तो गुस्से को फिर बाहर कैसे निकाला? हाँ। गया, ड्रेन किया गया, बाल्टी से निकाला गया, मग्गे से निकाला गया, किससे निकाला गया?
1: गुस्से आगे था ही नहीं,
2: गुस्सा भरा हुआ था ना,
1: तब गुस्सा भर के उसी पर कैद हो गया।
2: जैसे वॉशिंग मशीन में पानी भी भरा था, सर पूछ रहे थे
1: जी,
2: तो आपने बाल्टी से निकलवाया, गुस्से को कैसे निकलवाया?
1: वो उसके मन में ही रह के मतलब वो खत्म ही हो गया, एंड हो गया उसका।
2: नहीं मतलब इस कहानी का, अच्छा ये बताइए शिक्षा क्या मिलती है इससे? हम बस ये जानना चाह रहे हैं।
1: इससे यही मिलती है कि मतलब एक मतलब बड़ा आदमी था जो वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, मतलब किसी को वैल्यू नहीं देता था वो।
0: अंत तक वैल्यू नहीं दी। तो सीख क्या मिली?
1: सीख
0: कि हमको गुस्सा करना चाहिए।
1: नहीं मतलब गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए।
2: गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए।
0: कैसे करना चाहिए?
2: बड़ा आदमी कैसे हो गया अगर वो किसी को कुछ नहीं समझता था तो?
1: अब यही तो मेरे को भी नहीं समझ आया।
2: लंबा आदमी था कि मतलब पैसे से बड़ा आदमी था? कैसे बड़ा?
1: पैसे से बड़ा था लेकिन दिल से बहुत बड़ा वो था।
2: वो था
1: मतलब गरीब था, मतलब दिल में उसके पास कुछ नहीं था, दिल उसका पत्थर
2: था। उसके पास पत्थर का होगा तो फिर जिएगा कैसे? ये एक सवाल आता है।
0: पंप कैसे होगा?
2: ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा वहां से?
0: नहीं ये हमको लगता है उन्होंने फिल्म देखी है हमारी अधूरी कहानी, तो उन्होंने कहा पहले अधूरी कहानी हम सुनाएंगे फिर कहानी अगले सेगमेंट में पूरी करेंगे।
2: अच्छा तो पार्ट में ये नहीं बताया ना उन्होंने कि पार्ट में आया?
0: ये पार्ट वन है ना, इसके बाद टू बी कंटिन्यूड।
2: हाँ
0: हाँ वही
2: कर्मों का फल रिटर्न।
0: कर्मों का फल
2: 2.0।
0: हाँ 2.0 जलंधर 2.0 रोबोट 2.0 तो रिया 2.0।
2: मुझे लगता है वैसे अगर हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें उस कहानी का तो उसमें निकल के ये आ रहा है कि आपका गुस्सा किसी और को आपने ट्रांसफर किया और उसकी वजह से बाकी लोगों तक और वो गुस्सा हाँ। गया जिससे काम खराब हुआ, ऐसा मान सकते हैं राइट जी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये स्टोरी मुझे जो लोग मुकम्मल स्टोरी सुनाते हैं उससे ज्यादा बढ़िया लगी,
0: बहुत शानदार,
2: क्योंकि इसमें कई प्रश्न उठे,
0: कई प्रश्न उठे,
2: ये बड़ा बढ़िया था और ये बहुत ही ज्ञानी इंसान की पहचान होती है।
1: ये मेरी बहन की बुक में थी,
2: बहन की बुक में थी।
0: ये
2: जरा उस राइटर का नाम मुझे चाहिए।
1: सर मैंने ध्यान नहीं दिया।
2: जो गुस्से से भर के उस छोड़ देता है। उसके बाद
1: नेक्स्ट संडे बता दूंगी।
2: हां पक्का पक्का पक्का, वो हम बुक ही हटवा देंगे। खैर चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ और हमारे साथ में सृष्टि भी मौजूद हैं और देखते हैं भाई सृष्टि लेकर के आई हमारे श्रोताओं के लिए क्या है आज। सृष्टि आप जो
3: छोटी सी पोएट्री
2: किस विषय में है?
3: शिक्षा
2: पे है। ओके प्लीज सुनाइए।
3: पहली उंगली जिनकी पकड़ी जिनसे पहली शिक्षा पाई, माता पिता हैं वो मेरे, जिसने मुझे पहली राह दिखाई, पर क्या इतना ही मेरा जीवन पूर्ण हुआ? नहीं, अभी एक प्रकाश के जीवन में आना बाकी था। जब विद्यालय पे पाँव धरा तो जानने क्या छूट गया, एक खान था शिक्षा का जो बिना शिक्षक ना मिलना था। आप सभी गुरुदेव ने मुझको, हम सब बच्चों को आगे का ज्ञान दिया, माता पिता के संग जीवन कल्याण किया, अभी ये इसने बना है मुझ पर, अभी शिक्षा बहुत है पानी मुझे, मेरे गुरुदेव जी की कृपा आप सब से जुड़ी है मेरी कहानी, थैंक यू।
2: क्या बात है,
0: मतलब गुरु की महिमा का वर्णन किया गया,
2: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छे से लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चूंकि कुछ हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं लेकिन हम आएंगे वापस से इस मैसेजेस को पढ़ ले, फिर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस से आते हैं। तो फिर हमारे साथ में सविता दुबे जी भी हैं, रिया भी कुछ और लाई हैं और सृष्टि के पास भी कुछ और है। पहला जो मैसेज आया हरिओम चौबे जी का दुर्गुंडवा से, दिल संभल जाएगा तुम इधर देख ले प्यार से हमको भी एक नज़र से, ये आप कहना चाह रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं समझ नहीं पाए हम। कमल नैन जी लिखते हैं हेलो मनु जी, हेलो अदनान सर, हेलो हाय लिखते हैं, संडे के दिन सबसे पहले सब लोग तो लेट में सोकर उठते हैं, उसके बाद आराम से नहाएंगे, आराम से नाश्ता करेंगे, उसके बाद मोबाइल में चैट करेंगे, यार दोस्तों से हेलो हाय करेंगे। संडे ही एक ऐसा दिन है जिस दिन मोबाइल आराम से चलने का टाइम मिलता है, मोबाइल चलाते चलाते समय बीत जाता है, संडे का पता ही नहीं चलता और ये बातें मैं सोते हुए लिख रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं हमने अपनी तरफ से बढ़ाई थी। सो कमल नयन जी ने आवाज़ उठाई है महिलाओं के लिए, महिलाओं से ज़्यादा बढ़ कर के लिखा है, कहा है महिलाओं को हफ्ते में एक दिन नहीं दो दिन की हफ्ता मतलब दो दिन की छुट्टी चाहिए, हफ्ता वसूली नहीं, दो दिन की हफ्ते में छुट्टी देनी चाहिए। चलिए दिन भी आप बता दी कमल नयन जी, तो फिर इस बात को हम लोग आगे तक पहुंचा सकते हैं
0: और ये परंपरा है अपने घर से शुरू करें।
2: बिल्कुल एंड लिखते हैं बड़े आदमी की पहचान है, हम जानते हैं कि छोटे बड़ों की इज्जत करे वही बड़ा आदमी और दही बड़ा होता है, नहीं मतलब बड़ा आदमी होता है। ठीक है तो बात तो सही है कि भाई जो बड़े उसको हम कहते हैं जो सभी की इज्जत करता है राइट। चलिए बहुत बढ़िया बातचीत हो रही है और रंग जम गया है संडे वाला, आरजे मनु भी अब आज उबासी नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब शो बहुत बढ़िया जा रहा है। तो इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार वापस से आकर के मुलाकात करते हैं, फिलहाल आप सुनते रहिए अपना 89.6 FM क्योंकि यही है आपके
0: गोंडा शहद की धड़कन।

0: गा दीजिए ना रफी साहब।
1: जी नहीं, मैं गाता नहीं।
0: सुना दीजिए ना जानू।
1: बुरा ना माने तो आप भी गाओ।
2: जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
0: दिल को चुक गई।

0: रारा रारा भी हो रहा है,
1: रारा रारा भी हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है।
0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके अपने ओपन माइक वाले प्रोग्राम जो कि संडे को आता है, संडे स्पेशल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि अगर आपके अंदर है कोई टैलेंट गाने का, बहाना बनाने का या ना नहाने का और सीधे स्टूडियो आने का, तो भी आप आ सकते हैं और अपनी कहानियों को कह सकते हैं, जोक्स क्रैक कर सकते हैं, इवन स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड जो भी आपके अंदर टैलेंट है और जो आप रेडियो पे शोकेस कर सकते हैं, उसके लिए आप सभी का वेलकम है। और साथ ही साथ एंजॉय तो कर ही सकते हैं आकर। हाँ जी। सो भाई, इन सारी चीज़ों के बीच में अब हम चलते हैं सविता दुबे जी की तरफ, जो कि बहुत देर से सोच रही हैं कि हमारा नंबर कब आएगा।
2: मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलूँ, तो मैं बोलना चाहती हूँ दोस्ती के बारे में। दोस्ती पहले अपने आप से करना चाहिए, उसके बाद देखिएगा आपसे सबको ही दोस्ती करने लगेगा। जैसे कि आप काम से दोस्ती करते तो काम आपके पीछे भागेगा, आप काम के पीछे नहीं भागेंगे, काम आपके तरफ आएगा।
0: हम तो छूटती हुई ट्रेन के पीछे भागते ना। अच्छा
2: वो तो अलग बात हुई।
0: अच्छा,
2: अपने आप को किस तरह से खुश रखना है।

0: है अकेले में उसके बारे में सीख लीजिए, जैसे कि आप पेड़ पौधे से दोस्ती कर सकते हैं, पंछी से भी दोस्ती कर सकते हैं, नदी नाले से भी दोस्ती कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, काम से दोस्ती करिए तो आपको मन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। आप अगर पैदल कहीं पे घूम सकते तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है।
1: वाह
2: क्या बात।
1: तो इन सारी चीज़ों की दोस्ती के बारे में आपने बताया, आपकी खुद किन चीज़ों से दोस्ती है, आप अपने बारे में बताइए।
0: मुझे दोस्ती है, मुझे खुद से भी दोस्ती है, पेड़ पौधे से दोस्ती है, मेरे को कहीं आना जाना पैदल करना भी बहुत अच्छा लगता है, उनसे भी दोस्ती है, छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली से भी दोस्ती है।
1: अरे वाह।
0: इंसान से भी दोस्ती मुझे अच्छा लगता है। पर एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं अपने आप को बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, 4.5 साल अपने आप से ही दोस्ती रखी थी। तब कोई मेरा दोस्त नहीं था, कोई मेरा सहेली नहीं था। उस दोस्ती में मेरे को बहुत सारा लाभ भी हुआ, ना किसी के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ा, ना मेरा खर्चा हुआ, ना कहीं आने जाने को हुआ, उसमें भी मेरे को बहुत लाभ हुआ था। अपने आप को जानने को मिला कि मैं कैसी हूँ।
1: आपने कहा अपनी से दोस्ती, आपकी इंसानों से बताया दोस्ती है, जानवरों से, पेड़ पौधे, सबसे बढ़िया दोस्ती आपकी किससे है, सबसे टॉप क्लास?
0: सबसे दोस्ती तो मुझे अकेले में रेडियो सुनना।
1: क्या बात है।
0: रेडियो में गाने सुनने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारी मिलता है। मतलब रेडियो अगर अकेले अपने आप को, रेडियो के साथ अगर मेरे को कोई बोल दे कि रेडियो के साथ ही रह जाओ जिंदगी भर, तो मैं रह जाऊंगी।
2: क्या बात है भाई।
1: वाह, अग्नि को साक्षी मानकर हम रेडियो के साथ सातों जन्म गुजारने को तैयार है। बट सच में मतलब ये ज़रा देखने वाली बात है कि हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमने खुद से फ्रेंडशिप कितनी की है।
2: जी।
1: हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारी फलानी फ्रेंड है, हमारा फलाना फ्रेंड है, बट हमें अपने ही बारे में नहीं पता होता। कोई हमसे अचानक पूछ लेता है कि तुम्हें पसंद क्या है, तो एक बार को हम सोचते हैं हाँ मुझे पसंद क्या है, तुम्हें बुरा किन बातों से लगता है, हाँ हमें बुरा किन बातों से लगता है, मतलब शायद अपने बारे में इतना भी नहीं पता होता है।
2: सही बात है।
1: एंड आपने जो दोस्ती बताई है भाई, उसमें तो प्रकृति की सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो और पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, बहुत बढ़िया है। दोस्ती से फ़ायदा क्या होता है, क्या दोस्ती करना ज़रूरी होता है, ये मेरा आपसे सवाल है।
0: हाँ, दोस्ती करना भी ज़रूरी है ताकि आप अपना मन की बात दोस्तों को बोल सकते हैं। दोस्त भी आपको अगर अच्छा दोस्त हो तो सब बात समझेगा। अगर सामने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए,
1: सामने वाला
0: आपके ऊपर भरोसा कर पाए, आप भी उन पर भरोसा कर पाए, तभी वही दोस्त आगे तक चलेगा।
1: अच्छा, ये कहते हैं कि दोस्ती में जो है भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: जी
1: ठीक है, भरोसा जीता कैसे जाता है?
0: भरोसा जीता जाता है ऐसे कि जैसे कि मैं कुछ अपने बारे में कुछ बताई हूँ, उस बात को किसी और को ना बताए।
2: क्या बात।
1: बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या आपने बताई है। सही कहा है कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी बात कहीं और ना जाए।
0: जी, जी।
1: आप बहुत विश्वास के साथ कोई बात बताते हैं। करेक्ट।
2: जो बात घर में हुई थी वो बाजार में है, कोई तो सुराख यकीनन मेरी दीवार में है।
1: हमें पहले ही शक था आपके ऊपर।
2: ऐसा होता है लाइफ में कि हम किसी को बोलते हैं, हमको लगता है जो दोस्ती होती है खुद से वो ऐसे करनी चाहिए, खुद से हम जो बोले तो अच्छा बोले कि ये अच्छा ही हो रहा है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मतलब जो कुछ भी है वो अच्छा बोले। आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो स्वयं के सबसे अच्छे मित्र हैं, उनकी स्वयं से अपनी बात अच्छी होती है, और कुछ इंसान स्वयं के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो अपने से भी बोलते हैं तो खरा भी बोलते हैं। मतलब आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, मुझको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: करेक्ट।
2: मतलब इस दुनिया में अगर आप सकारात्मक चीज़ों को स्वयं से बोल रहे हैं तो फिर लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और अगर आप अपने ही स्वयं से नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। हाँ, मतलब अगर खाना नहीं मिला तो बशीर बद्र की एक शेर है उनका कि जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद ना आज तेरे आने का शुक्रिया। मतलब आज नींद नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम कर लिए, तो ज़िंदगी जो दे उसे खुशी से मुस्कुराते हुए अगर इंसान ले ले तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो दोस्ती की बात आपने की है, अगर दोस्ती के नाम कोई शब्द बोलना हो या गाना गाना हो, दो लाइन डेडिकेट करना हो, तो आप कौन सा गाना या कौन सी लाइन बोलना चाहेंगे?
0: यही गाना चाहती हूँ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। आप ही गा दीजिए मुझे।
1: चलिए एक साथ गा लेते हैं।
0: ठीक है।

0: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही बात है। और ये चाहे साथ हमें अपना खुद का क्यों ना हो, पर हम खुद के साथ में नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत प्यारी बात कही आपने,
1: बहुत प्यारी बात कही।
0: और साथ ही साथ चूंकि हमारे साथ ये दोनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं बड़े ही चुलबुल हैं,
1: और चुलबुल तो है इतना से, लेकिन आपने एक चीज महसूस कमी
0: जी,
1: हर बार संडे को कोई ना कोई गीत होता था, कोई ना कोई गाता था, इस बार थोड़ा सा ये ब्लैंक ज्यादा है, क्यों ना इसकी पूर्ति आपसे कर लीजिए।
0: चलिए कर लेते हैं, लेकिन पहले इससे पहले हम इनको इनवाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पूर्ति भी करेंगे और फिर पूर्ति करते करते पूरे हो लेंगे
1: जी।
0: सो क्या लेकर आई हैं भाई सृष्टि, चलिए आप बताइए। आपने जाने से पहले सुनाया था कुछ लाइंस जो कि काफ़ी अच्छी थी, अब देखते हैं कि इस बार आप क्या लेकर के आई हैं और क्या हम तक पहुंचाने वाली हैं। क्या है इस बार?
2: शायरी।
0: शायरी है, ओके। प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं तक अपनी शायरी पहुंचाइए।
2: एक रात को एक बात लिखूंगी, खुद को दम और तुझे साफ लिखूंगी, हकीकत में तो कभी तो मिलेगी नहीं, पर ख्वाबों में हर रात मुलाकात लिखूंगी, जो कह ना सके कभी वो अल्फाज लिखूंगी, खामोशियों में छुपे हर जज्बात लिखूंगी।
0: वाह क्या बात,
1: खामोशियों में क्या बात,
0: ये खामोशियों की बात आ गई है संडे में। मुझे लगता है रिया साथ में होती होगी तो खामोश ना आप होते हैं ना रिया होते हैं, है ना? अच्छा, रिया के बिना वाली बात है ये।
1: रिया के इस दुनिया का आठवां आश्चर्य यही है, दो लड़कियां बैठी हैं और दोनों चुप हैं।
0: नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं आप, तो मर्दों में भी यही बात देखने को मिलती है। अब अपना ही एग्जांपल देख लीजिए, सबसे ज्यादा अभी तक आप ही बोले हैं, शो की शुरुआत ही आप करते हैं, वेलकम वेलकम कर गए।
1: नहीं नहीं मतलब वो बात नहीं, हम तो श्रोताओं से बातचीत कर रहे हैं।
0: अरे आप डर क्यों गए, लेकिन बात सही है। ऑलराइट, तो चलिए भाई रिया की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि रिया क्या लेकर आई हैं जो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने वाली। क्या है इस बार?
2: सर भोले बाबा के ऊपर।
0: भोले बाबा के ऊपर
2: जी।
0: ओके चलिए सुनाइए क्या लाइंस है।
1: भोले बाबा के ऊपर की भोले बाबा पर?
2: भोले बाबा पर।
1: हमने कहा ऊपर।
0: अर्पण
1: भाई सो
0: जी प्लीज।
2: गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख। गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख, मैं तेरे अलावा कहीं किसी का मोहताज ना बनूं, बस इतना मेरा नसीब रख।
1: क्या बात,
0: वाह क्या बात है।
1: पंक्ति याद आ गई मुझको कि जो मांगते हैं मदद सभी से, जलील होते हैं वो जहां में, नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले।
0: क्या बात है,
1: शुभिना दीप की ये प्यारी सी पंक्ति, उस पंक्ति के साथ मैच बहुत अच्छा हुआ भाई। क्या बात,
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: मांगो उसी से जो दे दे, जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से, इसीलिए हमने आपसे कुछ मांगा नहीं
2: बल्कि मैंने आपको खुद ही सुना दिया।
1: हाँ मतलब होता नहीं कि मांग लो तो फिर लोग कहते थे उन्हें 100 रुपया अध्ययन के लगे नहीं रहा।
2: हाँ।
0: और रिया तो वैसे भी चौक बाजार जाती है।
2: सारी सर, मार्केट आज बहुत महंगी मांग हो जाती है। अभी 20 रुपए।
0: अरे कोई बात नहीं
2: सर, क्या बताएं, गए तो थे
0: ना बताया रहने। खैर चलिए
1: जी हाँ, तो चलते हैं भाई अपने प्यारे से अदनान सर की तरफ, उनकी प्यारी सी आवाज में देखते हैं कोई रोमांटिक सा ही गाना होगा, क्योंकि आप दर्द की दुनिया में भी उतरे ही नहीं है।
0: सारा दर्द तो आपने दुनिया भर को दे दिया है।
1: क्या बताएं, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है
0: और हम जिगर गंज में हैं।
1: जिगर गंज में।
0: चलिए तो अब आपने कहा है तो एक सॉन्ग आपके कहने पे मैं सुना देता हूँ। हाँ रोमांटिक है, अलका याग्निक जी की आवाज़ है, कुमार सानू साहब है और बरसात मूवी का ये सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर, ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर, कैसी दूरियाँ कैसा फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा, अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जाने सार है, तुम पे दिल क्या जाने सार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। जागते रहे हम तो रात भर, एक लम्हा एक पल भी सोई ना नजर। जागते रहे हम तो रात भर, एक लम्हा एक पल भी सोई ना नजर। तुम निगाहों में तुम ख्याल में, हाल है बुरा हमारा ऐसे हाल में। यूं तो हम पे ना करो सितम, हमको तुम पे ऐतबार है, हमको तुम पे ऐतबार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, तालियों के साथ। क्या बात है भाई, महफिल को आपने पूरा कर दिया, इसके लिए हम आपके मशकूर व मगनून हैं, शुक्रगुजार हैं। नहीं तो ये महफिल बिना गीत के चली जाती।
0: कोई बात नहीं, ऐसी कोई महफिल नहीं जाने दिया जाएगा जो बिना गीत के जाए। हाँ। और ऐसी कोई रीत नहीं चलने दिया जाएगा जो आरजे मनु के बिना बीत जाए।
1: क्या बात है।
0: और ऐसी कोई फीस नहीं दिया जाएगा जिसे आरजे मनु पढ़ाए। और राइट जोक्स अपार्ट, लेकिन आज का शो मुझे लगता है काफी अच्छा,
1: बहुत अच्छा था।
0: बहुत सारी बातें हुई सृष्टि ने, रिया ने, आप लोगों ने पढ़ा, और अपनी बात बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा हमारी सविता दुबे जी ने। एक महज शो हो सकता है, लेकिन किसी के लिए जिंदगी में उसको आगे बढ़ाने का ये काम हो सकता है, किसी की दिनचर्या का एक बहुत ख़ास हिस्सा हो सकता है, और किसी के लिए जिसके दोस्त नहीं है, ये रेडियो, ये शो, ये बातचीत उसका एक ज़रिया हो सकता है। तो किसकी इम्पोर्टेंस कहाँ तक है इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता है किसी को भी। सो मुझे उम्मीद है कि ये शो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आरजे मनु, आपने कितना एंजॉय किया?
1: बहुत ज़्यादा, मतलब वाटर पार्क से ज़्यादा।
0: वाटर पार्क से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप लोगों का भी शुक्रिया जो इस वक्त सुन रहे थे। संतोष कुमार जी ने नमस्ते लिखा है, नमस्ते आपको भी। और जो लोग फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुन रहे थे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले संडे हम वापस से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपना रेडियो
1: स्टेशन रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो नमस्कार आदाब गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। भाई घड़ी में वक्त हो चला है 2:04 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM आपके अपने कोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। आपकी आरजी मौजूद है आप सभी के साथ लेकर के सनी का आफ्टरनून वाला स्पेशल शो इन द टॉप 20, जिसमें बात होती है बॉलीवुड की, गॉसिप्स होती है बॉलीवुड के, गाने होते हैं बॉलीवुड के और हम करते हैं बहुत सारी चिटचैट। आप देते हैं जवाब चैट बॉक्स में और हम बोलते हैं यहां से बैठकर भाई, क्योंकि हमारे पास होती है सवाल और आपके पास होते हैं जवाब, और जब सवाल जवाब साथ में मिलते हैं तो आता है बहुत ज्यादा मजा आता है ना, आता है मुझे पता आता है। फिलहाल हम आपको बता दें भाई, आज हमारे लिसनर्स के डिमांड में आया था कि क्यों ना इमरान हाशमी के गाने लेकर आया जाए, और हम अपने लिसनर्स के डिमांड को मद्देनजर ना रखें ये कभी हो नहीं सकता, इसीलिए हम आ चुके हैं, यानी कि मैं आ चुकी हूँ स्पेशली। अब ये उत्तर प्रदेश वाली जो आदत है ना, आज हर चीज़ में हम लगा देते हैं हम, ये मेरी जा नहीं रही है। तो भैया जब भी मैं हम बोलूँ और यूपी वाले समझ चुके हों कि हम का मतलब सिर्फ मैं हूँ तो समझ जाइएगा, और जो नहीं समझे हैं वो बता दें स्टूडियो में मैं इस वक्त अकेले, और ऑफकोर्स हम मीन्स हम ही है, मतलब मैं ही हो रहा हूँ, और हम लेकर आए हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी डिमांड पर इमरान हाशमी के वो टॉप 20 सॉन्ग्स जिनको सुनने के बाद आप भी करेंगे झलक दिखला जा। हालांकि पहला गाना ये नहीं होने वाला है, पहला गाना जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो है उस फिल्म का जिसको देखने से आपकी रूहें कांप उठती हैं। मम्मी पापा के सामने नहीं देखते हैं आप, क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने देखा तो भाई घर में कांड हो जाने हैं, और आप उस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके गाने सबको ज़्यादा पसंद है, इतने पसंद है कि हर कोई इन गानों पे वाइब करता रहता है। गानों में आवाज़ जो है वो है भैया हमारे हिमेश रेशमिया साहब की, और हिमेश रेशमिया ने जब भी कोई गाना गाया है वो भी उस ज़माने में गाया है, उस ज़माने के उनके सारे गाने हिट हो चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ गानों को तो उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो भूतों को मैनिफेस्ट कर सके, और इसलिए उनके गाने बैन भी हो चुके हैं। हालांकि लोग कई बार कहते हैं कि भाई हिमेश पाजी के गानों में 4-5 बार सेम वर्ड रिपीट होते हैं, लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि इमरान हाशमी के और हिमेश रेशमिया की जो जोड़ी थी वो सुपर डुपर हिट थी। बॉस हिमेश रेशमिया हो, इमरान हाशमी हो, के हो, प्लस प्रीतम का म्यूजिक हो, ओहो हो, गाना मतलब फर्स्ट क्लास। फिलहाल हम आपके लिए जो गाना लेकर आए हैं वो है हिमेश रेशमिया की आवाज़ में इमरान हाशमी पे फिल्माया गया उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपकी कशिश। तो सॉन्ग नंबर 20 आप एंजॉय कीजिए, हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली बीट पर, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए इंडिया टॉप 20, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये किस फिल्म का गाना है, क्योंकि मुझे पता है दिल तो आपका भी दहलता होगा जब ये इस फिल्म को या इस फिल्म के गानों को आप तब देखते हैं जब आपके घर वाले आपके आसपास होते हैं। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: हो आपका नशा यू मत होश है और आप सुन रहे हैं आपकी कशिश। आशिक बनाया अपने फिल्म से इमरान हाशमी, तनुश्री दत्ता और सोनू सूद पे फिल्माया गया गाना हिमेश रेशमिया की आवाज में। और हम आपको बता दें म्यूजिक डायरेक्टर इसमें कोई और नहीं, हिमेश रेशमिया ही है। बोल है समीर साहब के, संगीत है हिमेश रेशमिया का, आवाज है हिमेश रेशमिया की, फिल्माया गया है इमरान हाशमी पर। और एक खूबसूरत से गाने को एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा डिस्को डांस करने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ आपके अपने वाले शो में। भाई आपका एक बार वापस से स्वागत करते हैं इंटर टॉप 20 में, आपके आफ्टरनून वाला शो जिसमें बहुत ही बॉलीवुड की बातें, बॉलीवुड की गॉसिप्स, बॉलीवुड के बहुत सारे गाने, बहुत सारे मतलब 20 गाने अपनी आरजू नदी के साथ आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज प्लेलिस्ट है हमारे लिसनर्स की डिमांड पर इमरान हाशमी, और इमरान हाशमी के गाने भाई बहुत ज़बरदस्त हैं। और उनसे भी बड़ी बात यह है कि इमरान हाशमी पूरे गाने में कहीं भी डांस स्टेप करते दिखाई नहीं पड़ते, पॉकेट में हाथ डालकर इधर उधर स्टैंड कर जाते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पोज दे देते हैं, चेहरा घुमा लेते हैं, पॉकेट में हाथ डाल के थोड़ा सा वॉक वॉक वॉक कर लेते हैं और गाना हिट हो जाता है बॉस। और ये जादू है इमरान हाशमी का। उनके बहुत सारे गाने हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स, हाई बीट सॉन्ग्स, रोड पर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो वाले गाने, किसी को अपने जज्बात बयां कर रहे हो तो वो वाले गाने, मतलब हर एक अदा है उनके पास। और आप उनके गानों को उठा करके किसी को भी सुना सकते हैं, बता सकते हैं, जता सकते हैं, दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई इस एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने सॉन्ग नंबर 19 की तरफ, और हम सुनाएंगे मडो फिल्म से आपका पसंदीदा सॉन्ग जिसमें थोड़ा सा अरेबिक टच है। और जब भी हम अरेबिक टच सुनते हैं ना तो बॉलीवुड का हिंदी और अरब से थोड़ा सा अरेबिक जब मिलता है, ओए होए होए, गाने सुपर डुपर हिट जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन 2000 के वक्त में ना बॉलीवुड को एक नया शौक था। शौक ये था कि भाई वो हमेशा या तो इंग्लिश के, या तो अरेबिक, या तो पंजाबी, मतलब कोई ना कोई ऐसी भाषा ज़रूर उठा के एक हिंदी टच में डाल देते जो पूरे गाने को तड़का लगा देता था। और वो तड़के की उम्मीद मुझे आज भी है, मैं आज भी सोचती हूँ कि वही वाला जो हम गाना सुना करते थे, चाहे वो ऊँचा लंबा कद हो, चाहे कहो ना कहो हो, चाहे कोई भी गाना हो जिसमें हमारा पंजाबी भी आ रहा है, अरेबिक भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, और वो तड़के की तरह जो वो काम कर रहे हैं ना म्यूज़िक पर, आए वैसे एक बार वापस से शुरू हो जाए और हम वापस से वैसे ही गाना एंजॉय कर पाए। हालांकि अभी भी गाने बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, वो अलग बात है कि जो 2000 के बच्चे हैं, यानी कि जिनका जन्म 2000 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है, वो उस एरा को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा और एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 19 मदो फिल्म से कहो ना कहो। आवाज़ किसकी है ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, प्लस अपनी अटेंडेंस ज़रूर से लगाएंगे। हम मुलाकात करेंगे आपसे इस गाने के उस पर, यानी कि इस अगले बीट पर। तब तक के लिए सुनते रहिए इंटर टॉप 20 अपनी आरजूती के साथ, आपके अपने आप में रेडियो 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: ख्वाबों में तुझको सवारा है, जज्बों में तुझको उतारा है। और ये गाना आप सुन रहे थे कहो ना कहो, सिंगर का नाम है यानी कि जो आवाज़ है वो है अमीर जमाल जी की, और संगीतकार है अनु मलिक साहब। सैयद कादरी की खूबसूरत बोल है और एल्बम का नाम है मरर। आपको पता होगा 2004 में रिलीज हुआ है और इस गाने को आज भी लोग उसी तरह से वाइब ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जिस तरह से अभी आपने किया है। ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है, स्पेशली इसके लिरिक्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि आजकल जहां लोग उसकी इनकी उनकी कर रहे हैं वहीं पर बड़ी तमीज़ और बड़ी शिद्दत के साथ लिखा गया है कि बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। हालांकि इस लाइन को हमने हमेशा गलत गाया और हम हमसे कहते ही रहते हैं कि मैं वो सिंगर हूं जो हमेशा गानों को गलत गाती हूं। हालांकि ये बात अभी भी चल रही है और धीरे धीरे हम खुद को सुधार रहे हैं, सुधारने की कोशिश चल रही है। लेकिन वो है ना, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो यही है कि इंसान कोशिश कर रहा है, ये कोशिश करता हुआ इंसान सबसे खूबसूरत है। और इस बात को हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, इसलिए आज भी हम गाने अपने सुधार रहे हैं। लेकिन भाई जैसे ही इस गाने को हम सुनते हैं एक अलग ही दुनिया पे पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है आसमान में आज मैं ही हूं। और वो जो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, हाँ बिल्कुल मेरे साथ वही होता है, आपके साथ भी होता होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया गया, स्पेशली जब वो अरेबिक लाइन्स बीच में डाली जाती है, ओए ओए ओए मज़ा आ जाता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं सेंटर टॉप 20 अपनी आरजीनती के साथ 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी पर, रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और धड़कन की धड़कन आज हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि भैया इमरान हाशमी को आज हम जा रहे हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे बॉलीवुड की न्यूज़ की तरफ, जिसकी इंतज़ार आपको पूरे हफ्ते रहता है और आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, आपकी आने वाली फिल्मों का क्या हाल है, कौन सी नई फिल्म के चर्चे हो रहे हैं, किस फिल्म में कौन सा नया कास्ट है, कौन सी फ्लॉप है, कौन से हिट है, किसका कितना बजट है, हम आपको बताते हैं लेकिन इस गाने के उस पर। तो सुनते रहिए सॉन्ग नंबर 18, और सॉन्ग नंबर 18 है इमरान हाशमी पर ही फिल्माया गया गाना, क्योंकि आज प्लेलिस्ट उनकी है। तो गाने का नाम है हाँ तू है, हाँ हाँ आप ही हैं, हम आप ही के लिए प्ले कर रहे हैं, डेडिकेटेड टू यू ऑल लिसनर्स। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गीत पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 18।

0: हाँ जी, इरादों में तू है, हाँ तू है, हाँ तू है। आप सुन रहे हैं इमरान हाशमी का गाना, और जैसा कि आपसे मैंने किया है वादा, हम आपको लेके चलेंगे बॉलीवुड की तरफ। और सुनने में आ रहा है भाई, सलमान खान अपनी एक्शन वैक्शन वाली फिल्म में वापस आ चुके हैं। भाई ये तो आपको भी पता होगा, सलमान खान को हमने प्रेम के अंदाज में कई बार देखा है, और उनके वो शर्मीले अंदाज को हम आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका वो जो क्यूट सा, प्यारा सा, भोला सा प्रेम का कैरेक्टर था ना, उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भाई। अब शाहरुख खान का नाम है राहुल और सलमान खान का नाम है प्रेम। जब इन दोनों का नाम मुझे नहीं पता था ना, तो मैं इन दोनों को इनके इन्हीं नामों से जानती थी, क्योंकि हर फिल्म के अंदर इन लोगों के नाम यही हुआ करते थे। अब आपको पता है कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके नाम उनकी फिल्मों में सेम टू सेम रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, SRK का राहुल, आपने उनकी कई फिल्में देखी होंगी और उनकी हर फिल्म में उनका नाम होता है राहुल, और हम राहुल राहुल करते रहते हैं। राहुल नाम तो सुना ही होगा। आज भी ये डायलॉग हम कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट मार ही देते हैं जब भी किसी को हम अपना नाम बताने जाते हैं, और वो पलट के कहते हैं नहीं नहीं सुना है, तो एक अलग लेवल की बेइज्जती महसूस हो जाती है। वहीं पर हमें जब प्रेम का किरदार देखने को मिलता था तो आता था बड़ा मज़ा कि एक शांत स्वभाव का इंसान, शर्मीला सा बंदा, और जब ये दोनों कैरेक्टर आपस में मिल जाते थे तब बनता था मेरे करण अर्जुन आएंगे, और ये डायलॉग हम आज भी छापते हैं। इतना फेमस डायलॉग है कि अगर किसी को बुलाना होता है, कुछ करना होता है, तो भैया या तो अब हम बोलते हैं अपना टाइम आएगा, या फिर हम बोलते हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो भैया आप बताइए कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनके डायलॉग्स और उनके नाम आपको अभी भी रटे हुए हैं और आप अभी भी कहीं ना कहीं उनको चिपका ही देते हैं। तब तक के लिए हम बता दें कि सलमान खान की जो एक्शन वैक्शन वाली फिल्म है उसका क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर रिपोर्ट की माने तो सिर्फ सलमान खान नहीं नहीं उनके साथ एक और फीमेल एक्ट्रेस ज्वाइन करने वाली हैं उनकी फिल्म को, और वो कोई और नहीं, वो होने वाली है नयनतारा। नयनतारा का नाम आपने अक्सर सुना होगा, जवान फिल्म में भी आपने उनको देखा होगा। नयनतारा का अंदाज बड़ा अलग होता है, उनकी जो वो एटीट्यूड वाली जो आंखें होती हैं ना, उसको देखने के बाद अच्छे अच्छों का दिल पिघल जाता है, और लोग कहते हैं भैया ऐसी एक्ट्रेस तो होनी ही चाहिए। साउथ की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, और जो इस वक्त सलमान खान की आने वाली फिल्म में उनके साथ काम करने वाली हैं। अब एक एक्शन फिल्म होने वाली है, यानी कि लड़ाई, दंगे, फसाद, ये सब आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तोड़ फोड़ अगर आपको पसंद है, कि टेबल के टूटने की आवाज़ आ रही है, डिशुम डिशुम हो रहा है, तो जी आपको ये फिल्म पसंद आने वाली है सलमान खान और नयनतारा के साथ। तो तैयार रहिएगा एक एक्शन पैक्ड रोल देखने के लिए, एक एक्शन पैक्ड फिल्म को देखने के लिए बड़े पर्दे पर। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि काश काश वो जो हम बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो फिल्में बना करती थी, जिसमें हमारे भूत अंकल आते थे, जिसमें गणेशा आते थे, लिटिल कृष्णा आते थे, काश वैसी ही फिल्म वापस से आ जाए। पहले हमको बता दें, हिंदुस्तान ने अपनी एक एनिमेटेड फिल्म को रिलीज़ किया है और उस एनिमेटेड फिल्म के चर्चे बड़े ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखी होगी तभी आपको ये बात पता होगा। वैसे तो लोग हमेशा ट्रॉल करते रहते हैं कि इंडिया का एनिमेशन अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार जब ये एनिमेशन आया है और लोगों ने इसको देखा है, तो जो लोग ये कहते थे कि कार्टून देखने कौन जाएगा, वो भी इंडिया का कार्टून कौन देखेगा, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, और वो बैठ कर आराम से उस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। एनिमेशन बहुत खूबसूरत है, VFX बहुत खूबसूरत है, और बच्चों के लिए स्पेशली है। बच्चों के साथ साथ इसको बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। नाम क्या है बताएंगे, लेकिन इस गाने के उस पार और चैट बॉक्स में दर्शन कर लें। तो भाई चैट बॉक्स में जॉन हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। उस्मान खान हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, अच्छी जानकारी मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं द टॉप 20 में, और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि सॉन्ग नंबर 17 आपका इंतजार कर रहा है। KK की आवाज़ में आप एंजॉय कीजिए, सोनिए, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.

0: हां जी, तो आप सुन रहे हैं द टॉप 20 की प्लेलिस्ट का सॉन्ग नंबर 16, अफसाना बना के भूल न जाना। और ये गाना था भाई हिमेश रेशमिया तुलसी कुमार की आवाज़ में, बोल थे संग जो बोल थे वो थे समीर साहब की और संगीत था हिमेश रेशमिया का। दिल दे दिया है फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया है। भाई इस गाने को सुनने के बाद कुछ ना कुछ आपने भी महसूस किया होगा, फील किया होगा, वाइब किया होगा, डांस किया होगा। और इसी डांसिंग मूड के साथ आइए चलते हैं आगे, और आगे की बहुत सारे गाने जो आपका इंतजार करें। फिलहाल सॉन्ग नंबर 15 आपका पसंदीदा, स्पेशली मेरा काफ़ी पसंदीदा है, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद सच में ना पैर रुकते हैं, ना हाथ रुकते हैं, और ना मेरी जबान रुकती है, तीनों एक साथ चलते हैं। और गाने का नाम है जुदाई। तो भैया इस गाने को आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ इन द टॉप 20 में, और इस गाने की रेटिंग ज़रूर से बताइएगा कि ये गाना आपको कितना पसंद आया। हम मिलते हैं अगली बीट पर, अगले गाने पर, अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 15।

0: हां जी, तो आप सुन रहे थे इतना जबरदस्त गाना जिसको सुनने के बाद आता है बहुत ज्यादा मजा। और हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 15 जुदाई फ्रॉम जन्नत। आवाज थी कमरान अहमद की, प्रीतम का म्यूजिक, और प्रीतम के म्यूजिक ने भैया तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। आपको ये बात तो पता ही होगी, हालांकि इन पर नाम जरूर लगाया गया था कि दूसरों का म्यूजिक चोरी करते हैं, लेकिन प्रीतम भाई साहब मानेंगे कैसे? वो तो कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, मैं आपको जवाब तो दूंगा लेकिन सिर्फ अपने म्यूजिक से। भाई उनके ऊपर चाहे कितनी ही बातें क्यों ना लगी, कितना इल्जाम क्यों ना लगे हों, म्यूजिक चोरी करने का भी इल्जाम लगा है, स्ट्रगल्स हुए हैं, और इसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इसीलिए कहते हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करते हैं वो कभी भी स्ट्रगल से नहीं डरते हैं, और जो स्ट्रगल से डरते हैं उनका नाम कभी इतिहास के पन्नों में नजर नहीं आता। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही पर लिखा जरूर हो, तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई साहब। और स्ट्रगल कहते हैं उन्हें मिलता है जो सबसे बढ़िया सिपाही होते हैं, यानी कि जो सबसे खतरनाक वॉरियर होते हैं। तो भाई अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं ना, तो खुद को तसल्ली दीजिए और बताइए कि आप गॉड्स फेवरेट हैं, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, और इसीलिए आपको चुना गया है इन सारी मुसीबतों को झेलने के लिए। हालांकि आपने कहीं साइन वगैरह किया नहीं है, मुझे पता है कि आप कहोगे मैंने तो कहीं सिग्नेचर ही नहीं किया था, ये आउट ऑफ सिलेबस मेरे पास ही क्यों आ जाती हैं चीज़ें। कोई बात नहीं, असर के पास आती हैं। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें आपने इस गाने को इन्जॉय किया, और इस गाने को इन्जॉय करने के बाद हम आपको लेके चलेंगे अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की न्यूज़ दे दी जाए या फिर आपसे करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, फिलहाल हम आपको बता दें आजकल कुछ कहानियां बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और वो हो रही हैं एक ऐसी फिल्म की र्यूमर को लेकर के, यानी कि अफवाहें बहुत तेज़ी से उड़ रही हैं। और अफवाहें ये हैं कि भैया किसी की लव स्टोरी आ रही है और वो लव स्टोरी में आपको लेस्बियंस देखने को मिल सकते हैं। बट मेकर्स ने यह साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ लव ट्राइंगल दिखाने वाले हैं। ना ना ना, हम लड़की लड़की का प्यार नहीं दिखाने वाले, हम दिखाने वाले हैं लड़की लड़का लड़की का प्यार, यानी कि लव ट्राइंगल, और लव ट्राइंगल में ही आपको घुमा कर रखा जाएगा। और अफवाहें लोगों ने ऐसी उड़ाई थी उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया उन्होंने। अब आप बताइए किस फिल्म की बात हो रही है, किस फिल्म को लेकर की अफवाहें उड़ाई जा रही होंगी, कोई आइडिया है आपको? अगर नहीं है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गाने के उस पार। तो सॉन्ग नंबर 14 की तरफ चलते हैं और एंजॉय करते हैं ओ सनम ओ सनम ओ सनम, नहीं वाला ओ सनम नहीं, फिलहाल आप सुन के देखिए ये कौन से वाला सनम है, अपने किस सनम को आवाज दे रहे हैं, और आवाज आफ्टर ऑल इस गाने में है किसकी, गैस जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले गाने पर, अगली बीच पर, तब तक के लिए सुनते रहिए टॉप 20 आपकी अपनी आरजे आरजे होती के साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपने आप एम रेडियो Ganas 89.6 FM पर स्टूडेंट।
1: रेडियो Ganas 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे थे मीडिया वार की, और इसके बाद हमने आपसे जो कहा था कि भाई फिल्म का नाम गेस कीजिएगा, और आई थिंक आप नहीं कर पाए, तो आइए हम ही बता देते हैं वो फिल्म कौन सी है जिसको लेकर के अफवाहें उड़ रही हैं भाई कि उसमें लेस्बियंस का रोल दिखाने जा रहा है। होमेकर्स ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिल्म है कॉकटेल 2। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी। और जिस फिल्म की एनिमेशन की बात की जा रही है, जिसने अभी इंडिया में हड़कंप मचा रखा है, जो लोग कहते हैं कि इंडियंस की एनिमेशन अच्छी नहीं होती है, अभी एफेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, विजुअल्स अच्छे नहीं होते हैं, उनके लिए, उन ट्रोलर्स के लिए एक बहुत ही गज़ब की फिल्म हाल फिलहाल में रिलीज़ किया गया, उसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया। बड़े बड़े लोगों ने भी उसको देखा और इसे पसंद किया, और लोगों ने उसको कंपेयर किया पिक्सर फिल्म को, फिल्म के साथ। पिक्सर एनिमेशन अगर आपने कभी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्में बहुत गज़ब की होती है। और उस फिल्म का नाम है रिटर्न ऑफ द जंगल। जी हाँ, ऑफिशियल टीजर रिलीज़ कर दिया गया है मई 29 को, यानी कि एक ऑलमोस्ट एक महीना होने जा रहा है, बहुत जल्द एक महीना हो जाएगा। और उससे पहले इसको रिलीज़ किया गया था, लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। 29 मई को ये आपको नियर बाय थिएटर्स में देखने को भी मिल गई है। 29 मई लोग सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, लोग खुद भी देखने गए हैं, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ फैमिली या फिर छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े लोग भी इस फिल्म को उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई इंडिया की अपनी एनिमेटेड फिल्म जो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा कामयाब होती जा रही है, फिर चाहे वो महाअवतार नरसिम्हा हो, नरसिम्हा, या फिर अब हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई, 29 मई को रिलीज़ हुई द रिटर्न ऑफ द जंगल हो, ये दोनों फिल्में इस बात का दावा करती हैं कि इंडियन एनिमेशन ख़राब नहीं होती। साथ ही साथ इंडिया का यूथ, थोड़ा बॉलीवुड से हटकर बात कर लें अगर हम, तो बॉलीवुड का जो यूथ है, जिसे आजकल जैपनीज एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो अब अपना एनिमेशन भी तैयार कर रहे हैं। जी, हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं कि भारत अब अपना एनिमेशन तैयार कर रहा है। जिस तरह से आपने जैपनीज एनिमेशन देखे होंगे, वन पीस, नरूटो, ब्लैक क्लोवर, न जाने इतनी कितनी ही सारी फिल्में, कितने सारे एनिमेशंस, कितनी सारी सीरीज़ आपने देखी होंगी, और इसके पोस्टर्स आपको अलग अलग जगह पर इंडिया में देखने को भी मिले होंगे। वन पीस जो आजकल आपको किटकैट के पैकेट पे देखने को मिल रहा है, नरूतो जहाँ आपके अलग अलग पोस्टर्स में नज़र आ रहा है, वैसे ही सेम टू सेम एनिमेशन अब भारत भी दे रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहाँ जापान में इसको करोड़ों खर्च करके बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़े प्रोडक्शन टीम के साथ बन रहा है, वहीं पर अब इंडिया में जो ये फिल्में बन रही हैं, जो ये सीरीज़ तैयार हो रही है, इसे छोटे छोटे क्रिएटर्स बना रहे हैं, और वो इस बात को साबित करके दिखा रहे हैं कि इंडिया एनिमेशन में पीछे नहीं है। अभी तक इंडिया के एनिमेशन को लोग मोटू पतलू छोटा भीम से ही जानते थे, समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इससे बड़े बड़े एनिमेशन से भी जानना शुरू कर रहे हैं। तो भैया, खुश होने वाली बात है आपके लिए, आपको खुश होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब अपने एनिमेशंस की दुनिया में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। छोटे छोटे क्रिएटर्स से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक अपनी एनिमेशन को सुधार रहे हैं, बच्चों के लिए फिल्में बना रहे हैं, और बच्चों के साथ उन्हें बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं। प्लस जो एडल्ट फिल्में हैं लाइक कॉकटेल 2, कॉकटेल एक्शन वैक्शन, ये सारी फिल्में आपको देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 12, मुझे तुमसे मोहब्बत है, शान की आवाज़ में। शान के साथ एक फीमेल सिंगर और है, उनकी आवाज़ आप गेस कीजिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।

0: रेहान शान की आवाज में आप सुन रहे हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक तुमसा नहीं देखा, लव स्टोरी फिल्म नदीम श्रवण का म्यूजिक है और बोल हैं समीर साहब के। इमरान हाशमी और दिया पर फिल्माया गया खूबसूरत सा गाना आप एंजॉय कर रहे थे और अब वक्त है हमारे अगले गाने की तरफ चलने का, यानी कि हमारे सॉन्ग नंबर 11 की तरफ चलने का। और यहाँ से शुरू करेंगे हम अपने रोमांटिक सॉन्ग्स का सिलसिला। अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे पार्टी म्यूजिक प्लस रोमांटिक सॉन्ग्स, लेकिन अब यहाँ से हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ बेहद ही रोमांटिक गाने, क्योंकि भाई इमरान हाशमी ने हमें बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स दिए हैं और उनके रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो इसलिए हमने दिया है पूरा 10 का सोर्स। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 11 हाल दिल को सुना था दिल लगर ये बोल पाता। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 11।

0: हाल दिल तुझको सुनाता दिल लगर ये बोल पाता। आप सुन रहे हैं खूबसूरत से गाने को हर्ष सक्सेना की आवाज़ में। हम आपको बता दें भाई, सईद कादरी के बहुत ही खूबसूरत बोल हैं और आपने इस गाने को सुनकर आई थिंक अपने दिल को कर लिया होगा खुश। फिल्म बहुत डेंजरस थी, फिल्म के अंदर सीन्स आपको दिल तोड़ देने वाले थे क्योंकि फिल्म का नाम है मर्डर टू, लेकिन ये गाना इतना प्यारा है। इमरान हाशमी और जैकलीन पर फिल्माया गया, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग। और अगर आप किसी को अपने जज्बात बयां करने चाहते हैं ना, तो भैया मुझे लगता है इमरान हाशमी से बेस्ट गाने कहीं आपको मिलने वाले नहीं है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और हमारा सॉन्ग नंबर 10 आपके लिए पेश करते हैं इमरान हाशमी का ही अगेन, इश्क सूफियाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम मिलते हैं अगली बीच अगले न्यूज के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

मैं किसी से कहूंगा नहीं। और आप सुन रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में बोल दो ना जरा। अजहर फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया और वक्त है अपने अगले गाने की तरफ चलने का। सॉन्ग नंबर 8 जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, खूबसूरत सा गीत और ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है। इस गाने को आपने एंजॉय किया है ना जाने कितनी दफ़ा, कितनी दफ़ा आपने अपने इसको स्टोरीज पे लगाया होगा, कितनी ही दफ़ा आपने इसको गुनगुनाया होगा और न जाने कितनी दफ़ा जब फैमिली के साथ या फिर अकेले ड्राइव कर रहे होंगे तो आपने इस गाने को प्ले किया होगा। गाने का नाम है तेरा दीदार हुआ। इस गाने को सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगली बीट पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 7 तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह। और आपने इस गाने को एंजॉय करने के बाद आई होप आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में किसी ना किसी का ख्याल ज़रूर आया होगा। और अगर किसी का ख्याल आया है तो आप उन्हें उन तक ये गाना ज़रूर से पहुँचाएं। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला गाना जो है वो है तू ही मेरी शब है सुबह है। आपने इस गाने को सुना है, इन्जॉय किया है। और स्पेशली जब मैं केके की आवाज़ सुनती हूँ किसी भी गाने के अंदर, तो मैं केके को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, जिन्होंने हर इमोशन को इतने खूबसूरत तरीके से हर एक गाने के अंदर बयां किया है, जिसको सुनने के बाद लगता है कि यार ये गाना सिर्फ मेरे लिए लिखा गया है। केके हमें बहुत जल्दी, बहुत कम वक्त में साथ छोड़ के चले गए। और मुझे तो लगता था भाई केके अभी 2-3 हज़ार गाने और देंगे और मैं उनको लिस्ट में शामिल करूँगी। लेकिन एक सुबह जब मैंने सुना कि वो हमारे बीच नहीं है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ। फिलहाल उनकी इस सदाबहार आवाज़ को, उनके इस खूबसूरत अंदाज़ को आइए एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं गैंगस्टर फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना तू ही मेरी शब है सुबह है। स्टे ट्यून्ड।

0: तुशी
1: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे आपका पसंदीदा गाना सॉन्ग नंबर 15 तू ही हकीकत ख्वाब तू। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। और घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन अभी हमारे पास बाकी है आपके लिए चार और गाने। तो आइए नंबर वन सुनते हैं हम दिल इबादत, उसके बाद लेकर चलते हैं अपने टॉप 3 सॉन्ग्स की ओर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड।
2: Next FM presents India Top 20 Songs. Song number 4.

0: जी, तो भाई केके की आवाज में आप सुन रहे हैं बेहतरीन से गीत को, और हम लेके चलेंगे आपको अपने सॉन्ग नंबर 3 की तरफ। सॉन्ग नंबर 3 है राजा नटवरलाल से अरिजीत सिंह की आवाज में, तेरे होकर रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो हिरासन 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 3।

0: राजा दर्पणलाल से आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में तेरे होकर रहेंगे, और हम लेकर चलते हैं आपको अपने आखिरी के दो गानों की तरफ, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त अब आपसे विदा लेने का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर टू एंड सॉन्ग नंबर वन जरा सा और तू जो है अंकित तिवारी की आवाज में। इस गाने के बाद हमारी मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में। सुना मत भूलिए, तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह कौन रश है की धड़कन पर अपनी आरश्रुति के साथ। बाय बाय, मुलाकात करते हैं आपसे अपने अगले वाले शो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
6: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
5: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
6: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
5: जी।
6: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
5: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
6: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
6: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
6: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
6: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
5: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
6: जी आज दीदी,
5: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
6: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
5: जी।
6: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
5: जी।
6: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
5: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
6: जी दीदी
5: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
6: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
5: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
0: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
0: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
0: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
5: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
0: बहुत सारी,
5: जैसे?
0: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ
5: जी।
0: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
7: और बाकी?
0: अरे बताता हूँ बताता हूँ। दूसरा इमरजेंसी केयर आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना। सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना। अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना। शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना। इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
7: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल। यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
7: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
0: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता। वो तो बस संकेत देता है
7: जी।
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
7: जी।
0: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
7: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे। सिर, हाथ, पैर ढककर रखे। केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
7: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
0: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
7: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
7: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
0: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
7: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
3: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त RJ,
8: और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त RJ उन्नति, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। प्रोग्राम का वक्त हो चला है आपके अपने सेहत का कार्यक्रम क्लिनिक ज्ञानस्थली, जो लेकर आते हैं हम सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनर्जी और रेडियो ज्ञानस्थली की खूबसूरत पहल के तहत। आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं जिसमें बात होती है आपकी अपनी सेहत की, और हमारे साथ आज के दिन मौजूद होते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, तो उनका स्वागत करते हैं हम।
9: जी, और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्वागत करने के लिए, और साथ ही साथ ये आशा करते हैं कि आप अच्छी होंगी, और हमारे लिसनर्स जो हमको सुनते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, वो भी अच्छे ही होंगे।
8: भाई अच्छा तो यहाँ पर आई थिंक हर कोई होगा, लेकिन हर एक इंसान, हर दूसरा इंसान एक ही चीज़ से परेशान है।
9: क्या ऐसी चीज़ है जिससे हर दूसरा इंसान परेशान है?
8: गर्मियों में झड़ते बाल सर।
9: गर्मियाँ और गर्मियों में जो झड़ते बाल हैं, ये वास्तव में काफ़ी एक बड़ी समस्या हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल लिसनर्स के लिए। हमारे
8: मेल्स तो कहते हैं कि मैं बाल ही नहीं रखूँगा तो झड़ेंगे कहाँ से।
9: जी, और फीमेल्स के कंडीशन में ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती हैं, बहुत ही तरह तरह की चीज़ें वो नुस्खे सप्लीमेंट्स ट्राई भी कर रही होती हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी उनका जो है हेयर फॉल रुकता नहीं है।
8: ताने काफ़ी अच्छे हैं फिलहाल के लिए। हम आपको बता दें, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मेल फीमेल हर एक जेंडर का, हर एक एज ग्रुप का इंसान गर्मियों में झेलता ही झेलता है, और अगर किसी को सीजनल शेडिंग होती है जस्ट लाइक मी, वो और परेशान रहता है।
9: जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग जो है वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स और ज्यादा ही हेयर फॉल का सामना कर रहे होते हैं।
8: मतलब मैंने कहा था आपसे ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो भाई हेल्थ इज वेल्थ को बचाते बचाते मैंने अपने हेयर लॉस की तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये सीजनल हेयर शेडिंग मुझे हर बार परेशान करता है, बाकी कोई और बीमारी करे या ना करे।
9: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो ये सीज़नों का मतलब मौसम का बदलना होता है, और ऐसे बदलाव के समय पे जो बालों का झड़ना होता है, कुछ हद तक वो प्राकृतिक भी होता है और कुछ हद तक वो सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है।
8: बिल्कुल, बट आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस एक ऐसी चीज़ की जो फिर से शुरू होने जा रही है।
9: जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को भी बताएं कि आज आप क्या बात करने वाली हैं, आज वो हमारा चर्चा का विषय क्या होने वाला है, जैसा कि हम हर बार एक विशेष टॉपिक पे बात करते हैं।
8: आपको याद होगा हमने पिछले गर्मियों में भी एक टॉपिक पे बात किया था जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB।
9: जी बिल्कुल, हमें याद है,
8: और क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है और वापस से TB ने दस्तक दे दी है, और हम फिर से आज TB के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टीबी क्या होती है, कैसे होती है, ताकि हमारे लिसनर जो अब तक भूल चुके हैं कि टीबी नाम की कोई बीमारी एग्जिस्ट करती थी, उनको भी याद दिला दे भाई कि ये बीमारी एग्जिस्ट करती है और ये कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे हो सकती है।
9: बिल्कुल, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीबी जैसी बीमारी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, बहुत सारे सरकारी योजनाओं के तहत और बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, निरंतर चलाए जा रहे हैं और एक बहुत लंबे समय से चलाए जाते आ रहे हैं। बट फिर भी ये बीमारी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, आज भी लोगों को टीबी जैसी समस्या हो रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कम ही सही लेकिन कभी कभार ये बीमारी बहुत से पेशेंट्स में जानलेवा भी देखने को मिल रही है।
8: बिल्कुल, अगर किसी भी बीमारी की आप इलाज सही वक्त पे ना कराओ, दवा सही से ना लो, टाइम से ना लो, उसका इलाज ना करा रहे हो, तो फिर वो जानलेवा हो ही जाती है।
9: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि टीबी भी एक ऐसी ही गंभीर समस्या है कि यदि इसको इग्नोर किया जाए, यदि इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती है।
8: तो फिलहाल आपके जो भी सवाल हैं आप हमें चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429, आई रिपीट 6393316429, और इस पर आकर आप अपनी कहानी भी हमें बता सकते हैं। अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से लड़ाई की और अगर आप या कर रहे हैं या आपने आसपास किसी को देखा है जो टीबी से इस वक्त परेशान है और उनके अंदर जो एक डर बैठा होता है कि टीबी अगर मैं किसी को बता दूंगा तो कहीं ना कहीं समाज हमें समाज से ही निकाल देगा।
9: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करने वाली बीमारी है और बहुत से लोग ऐसी समस्याओं को कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं, स्पेशली अगर किसी फीमेल को है, किसी लड़की को है और वो शादीशुदा नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, तो वो भी शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबे समय तक इलाज नहीं कराते हैं, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
8: बिल्कुल, और इसीलिए आप हमें कॉल करके अपनी कहानी सुना सकते हैं, अपनी फीडबैक बता सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं टीबी के बारे में, प्लस आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। और जब तक आपकी कॉल्स आती है तब तक आपकी आरजे यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी जगह पर सवाल कर लेती है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। और मेरा पहला सवाल करने से पहले ही मैं कॉल आ गई।
9: चलिए बिल्कुल हम देखते हैं।
10: हेलो,
11: हाँ मैडम जी नमस्ते।
10: नमस्ते, आपका नाम?
11: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
10: जी मुमताज जी, बताइए क्या सवाल है आपका?
11: मैडम जी हम ये जानना चाहते हैं कि मेरी एज जो है 58 है मतलब
10: जी,
11: और पैर में और घुटने में ज्यादा दर्द होता है, तो मतलब कैसे क्या करें?
10: ठीक है, तो ये सवाल का जवाब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
9: जी मुमताज जी, कैसे हैं आप?
11: जी थोड़ा बहुत सर तकलीफ है पैर में। 58 साल की उम्र है सर
9: जी,
11: तो सर ये चलने पर भी अकड़न टाइप का हो जाता है।
9: बिल्कुल ठीक है, देखिए मुमताज, हाँ बोलिए
11: सर जी। हाथ पैर में दर्द होता है और रीढ़ में भी दर्द होने लगता है।
9: ठीक है,
11: तो इसके लिए आप कोई मतलब इलाज बता दें।
9: जी जरूर, देखिए मुमताज जी, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी समस्या जब हमें घुटनों में या शरीर के दूसरे हिस्सों में रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द होता है तो हमें कुछ जांचों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें ये देखना होता है कि मरीज का यूरिक एसिड वगैरह तो नहीं बढ़ा है या मरीज आर ए फैक्टर का पॉजिटिव तो नहीं है, तो ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो जोड़ों में दर्द वगैरह जैसी समस्याओं में कराए जाते हैं। अब आते हैं इसके उलट इलाज पे। देखिए जो शरीर के बड़े जॉइंट हैं जैसे घुटनों का हो गया, शोल्डर का हो गया, कंधे का जॉइंट हो गया, इन सभी जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो कभी कभार ये हमारे कार्टिलेज घिसने की वजह से या जो कहते हैं घुटनों में ग्रीस कम हो गया है उनके वजह से ये समस्याएं होती हैं। बट अगर छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ ये जो बेसिक जाँचें होती हैं जैसे आर ए फैक्टर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कैल्शियम लेवल हो गया, ये हमें चेक करा लेना चाहिए। अगर बड़ी गांठों में दर्द है जैसे घुटने वगैरह हो गए तो ल्यूब्री जॉइंट नाम की एक दवा आती है जिसको आप मार्केट में ले सकते हैं और वो आपके जोड़ों को मतलब और बेहतर बनाने में जो ग्रीस होता है वो बनाने में मदद करता है और जोड़ों का दर्द को कम करता है। जी तो फिलहाल आप ल्यूब्री जॉइंट नाम की दवा ले सकते हैं, बट आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप कुछ अपने बेसिक टेस्ट करवा करके देखें और जिनमें आर ए फैक्टर ज़रूर चेक कराएं क्योंकि ऐसे मरीजों में आर ए फैक्टर पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी इसके अलावा और कोई जानकारी आप चाहते हैं मुमताज जी?
11: नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के
9: लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें कॉल करने के लिए। जी हाँ, तो हमारे एक लिसनर जो घुटनों में दर्द से समस्या से पीड़ित थे, और आशा करते हैं कि हमारा जवाब उनको उनके लिए कुछ कारगर साबित हो, उनके लिए कुछ मददगार साबित हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं कि उन्नति मैम का वो पहला प्रश्न क्या होने वाला था जिससे पहले ही कॉल आ गई।
10: तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है या फिर जिस भी वायरस से होता है उसका नाम क्या है और वो कहाँ मौजूद होता है?
9: जी बिल्कुल, टीबी जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, माइकोबैक्टीरियम।
10: ओके, चाहेंगे एक और कॉल है हमारे पास।
9: जी जरूर, हमारे लिसनर को आप लाइन पे लें।
12: हेलो।
10: हेलो,
12: नमस्ते जी।
10: नमस्ते जी, आपका नाम?
12: धर्मेंद्र मोहन।
10: धर्मेंद्र मोहन जो आप हमें आवाज विकास से सुनते हैं।
12: जी
10: जी, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में। आपका क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं?
12: बाल में ज्यादा रूसी रहती है।
10: ओके, तो ये सवाल का जवाब हमारे सर देंगे कि आपके बालों में इतनी ज्यादा रूसी क्यों रहती है।
9: जी धर्मेंद्र मोहन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
12: नमस्कार सर जी।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा वाले शो क्लिनिक ज्ञान स्थली में। आपका प्रश्न है कि बालों में रूसी बहुत ज्यादा रहती है।
12: बाल छिला भी लेते हैं तब भी फिर आ जाता है।
9: अच्छा, क्या रूसी होने के साथ साथ बालों में खुजलाहट भी होती है?
12: हाँ, खुजलाहट होती है।
9: ठीक है, कई बार देखिए ये समस्या जुड़ी होती है किसी न किसी फंगल हेयर इन्फेक्शन से, मतलब बालों में फंगल इन्फेक्शन होने के समस्या से। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक विशेष प्रकार का शैम्पू आता है मेडिकेटेड कीटोकोनाजोल, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे कीटोफ्लाई या कीटो स्टार नाम से प्राप्त कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल, ये उसके अंदर का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ब्रांड नेम आप पूछेंगे तो कीटोफ्लाई या कीटो स्टार नाम से ये शैम्पू प्राप्त कर सकते हैं।
12: जी
9: इन शैम्पू, हाँ,
12: मेडिकल दुकान पे मिल जाएगा?
9: जी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और ये हफ्ते में आपको 3 बार लगाना है एक दिन छोड़ करके। और इसको लगाने के बाद अगर फिर भी मान लीजिए लंबे समय से है, अगर बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह हो रही है, तो कुछ खाने की भी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। तो फिलहाल करके आप ये शैम्पू का यूज़ करें, और शैम्पू को यूज़ करने के बाद भी अगर आपका रूसी नहीं जाता है तो हम इसके आगे का भी उपाय आपको बता देंगे।
12: थी,
9: थी, थी। इसके अलावा और कोई प्रश्न आपका?
12: बस यही था, एक लोग है उनके बाल भी झड़ रहा है।
9: अच्छा ठीक है, तो जिनका बाल झड़ रहा है आप जरूर उनकी बात हमसे करवाइएगा, कुछ प्रश्नों को पूछ करके और उनसे जान करके हम उनका भी उपाय जरूर बताएंगे।
12: धन्यवाद,
9: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और यहीं से वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक जो कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी नाम की बीमारी थी।
10: जी, और हमारा सवाल आपसे यही था कि आपने बैक्टीरिया का नाम तो हमें बता दिया किस बैक्टीरिया से होता है, बट हम जानना चाहेंगे बैक्टीरिया मौजूद कहाँ होता है और क्यों लोगों को टीबी हो जाती है।
9: बिल्कुल, देखिए ये बैक्टीरिया जो है मतलब जनरली किसी जानवरों में हो सकता है, किसी नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकता है, इन सभी जगहों से स्प्रेड हो सकता है। बट जो इंसानों में टीबी होता है ये ज़्यादातर पर्सन टू पर्सन ही कांटेक्ट करने से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, चूँकि अब ट्यूबरकुलोसिस विभिन्न प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में होता है, विभिन्न मतलब लोकेशंस पे होता है, फेफड़ों में, सर में, रीढ़ की हड्डी में, किसी और दूसरे हड्डी या जोड़ में। तो टीबी जैसे मान लीजिए अगर किसी को फेफड़ों की टीबी है और उसको खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, तो उसने कहीं पर स्प्रिट किया अगर, तो वहाँ से मक्खी बैठ करके, और वो मक्खी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको स्प्रेड कर सकती है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये बीमारी को स्प्रेड कर सकती है। तो स्पेशली टीबी जो होता है ये पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसमिट ज़्यादा होता है, बट किसी जानवर से भी और किसी नेचुरल रिसोर्सेज से भी ये हमें हो सकता है।
10: ओके, मैं हमेशा से पहले यही सोचती थी कि जब टीबी होता है तो ये आता कहाँ से है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि किसी ना किसी के अंदर टीबी अपने आप ही डेवलप हो गया हो, कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया उड़कर आया होगा। अच्छा, आपने कहा कि जब इंसान को टीबी होता है और वो खांसता है, थूकता है, तो उसकी वजह से भी हमें टीबी हो सकता है।
9: जी,
10: तो इस दौरान जिन लोगों को टीबी होती है और ऑफकोर्स उन्हें खांसी भी आती है, बलगम भी होता है, तो वो क्या करे जिससे दूसरे संक्रमित ना हो, वह कैसे अपना ख्याल रखे?
9: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बीमारियों में जब कभी कोई एक व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी है, तो ये उसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारा संक्रमण किसी और तक ना फैलने पाए, जबकि लोग दूसरे लोग ख्याल रखते हैं कि इनका संक्रमण हमें ना फैलने पाए।
10: बिल्कुल,
9: देखिए अगर कोई भी मरीज है जिसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसको ये ज्ञात है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहली बात तो मास्क का यूज़ करना चाहिए, और दूसरी बात किसी से अगर मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे एक जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आपको एक पैमाना बताया गया था कि 2 गज की दूरी, तो उसका पालन करना चाहिए। और इसके अलावा उसे किसी भी जगह पर थूकना या ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खांसते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि अगर मास्क नहीं भी लगाया है तो मुंह पे कपड़ा या फिर रुमाल कुछ लगा करके ही खांसे, जिससे ये बीमारी दूसरों तक स्प्रेड ना हो। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और दूसरों से हाथ मिलाना या बॉडी कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए।
10: ओके, तो भाई ये उनको करना है जिन्हें टीबी हो चुका है और जिनकी दवाइयाँ चल रही है। अगर आप टीबी से ठीक हो चुके हैं तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है कि भैया लोगों से दूरी बनाकर रखो, उनसे मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, ना लोगों को आपके साथ भेदभाव करने दे रहा है। बट अगर अभी आप संक्रमित हैं और आपको पता है कि अभी आपकी मेडिसिन चल रही हैं, तो फिर आपको चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
9: बिल्कुल,
10: फिलहाल चलते हैं अगली तरफ और हम सवाल करते हैं आपसे इस बात पर कि लोग कहते हैं टीबी सिर्फ फेफड़ों की होती है। ये बात 50% सच भी है कि टीबी मेनली जो हमें देखने को मिलती है वो फेफड़ों की ही होती है। बट इसके अलावा टीबी और किस किस अंग को हो सकती है? जैसे दिमाग में आपने बताया, रीढ़ की हड्डी में आपने बताया, इसके अलावा भी कहीं टीबी और संक्रमित कर सकता है किसी अंग को?
9: जी बिल्कुल, देखिए वैसे बहुत से लोगों को ये लगता था कि टीबी सिर्फ और सिर्फ सांस की बीमारी है।
10: जी
9: टीबी नो डाउट कि जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो हमारे फेफड़ों में, हमारे जो श्वास तंत्र है उसमें ही देखने को मिलती है। बट इसके अलावा टीबी का संक्रमण हमारे रीढ़ की हड्डियों में, हमारे किसी जोड़ में, किसी हड्डियों का जो जोड़ होता है, जैसे घुटनों का जोड़ हो गया, कंधों का जोड़ हो गया।

0: करें। अब इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का कोई बैक्टीरिया वायरस गया और वो ब्लड के माध्यम से या ट्रैवल करते हुए मान लीजिए हमारे हाथों तक पहुँच गया और वहाँ पर वो ट्रैप कर गया, तो हमारी बॉडी उसके आसपास केराटिनाइज करके उसको धीरे धीरे उसको एक गांठ में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो संक्रमण तेज़ी से वहाँ से ना फैलने पाए। तो ऐसे कंडीशन में भी देखा गया है कि जो स्किन के पार्ट होते हैं, बॉडी के दूसरे हिस्से होते हैं, हाथ होते हैं, उस पर भी गांठ होती है और उन गांठों के अंदर टीबी का संक्रमण हो सकता है।
1: अच्छा सर, जब हम संक्रमण की बात करते हैं, मेनली हमने टीबी के लक्षणों को देखा है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आती है, बलगम होता है, खून भी कई लोगों को आता है और बहुत लगातार खांसी आना, सीने में दर्द होना। अब ये सारे लक्षण तो आपको तब मिलेंगे जब फेफड़ों की ही आपको मेनली टीबी होती है। अब आपने कहा कि लीवर में हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, जोड़ में हो सकता है, तो इनके लक्षण भी ऑफ कोर्स अलग ही होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर किसी को जोड़ों में या फिर हड्डियों में स्पेशली किसी को टीबी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं?
0: देखिए, किसी भी हड्डियों में और जोड़ों में अगर टीबी होती है तो उसके जो बेसिक लक्षण आते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए कि फीवर एक हमारे बॉडी का कॉमन मैकेनिज्म है और वो किसी भी कंडीशन में आ सकता है।
1: और फीवर आने का मतलब ये नहीं होता है
0: कि आपको टीबी ही है, बिल्कुल,
1: क्योंकि वो हमेशा आता है,
0: वो हमेशा आता है और किसी भी कंडीशन में आ सकता है।
1: एंड आपकी बॉडी उस वक्त आपको बचा रही होती है इसलिए उसका टेम्परेचर हाई करती है।
0: बिल्कुल, तो मतलब फीवर का आना और पसीना, स्वेटिंग, ये जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये तो होते ही है, बट जोड़ों में, उस स्पेसिफिक जोड़ में जिस जगह पे टीबी का संक्रमण है, वहां पे गंभीर दर्द का होना
1: जी,
0: उस जोड़ों के चलने या मूवमेंट करने पे, उसको हिलाने डुलाने पे वो दर्द का बढ़ना, कॉमनली जब आप लेटे रहते हैं तब भी टपकन जैसा दर्द होना कि कॉन्टिन्यूस वो पेन बना ही हुआ है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे जो टीबी हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है तो वो जोड़ों को डैमेज कर देती है, जिस प्रकार वो हमारे लंग्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, उनकी कोशिकाओं को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसी प्रकार हड्डियों की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में टीबी होने की वजह से जो डिस्क है, मतलब जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जो गुटके होते हैं और जो उनके बीच में वो तश्तरी जैसा प्लेट्स लगी होती हैं, वो प्लेट्स को वो खा करके और डिस्ट्रॉय करके डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो पेशेंट होता है वो पैरालाइज भी हो जाता है। तो स्पेशली मतलब उस जोड़ में दर्द रहना और गंभीर दर्द का रहना, दर्द के साथ बुखार आना, अकड़न रहना, ये सारी लक्षणों के अलावा जो हमारे फाइंडिंग्स होते हैं, जैसे एक्सरे करके देखते हैं या सीटी स्कैन करके देखते हैं, तो उन फाइंडिंग्स में ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं कि वहाँ पे टीबी का संक्रमण है या किसी नॉर्मल प्रकार का दर्द या सूजन जोड़ों में है।
1: सर, आपने हमें दर्द बताया और मुझे जहाँ तक ख्याल है लोगों का, ऐसे बहुत से लोग होंगे और ऐसे में कॉल्स भी आते हैं कि जोड़ों में दर्द रहता है। अब उनके दिमाग में तो बैठ चुका होगा कि भाई जोड़ों का दर्द टीबी भी हो सकता है
0: जी,
1: एंड ये घबराहट की बात है और हर कोई घबरा जाता है जब टीबी का नाम सुनता है। टीबी का नाम सुनते लोगों को लगता है बहुत बड़ी सी बीमारी है
0: जी,
1: और क्योंकि अब हमें दर्द भी लगातार हो रहा है उठने चलने फिरने में और अचानक से बैठते तो भी दर्द होता है, पैर नहीं मुड़ रहा है, तो उन लोगों की घबराहट को थोड़ा दूर कीजिए और मुझे बताइए कि उनके पैरों में जो दर्द हो रहा है वो कहीं टीबी का दर्द तो नहीं है या फिर वो नॉर्मल जोड़ों का दर्द है।
0: देखिए, बिल्कुल मैं उन लोगों की घबराहट को दूर करता हूँ और मैं उनको ये भी बताता हूँ कि जैसे जो टीबी का संक्रमण होगा यदि आपके किसी जोड़ में
1: जी,
0: तो आपके जोड़ों की जो स्थिति है वो कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों में ही बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगी। जोड़ों में गंभीर दर्द होगा, गंभीर सूजन होगी और महज कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों के पहले आपके जोड़ एकदम ठीक थे और अभी कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में एकदम से ऐसा गंभीर दर्द और सूजन जैसी चीजें हो जाती
1: हैं। मतलब 14 दिन के अंदर?
0: नहीं नहीं, 14 दिन के अंदर नहीं, बट मान के चलिए अगर एक 30 से लेके 50 दिनों के अंदर,
1: 30 से 50 दिनों के अंदर अगर आपके जोड़ों के दर्द या फिर कहीं भी आपको अचानक से दर्द हुआ है और वो बहुत गंभीर होता जा
0: रहा है, बिल्कुल वो गंभीर होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है और वो मतलब जो नॉर्मल रेमेडीज़ होती हैं, जो नॉर्मल परहेज होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि खटिया पे नहीं लेटना है, तकिया नहीं लगाना है और झुकना नहीं है, पैर मोड़ करके नहीं बैठना है,
1: तो मतलब
0: भारी चीजें, जो ऐसी चीजें परहेज करने के बाद भी अगर वो दर्द बढ़ता जा रहा है तो फिर आपका वो दर्द नॉर्मल तो नहीं है। अभी मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि वो टीबी ही है,
1: उसकी जांच करा ली।
0: हाँ, अब वो आवश्यकता है कि आपको जांच करा के देखें।
1: बिल्कुल, बस ये है कि अगर आपकी कोई चीज है

0: आपके पैरों में लगातार दर्द है, अचानक से दर्द है और वो क्रिटिकल होता जा रहा है, आप दवाई भी ले रहे हैं इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराकर ही आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके जोड़ों में टीबी है, आपके हड्डियों में टीबी है या नहीं है।
1: जी बिल्कुल, और मतलब ऐसा भी, ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं है, बहुत से मरीज अब भी स्टिल देखने को मिलते हैं कि जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो ऐसी टीबीज होती हैं, मतलब जो रीढ़ की हड्डी में या बॉडी के दूसरे किसी हिस्से में, ये बहुत लंबे समय तक हमारे बॉडी में मतलब साइलेंट फेज में पड़ी रह सकती हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, कई बार देखने को मिला है कि ये नॉर्मल दर्द से स्टार्ट होता है, फिर लोगों को लगता है कि बस एक कॉमन दर्द है, दर्द बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते जब वो 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सारी होम रेमेडीज़ और सारी नॉर्मल जो दवाइयाँ हैं वो जब फेल हो जाती हैं, तब जब वो डॉक्टर किसी जब वो पेशेंट किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उसकी प्रॉपर फाइंडिंग्स करके, सीटी स्कैन करके या स्पाइनल एक्सरे करके जब देखते हैं, तब तक हड्डियां पूरी गल चुकी होती हैं, जो कार्टिलेज है वो पूरा गल चुका होता है और कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो ये बात बताने का मेरा अभिप्राय यह था कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर आपको सिम्टम्स आ ही जाएंगे या इतने वर्स्ट हो जाएंगे कि आप टेस्ट करके देख ही लेंगे। कई बार वो साइलेंट फेज में बहुत लंबे समय तक हमारे बॉडी में पड़े रहते हैं और फिर किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के थ्रू जब किसी डॉक्टर को डाउट होता है, वो ऐसे टेस्ट भेजता है, तब उसमें क्लियर होता है जा करके कि हाँ ये एक एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है।
0: तो मैं आपको बता दें, जैसे हर खांसी टीबी नहीं होती, जैसे हर दर्द टीबी नहीं होता, तो ऐसे ही अगर आपको किसी के सिम्टम्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होती, बीमारी हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, और ऐसी बीमारियां तो कई बार होता है,
0: और
1: कि
0: ऐसी बीमारी ज्यादा खतरनाक होती है,
1: ज्यादा खतरनाक होती है। हेपेटाइटिस वगैरह की जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी वगैरह के वायरस होते हैं, ये बॉडी में बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव फेज में पड़े रहते हैं।
0: अच्छा सर, हमने सुना है कि जिनको टीबी हो जाता है उन्हें कैंसर भी बहुत जल्दी हो सकता है।
1: बिल्कुल, ये आपने सही सुना है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो पहले तो एक दूसरी बीमारी रहती हैं, बट वो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं।
0: ओके, और ऐसी में से मुझे लगता है कि एचपीवी है या फिर हमारी एचआईवी है, ये वो बीमारियाँ हैं जो और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो एचआईवी तो इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एचआईवी के पेशेंट्स में भी कैंसर डेवलप करने के केसेस पाए गए।
0: एचआईवी में तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक बीमारी के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर रही है।
1: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको आगे फर्दर वो कैंसर में डेवलप होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपने बताया एचपीवी है, पेपिलोमा वायरस है, इसके साथ ही साथ जो ट्यूबरक्लोसिस भी है, ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
0: ऐसा क्यों होता है?
1: हाँ, ये प्रश्न अच्छा है कि ऐसा क्यों होता है। होता है, ये तो सबको पता है
0: क्यों होता है।
1: जी बिल्कुल, ये भी बताएंगे। और देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, और हम फिलहाल लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस को ही लेकर के चलते हैं, तो जब आप इसकी फाइंडिंग्स देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, तो आपको ये दिखता है कि मतलब एक धब्बे टाइप के जगह जगह पर पड़ रखे हैं आपके फेफड़ों में, और वो धब्बे जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा इन्फेक्ट किए गए टिश्यूज़ हैं। अब जब वो बैक्टीरियाज़ वहाँ पर आपके टिश्यूज़ को खाते हैं, वहीं पे अपना जो मलमूत्र का विसर्जन भी करते हैं, उनके मलमूत्र में विषैले टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनको उनका इन्फेक्शन है, उस एरिया को इन्फेक्ट करना है, उनके टॉक्सिन्स का वहाँ पे मिलना है, या मेडिसिन्स जो जा करके, भाई जाहिर सी बात है जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो मेडिसिन जा करके उन बैक्टीरियाज़ को टारगेट कर रही हैं, तो उन्हीं जगह पे तो टारगेट करेंगी जिन जगह पे उनका इन्फेक्शन है।
0: जी।
1: तो ये मेडिसिन्स का जो टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्पेसिफिक पार्ट पे जो सेल ग्रोथ है, सेल डेवलपमेंट है, उसको जो है उसका डीएनए मॉडिफिकेशन करके और उसके उसको कैंसरस ग्रोथ में बदल देती हैं।
0: Okay.
1: मतलब बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स वहाँ मिलने की वजह से जो उसके डीएनए होते हैं, वो डीएनए वहाँ से मतलब मॉडिफाई हो जाता है, और उसकी वजह से उस बीमारी को जो ठीक करने के लिए जो इलाज दिया गया है, जो वहाँ पर टारगेट हुआ है, इन सारी चीज़ों की वजह से उन जगहों के डीएनए जो है, उस स्पेसिफिक सेल्स के डीएनए, वो थोड़ा बदलने लगते हैं, और वहाँ पे फिर कैंसर सेल्स की ग्रोथ जो है वो प्रारंभ हो जाती है।
0: ओके, तो इस वजह से लोगों को कैंसर हो जाता है टीबी के बाद।
1: जी
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल का जवाब देने के लिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल हमारे समाज से जुड़ा हुआ, मैं सोसाइटी से जुड़ा है। स्पेशली आपने कहा था कि स्टार्टिंग में जिन लोगों की शादी नहीं होती वो अक्सर टीवी की बात को छुपाते हैं, और ये बात हमने भी देखी
1: जी।
0: कुछ टीवी वॉरियर्स से जब हमने बात की तो वो सामने बस इसलिए नहीं आ रहे थे, उनका कहना था कि अगर हम सामने आएंगे तो ये मेरी फ्यूचर लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा
1: जी।
0: सर आप मुझे बता सकते हैं कि एक बीमारी किसी के फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और क्यों लोगों को लगता है कि अगर टीबी किसी को हो गई है तो उसके साथ अगर आप रहते हैं या फिर शादी करते हैं तो इससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि टीबी अगर किसी की ठीक हो चुकी है, पूरी तरह से ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो क्यों इस समाज में आज भी ये भ्रांतियां हैं कि आप उस इंसान से शादी नहीं करते जिसको टीबी हो चुका है?
1: बिल्कुल, और देखिए ये वास्तव में मुझे लगता है कि ये इस सेगमेंट का सबसे ही अच्छा, सबसे ही सुंदर और सबसे प्यारा प्रश्न होने वाला है, और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसका जो बेहतर से बेहतर जवाब हो सकता है वो देने का प्रयास करूँगा। देखिए भारत में जो टीबी की हिस्ट्री रही है, जैसे हम किसी बीमारी को और उसको लेकर के जो समाज में जो विचारधारा है हम उस पर ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, इसके बजाय कि हमें उस पर भी चिंतन करना चाहिए कि इस बीमारी की जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, वो क्या रहा है
0: जी।
1: जब आप देखेंगे भारत में तो आज के समय में तो ठीक है, बट आज के मुझे लगता है 20 या 30 साल पहले जब आप ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते थे वो धीरे धीरे उनका शरीर गलने लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले, इनफैक्ट इतने ज़्यादा दुबले पतले कि उनकी सारी हड्डियाँ जो है वो दिखने लगती थीं, एक्सपोजर होने लगती थीं। कई बार जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है, जो टीबी का इलाज होता है, वो दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं कि वो हमारे शरीर में वेट लॉस जैसी समस्या को प्रमोट करती हैं
0: जी।
1: तो अच्छा अब क्या है, मतलब पहले के समय में न्यूट्रिशन की भी कमी थी, खाने पीने की भी लोगों को कमी थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके वजह से मतलब इंसान कुपोषित हो जाता था ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में
0: जी।
1: तो ऐसी चीज़ों में लोगों को ये लगता था कि मतलब कोई भी लड़की है अगर वो ट्यूबरकुलोसिस है या कोई लड़का है तो जब इसकी हम शादी करा देंगे तो फिर ये पता नहीं कितने दिन तक स्वस्थ रह पाए। अच्छा पहले लोगों को ये लगता था कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जान ले ही लेती है
0: जी।
1: ठीक है, मतलब अगर वो इलाज भी करवा रहे हैं तो वो 5-7 साल या 10 साल जिएंगे, लोगों को ये लगता था कि बस इतना ही जिएंगे टीबी के बाद। तो मतलब लोग फिर ऐसा अवॉइड करते थे कि ऐसे घरों में शादी करना या ये सारी चीज़ें, या कभी ऐसा ना हो कि इनसे जो बच्चे हों। अभी भी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या टीबी भी जेनेटिक हो सकती है
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लोग पूछते हैं। तो लोगों को ये भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर इनसे और इनके जो बच्चे हों वो भी इसी तरीके से हों,
0: यानी कि जीन्स में ट्रांसफर,
1: जीन्स में ट्रांसफर हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत में ये भेदभाव आप थोड़ा सा देखते थे, बट ठीक है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग बहुत हद तक पहले से जागरूक हुए हैं, और टीबी जैसी समस्या को सिर्फ एक संक्रामक बीमारी मान करके और एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है ऐसी बीमारी मान करके लोग अब उसका इलाज करा रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं और दूसरों को भी अवेयर करने का काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और सरकार भी आपकी पूरी मदद करती है अगर आप सामने आकर के टीबी का इलाज कराते हैं तो। हम आपको बता दें सरकार चलाती है निक्षय पोषण योजना, जो भारत सरकार द्वारा टीबी के मरीजों के लिए एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये आपको महीने का 1,000 रुपये देते हैं ताकि आप अपने पोषण की कमी को पूरा कर सके। जैसा आपने कहा था कि टीबी के मरीजों के पास बेहतर पोषण अगर नहीं होता है तो ये उनकी कमी को पूरा करते हैं, और ऑफ कोर्स आपको बस पंजीकरण कराना है और इसके बाद आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन वही है कि सरकार के पास तो काफ़ी काम है, सरकार हमारी पूरी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जो लोग होते हैं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उतनी।
1: बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, और मुझे लगता है कि देखिए स्पेशली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन तक तो चीज़ों की, योजनाओं की जानकारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं से हो जाती है, बट जो आज भी एक हमारी मेजर पॉपुलेशन जो देहात में रहती है, गांव के क्षेत्र में रहती है, उन तक इन सभी योजनाओं से संबंधित जो लाभ है उनके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं पहुंचने में लायक है, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें अगर पूरी कर दी जाएं और उन तक अगर जानकारियां पहुंचाई जाएं, अवेयर किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें।
0: बिल्कुल सर मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि जो भी टीबी के मरीज हैं, पहली चीज़ तो ये है कि लोग बीमारी को बीमारी की तरह नहीं समझते
1: जी।
0: मैंने देखा है कि लोगों को अगर मैं ये कह दूं कि आप थोड़े से आपके घर में कोई बीमार है तो उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा, आप उनके पास जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि आपने मास्क लगाया है, तो लोगों के अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि अच्छा अब तुम मेरे लिए मास्क लगाओगे, अब हम इतने अछूते हो गए। मतलब ये हमारा कहने का मतलब नहीं होता है। डॉक्टर्स भी कई बार हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि आप मास्क लगाकर ही आईसीयू में जाएंगे, तो डॉक्टर्स पे भी सवाल उठ जाते हैं कि अब हम फैमिली मेंबर्स भी नहीं मिल सकते हैं। ये चीजें अक्सर नोटिस की जा रही है और इसका कारण ये होता है कि फिर जो लोग उनके पास जाते हैं उन्हें भी वो टीबी हो जाती है। मेरे पास ही एक केस है जिसमें एक हस्बैंड को टीबी था और उनसे वो ट्रांसफर उनकी वाइफ को हो गया और स्पेशली दोनों की ही उसके बाद डेथ भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और बाद में पता चला कि उनके बच्चे को भी टीबी के संक्रमण हो चुका है, हालांकि उसकी दवा चल रही है अभी और शायद वो अभी ठीक भी होगा। बट ये चीजें जो हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझते हैं, ध्यान नहीं रखते, और हमको लगता है कि फैमिली मेंबर्स भी अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा। सर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट है, आप जरूर बताएं इस चीज को, क्यों आप कहते हैं कि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त।
1: बिल्कुल, और चूंकि उन्नति मैम ने कहा कि मैं इस बात को बताऊं और अपने लिसनर्स को बताऊं, तो बिल्कुल मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, एक सुरक्षित दूरी पे रहना, रह कर के बात करना, देखिए ये डॉक्टर्स ने अपनी भलाई के लिए नहीं इजाद किया है।
0: बिल्कुल,
1: ये मेडिकल साइंस ने, चिकित्सा विज्ञान ने, हमारे जो भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए इजाद किया गया है। अब आप इसकी गंभीरता को और इसके लाभ को आप इस तरह से समझिए कि कोरोना जैसी इस महामारी को, इतनी बड़ी इतनी गंभीर बीमारी को हम लोगों ने मात दी है, वो वैक्सीन के बदौलत नहीं हो पाया है।
0: वो हमारी हाइजीन, हमारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने,
1: वो हमारी जो हाइजीन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क का लगाना, जो दो गज की दूरी, जो ये प्रोटोकॉल्स हमने पालन किए,
0: बिल्कुल
1: भले जबरदस्ती किए या जैसे भी किए, लेकिन जो हमने ये प्रोटोकॉल्स पालन किए, इन प्रोटोकॉल्स की देन है कि कोरोना जैसी गंभीर महामारी को हम पीछे छोड़ पाए। तो देखिए इससे होता क्या है कि जैसे अब आपने बताया कि एक हस्बैंड को था, हस्बैंड से वाइफ को हुआ, फिर बच्चों में भी ट्रांसमिट हो गया। ये बीमारी या कोई भी ऐसी संक्रामक बीमारी जिसमें हम मास्क लगाने के लिए कहते हैं, सुरक्षित दूरी बनाने के लिए कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं ताकि आपसे समस्याएं मरीज तक या मरीज से समस्याएं आप तक ट्रांसफर ना हो सकें। कई बार कुछ मरीजों, जैसे आपने देखा होगा कि जिनकी किडनी लीवर फेल होता है या जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा रखा होता है, वो मास्क का यूज़ करते हैं और उनके पास जो भी लोग जाते हैं वो मास्क लगाते हैं। आपने प्रेमानंद महाराज को भी देखा होगा कि उनके पास जाने वाले सभी लोग मास्क लगा करके जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी किडनी फेल जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यदि उनके शरीर में किसी और प्रकार का संक्रमण प्रवेश करता है तो उसका इलाज करने के लिए उनको अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और अंग्रेजी दवाइयाँ लेने के वजह से फिर उनके किडनी पे और ज़्यादा प्रभाव जाएगा। कि इस वजह से मास्क लोगों को वहाँ पर कंपलसरी करते हैं कि मास्क लगाकर ही अंदर जाएं। तो इसी प्रकार आप अपनी भलाई के लिए नहीं तो मरीज की ही भलाई समझिए कि जब मरीज आपका ऑलरेडी एक संक्रमण से लड़ रहा है, उसका इलाज चल रहा है, यदि किसी और प्रकार का संक्रमण उसको उस समय पर दे दिया गया, ट्रांसमिट कर दिया गया, तो उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
0: बिल्कुल, और मरीज को आपको सबसे पहले ट्रीट करना है ढंग से, क्योंकि हम बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, मरीज को दूर नहीं करते, बीमारी
1: बिल्कुल,
0: को दूर
1: बिल्कुल। और देखिए उस मरीज को आइसोलेट इसीलिए किया गया है ताकि उसको और ज्यादा संक्रमण या और ज्यादा बीमारियां ना पहुंचे। कृपया ऐसी चीज़ों को आप भावनात्मक दृष्टिकोण से ना देखें, इसको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से देख करके और जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो उचित व्यवहार हो सकता है वो करने का प्रयास करें।
0: और यही कारण भी है कि मरीज़ अपनी चीज़ों को छुपाने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज में लोग उसे एक ऐसे नज़रिए से देखेंगे जो छुआछूत में आ जाएगा, लोग उसको दूर कर देंगे, उसे बात नहीं करेंगे, उसे अपने पास बैठने नहीं देंगे।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये डर जो है ये मरीजों में मुझे लगता है, और मेरे साथ साथ बहुत से हमारे लिसनर्स को लगता होगा कि आज के इस 21वीं सदी में, इस मॉडर्न टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी चीजें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं,
0: बिल्कुल
1: अभी भी समाज में है। लोगों के अंदर ये अभी भी डर है कि वो अपनी किसी बीमारी के बारे में यदि बताते हैं तो लोग उनको मतलब दरकिनार ना कर दें, लोग उनसे भेदभाव ना करने लगे, या बहुत सारी ऐसी गुप्त बीमारियां हैं जो प्राइवेट बीमारियां होती हैं उसको बताने से लोग इसलिए डरते हैं, इसलिए हेजिटेट करते हैं कि कहीं ये हमारी बीमारी का मॉक ना करने लगे, हंसी मजाक लोग ना उड़ाने लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो जनता है, इसकी जिम्मेदारी है चीज़ों को समझना और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे।
0: बिल्कुल। तो भैया मरीज को अच्छे से ट्रीट कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखिए, और जाकर आपसे कहा गया है कि मास्क लगा कर जाइए तो डॉक्टर से लड़ना नहीं है, मास्क लगा लेना
1: जी
0: है।
1: मास्क लगाना है और मास्क लगा करके अपनी

0: समस्याओं को और मरीज को होने वाली समस्याओं को कम करना है।
1: फिलहाल चैट बॉक्स में चल लेते हैं और हमारे साथ तानिया जी जुड़ी हैं जो लिख रहे हैं गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू। कमल नैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं उन्नति मैम गुड इवनिंग, डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्कार कमल नैन जी को और बहुत बहुत स्वागत करते हैं तानिया जी का और कमल नैन जी का।
1: यूँ तो टीवी पर करने को बहुत सारी बातें हैं, अभी हमने सिर्फ लंग्स को और बोन्स को ही कवर किया है, अभी हमारे फेफड़े बाकी हैं, अभी हमारा किडनी बाकी है, लिवर बाकी है, दिमाग बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और प्लीज़ ये भी जानना है कि सिम्टम्स के अलावा और भी क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हम इनको ट्रीट करते हैं, खाने पीने में क्या है, लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है विदा लेने का।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो एक बार में समाप्त हो भी नहीं सकता है, तो बिल्कुल हम लोग फिर कभी ना कभी इस पे आगे इससे संबंधित चीज़ों पे ज़रूर चर्चा करेंगे।
1: तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, और आपको लगता है कि कोई टीबी से संक्रमित है तो अपना ख्याल रखिए, उसे भी ज़रूर बताइए। अगर उनकी बीमारी को छुपाने की कोशिश ना करें, उनको बताएं, डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करें, सलाह दें, प्लस निक्षय पोषण योजना के बारे में उन तक ज़रूर खबर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, अपना ख्याल रख सकें, अपनों का ख्याल रख सकें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं क्लिनिक ज्ञानअसली, अपनी आर चुनौती और अपने हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी के साथ आपके अपने FM रेडियो ज्ञानअसली 89.6 FM पर। बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने

0: वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राम हो, बहुत गर्म है दादा, जान परत है कि परनवा निकल जाई। इतना गर्मी, इतना गर्मी, एक तो हमार जूनी चटपटो ही ना, ये ठंडवा चलाए के और चुप्पे वल्ली रहा थी दोपहरिया में, और हम दोपहरिया में आई थे। ओ चाची,
3: भगवान,
2: ओ चाची,
3: इतनी बढ़िया नींद, माँ बताओ के चिल्ला दे, हमें लगा अब दुलारी खलो, है
2: ये खलो सोते ही। चाची हो
3: का है दुलारी, आ जाओ करो, हम दरवाजा कब्बो बंद नहीं करी थी। यह
2: कचवाई दियो तू, हम चाची पल्ला बंद कर ले तू।
3: पल्ला कहाँ बंद, कुंडिया नहीं दिए रहा।
2: अब ये तू ठंडवा चलाए के आराम से सूती रहा थी,
3: अब का करे, इतने दोपहरी है, इतना धूप है, घाम है।
2: तब देखो हमारे दोपहरी में टाइम मिला था, हम वही टाइम आई।
3: तो चलो तू चाहे जब आओ, तुहार घर है, हम कब कहे थे कि तू जो संझिया का हो या दतिया का हो।
2: हाँ तभी जो है पल्लवा का है बंद कर रहा है, तू जो कुकुर पाले हूँ।
3: तब कुकुर है तो कहाँ जाए, वो तो ठंड पाए के यहाँ बैठे रहा थे, कहाँ जाए।
2: अब जैसे हम पल्लवा गुटका कुल भाव भाव भाव शुरू कर दी।
3: हाँ तो भाई देखो, कोई घर में घुसी हो तो जब ये सब पहरेदार हो ना घर के, हाँ तो घुसे ना ही देते। यही सब पाला है कि चलो भाई कुड्डी उंडी डाई लगाई थे, सब रखवाली कर रहा था, ज्यादा ना ही हो तू।
2: हाँ
3: हाँ
2: तो वल्ली रहू का सूती रहू।
3: हाँ तनिक आँख लग गई रहा है, तो थका लगा है ना कल रहा है।
2: अच्छा कल वहाँ पूजा उजा रहा, भंडारा ठाने रही।
3: हाँ तो है भंडारा का, हर बार भंडारा हो रहा, मंगल मंगल भंडारा होता है।
2: हाँ हाँ मंगलवार जो बड़का मंगलवार पर है।
3: हाँ तो तनिक थका लाग जाते है, दो दिन हुई गए।
2: हाँ
3: हाँ वहाँ तो उल गए तनिक, और का घर में काम है, काम है का करी।
2: तो पल्लवा हम बंद कर दिया है और हम तनी वल्ली जाई।
3: अब तू का है उल्ली हो भाई,
2: हम वल्ली जाई तनी ठंडवा तेज कर दो। और
3: तो पीछे तो अबे सब लाइन लगाए कि बिटिया आई है।
2: हाँ बिटिया तो आई सकत थी, आए जाए।
4: ए चाची, ए चाची
3: देखो अब का कह रहा है।
4: ए चाची पल्लवा जल्दी ला, पानी बहुत तेज प्यास लागे, बहुत तेज धूप सायन है।
2: घमावा से आई ही कुल, देखो मरी जाती।
3: देखो अब आई है, पानी दही ना दियो, इन्हें सब बीमार पड़ जाई हैं,
4: बहुत तेज प्यास लागे जाती।
3: ना ही बहनी धूप से आई, तनी ठंडाई लो। देखो इसिया चलत है ना, बैठो एकदम से आई के धूप से पानी ना ही पिया जात है।
2: हाँ बहनी पूरा ही कही थे।
3: हाँ
2: कही थे और ये बहनी
4: लागे तब क्या करी।
3: अरे अब देत है भाई, ऐसे ना ही पानी बनिया ना पियो, बैठो वे गुड़ दे थे, भेली दे
2: बैठो, मुंह ना बना हुई।
4: ठीक है तो ठंडवा चलाए तो तनी सा ठंडाई जाए।
2: हे चाची ठंडवा
3: तनी चलत है भाई,
2: तनी ठंडवा तेज कह दो। और
3: अच्छा अच्छा तो
2: एक बेनवा तेज कह दो, बेनवा।
3: हाँ ठीक है कह दिया,
2: पंखवा तनी तेज कह दो।
3: हाँ
2: देखो बहनी हमारे कपड़वा झुरा ला।
3: अब देखो इनकी सहेली बहेली आवत हुई है।
2: हाँ और ये क्या, ये चाची वो पतर क्यों आए गई आज।
3: वहां तो कही थे कि तोहरे पीछे तो बस लाइन लगी रही है।
4: तो राम राम चाची।
2: राम राम बहनी, राम राम। कहो हाल बहनी।
4: सब ठीक है चाची, अपन बताओ।
2: हम तो मजे में हन।
4: अच्छा वही आए रहे दीदिया के साथ है।
2: हाँ बहनी तू कैसे सन की मटकी करा तू, ये क्या हुई।
4: तब से कही था चाची इनसे राम राम कह लो तो ये जान ही नहीं पावा थी।
3: शर्मा थी
2: का हुए बहनी, तुहार का नाम है।
4: हाँ दीदी हो चाची।
2: ये तुहार दीदी हो ये।
4: हाँ
2: तो ये जो है क्रिश्चियानी का तू।
4: ना ना चाची पहली बार आए ही ना, तो तनी संकोचार थी।
2: का है बहनी से कुचा थू।
4: कुछ नहीं चाची बस ऐसे ही, मैं आपसे पहली बार मिल रही ना इसलिए।
3: ये कहाँ से आई बहनी।
4: अरे चाची बहरे पढ़े गई रहा।
2: दिल्ली तो आई गई रहा।
4: ना ना चाची।
2: हाँ
4: दिल्ली
2: मैनीताल मैनी।

0: लखनऊआ गई रहा।
1: अच्छा नखलऊआ।
2: नखलऊ
0: दिल्लिया दूर पड़ जाते है ना, तो पापा तनी कहीं तनी पास में पढ़ो तो
2: दिल्ली मैया जो बड़ी गर्मी पड़ी जाते कि बड़ा गर्म हो दिल्ली।
1: और ये चाची जानी एक बतिया ना जानी सब
2: कोरोना फैल गया,
1: कोरोना फिर आएगा कोरोना।
0: बस सही चाची।
2: हाँ
0: न्यूज कहाँ पायो
2: रेडुआ माँ सुनाई दिया रहा समाचार में सुना रहा कि दिल्ली फिर से कोरोना आएगा है, बड़ी चिंता लाग गई। अब देखो हमारे गाँव तक पहुँच जाए
1: बहनी, अब फिर से मुहा बांध लो सब।
2: अब मुहा हुआ
0: का इतनी गर्मी है चाची, वैसे गर्मी सांस फूला करते हैं, चलो मास्क लगाओ।
1: अरे तो कौन चीज बहनी
0: मास्क लगाओ,
2: मास्क कहा जाता है, मुहा मसक्का लगाए लो, मसक्का।
0: अरे जो कहा थे मुहा बांध लियो तो अरे रुबट्टा वट्टा सब बांध देते है लेकिन बढ़िया है इसे दुई और पट्टी लगाते काने मजा लो, बस सिंपल
2: वो है जो पहले
1: मसक्का वा।
2: पहले नहीं गांव गांव में बटा रहा
1: है। हाँ हाँ
2: अस्पतालिया वाले आए रहा
1: हाँ हाँ हाँ हमारे लगे धरा है दुठो।
2: हाँ तो लगा
1: मुंह बंधना, मुंह बंधना
2: भाई तो इतना कुछ नहीं है लेकिन भाई अब अगर ज्यादा फैली
1: हाँ
2: तो एहतियात से हमें रहे पड़ी। हाँ
1: पूरे कहूँ चाची पूरे कहूँ। ए पतरका
3: कहा चाची
1: आज कहे चुपान बैठी हूँ तेरे को बरामी ओरामी है।
3: अरे चाची हमारा मुड़िया पिरात
1: लियो इनके मुड़िया पिराए लाग
2: यही कहे बहनी
3: पता नहीं कहा
1: घमावा में जाए जाए आम तुरत हुई
3: ना चाची दुई चटरे हमारा तोड़ी था लेकिन पता नहीं कहे पिरात
1: ये बहनी पतरका तू त्योरा इनके गये आम चोरावे
3: नहीं नहीं उनके यहाँ ना दूसरे के यहाँ गए
1: अमावा चोराई
2: चोराई है जरूर
0: चाची कत्ती ईमानदार बतावा थी कि गन नहा चोरावे लेकिन चाची ही ना गए
1: यही तवरनिया तुहार
2: करनी
1: बनावत
3: आज लिए तो आई नहीं
1: आज वही नहीं आई आज उनके यहाँ कहूँ ब्याह में गई ही वही।
0: अच्छा चाची पूछी ना शिवानी अर्चना अर्चना कहे
1: कहे नहीं आई
0: चाची उनके सबके इतना गर्मी में तहारत ही।
1: और शिवनिया कहाँ गए
0: वही बताई थे चाची उनका फुर्सत ना है टहरे से और रह गई अब बेड पर।
1: हाँ
2: विराम हो गई है
0: अब उठे एकदम ना ही है उनके
1: लियो लाग गए घाम
0: लू लाग गए चाची
2: लाग गए यहाँ से। तो हम सबसे कहे थे कि देखो अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकल जाओ।
1: लू का होते लू
2: लू लू गरम हवा जो चला था लपट
1: लपटिया घमास घमास
2: गरम हवा।
1: हाँ तो यहाँ तोहरे लाग गवा
3: हमोक लागत है चाची यही लाग
1: तब तू कहे हम सबके चोराओ थी बहनी।
3: अरे वो चटनिया खाते रहो झर्रवा खाते
2: और सुनो अब जब तो के सरा पिरात है दर्द करत है तो के उपचार कही लो इसे नहीं घूमो है आज जो है घरे जायो।
3: हाँ चाची
2: तो खूब मतलब पना वना बना के पियो
3: चाची पिए रहन दवाइयों खाए
2: पियजिया पियजिया बहुत फायदा करे।
1: हाँ यही सतिया में पियजवा खूब खाओ।
2: हाँ पियजिया खाए लो है सिरका विरका हो घर में की
3: हाँ, नहीं है है चाची
2: ना हो तो हम दे
3: नहीं नहीं चाची है
2: सिरकवा प्याज खाए रहो फायदा करो था लूकमा।
1: ये बहनी पियजिया जो होती लूक नहीं लागे देती
0: लेकिन चाची वो हम सिरकवा पिए थे ना तो हमने दतों में लागत है
1: तो हाँ दतवा बेकार है।
0: नहीं चाची बेकार नहीं है
1: तब
2: दातुन किया करो नीमे की निबिया की
1: ये बहनी अगर
0: बहुत देर लागत है चाची
2: तो देर लागत
1: ये बहनी देर के लिए चाची सुनी लो।
2: हाँ
1: देखो जेके दांत के पीरा हुए बहुत पीरा थोए दांत ते एक काम करे थोड़े फिटकरी पनिया में घोर लो।
2: हाँ
1: और वही से कह लो गरारा।
2: हाँ
1: बस दर्दिया जुड़ता है गायब हो जाए
0: तो हमें दर्द ना होते खाली पानी और मतलब बहुत ठंडा या बहुत गर्म ही लागे
1: तो ये बहनी हुए का फेम्फोडिटी। हाँ
0: ये बतावा
1: वही हमारे बगल में कहा रही कि दतवा में यहाँ होएगा है।
3: अरे मतलब सेंसोरिटी प्रॉब्लम होती है।
1: हाँ वही वही यही पूरे कहती बिठी वही फेम्फोडिटी होएगा तू है
0: फेम्फोडिटी
1: यही करो बहनी यह पनिया लेके और मुहा में लिहा रहो तो आरी चिकाई जाई।
2: हाँ तो चलो ये फिट करी तो दतुआ के लिए बहुत बढ़िया मुफीद दवा हो।
1: हाँ
2: अभी का करो पीस लो महीन महीन भूख लो सिला पर और उमा तनिक हल्दी मिलाई लो और तनिक तेल मिलाई लो तनिक नोन मिलाई लो और ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे दातन पे मला करो और सब ये जो ठंडा गरम लागत है ना ये सब ठिकाए जाये।
0: ठीक चाची अब यही कर बे तब ओकरे बाद फिर आइसक्रीम खाइबे गर्मी
2: घरेलू दवा है खर पतवार वाली दवा ही है सब करे
1: जूते डॉक्टर की भागे
2: ना चाहिए डॉक्टर।
1: हाँ
2: पैसा ले तो हाथ दुर्गा
1: बहनी तुरंत भलवाई भोंक दिया था।

0: सुइया
1: सुइया आसान है,
0: सुइया
1: वो है महीनी भोग दिन। अब जाओ तू छटपटाओ।
0: नहीं अब ज्यादा डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में ना पड़ो, घर
1: तो पत्थर का
2: चाची
1: कहूँ झराय ले तू बहनी,
2: कोई मिलता ना चाची।
1: ये देवरनियो झारत थी
2: बामा झारी ना पत्थर जाओ वो लगाए दे
1: लियो
2: उनके डर लागत
3: है। जाओ इतना विश्वास ना है चाची, इतना ना
2: चाची उनके ऊपर विश्वास हमका ना ही है।
1: सुना तू चाची का कहा थी कि पतरकवा कहो आओ नजरिया ना मार दे।
0: पतरक नजरिया लागी कोई का
1: पतरका दूसरे नजर मार दे। अब ये कहा थी तेवराइन हमें आओ नजर मार दे, तेवराइन ये झारत ही वो।
0: अरे वैसी झूठ है झारत झारत।
1: हाँ
0: ले उसे पता नहीं कहा पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ किया गलत फिर फोक दे थे।
1: हाँ।
0: हमें तो लागत है वो सबका ऐसे बहलावत है,
2: यही लिए डर लागत है उनसे ना करेंगे।
0: कोई तो ना कराओ ये झाड़ फूक कुछ नहीं है, और जो दवा होत है गाँव की घर की वो वैदगी करो तनिक सब ठिकाए जा।
1: बहनी द्वार का नाम है
2: संजना शर्मा।
1: संजना शर्मा तो कौन एक अच्छा पढ़ा तू बहनी?
2: मेरा इस बार एमए प्रीवियस है, एमए फर्स्ट ईयर।
1: ई का बहनी होता है?
3: अरे चाची
0: एमए एमए
1: एमए
0: हाँ जानो 15-16।
1: ये चाची अब देख लो हम मैं ना कहे अब कहा तू कि पहले ए बी होते है और कहा तू एम और ये
0: अब ऐसे चला
3: ना। नहीं चाची ए बी के मतलब वो अलग होते ए बी सी डी जो याद किन जाते
1: हाँ।
3: और ई एम ए के मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट।
0: हाँ देखो बहनी बताए कि नहीं बताए
1: मास्टर पटकी है तू है आज।
3: अरे चाची
1: हाँ
3: कैसे तो सुन लेती हूँ चाची महान महान।
0: जानो 14-15 या 15-16 कहा जाता है।
1: बहनी कौन है कच्चा में हूँ 15 में पढ़ती हूँ।
3: अरे हाँ चाची
2: आपकी समझ में वही समझ लीजिए कि 15 में ही पढ़ना है।
0: हाँ 15-16
1: अच्छा 15 में पढ़ती हूँ
0: चाहे 15 समझ लो चाहे
1: सो कहा ना पढ़ी बिटिया
0: बस 16 तक होता है हम सुना जाते
3: हैं। अरे चाची पढ़ाई कभो अंत नहीं है
1: तो ये अतना पढ़ ले ही
3: जान तो
1: पगलाई जाई।
3: नहीं नहीं चाची ज्ञान बढ़ाते पगलाए के जाते पढ़ाई से जे बोर होते ते ही पगलाई हो जाई। हम सब नहीं बोर
1: पगला बहनी हम नहीं हमार जीना लागत है।
2: आप भी अपनी इस उम्र में भी पढ़ाई कर सकती हैं अगर आप
3: जानते हो
2: आप पढ़ाई कर सकती हैं।
1: बहनी हमार जीना लागत है
0: पढ़ाई दो ये हमार बहुत खोपड़ी खा लेती है कुछ बोल नहीं पावत। अगर एक अंग्रेजी हम बोल दिया तो ये समझ लो कि टांग खींच डालती।
1: तो बहनी जब हमारे समझ में ना आई तब इनके हम टंगिया रखी चाप
2: तो आप समझने की कोशिश तो एक बार करिए।
1: बहनी अब देखो अभी उल्टे बोली नहीं कहती कि तू यम ये माँ हो।
2: अरे वो उनको समझाने का आपका एक तरीका है कि वो आपको समझा रही है कि ये होता क्या है।
0: तनी अंग्रेजी तो आवे चाहिए भाई आज चाहे
2: पढ़ेगी तो आपको भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा।
1: अब पढ़ा भाई तो ना बहनी हमारे मूड पिरा
0: दुलारी।
1: हाँ जब छोटा बड़ा देखी तो हमारे मूड पिरा लागत है।
0: सुनो तनिक अंग्रेजी जब बुली हो ना
1: हाँ
0: तो गौवा तो हार जो है और रुतबा बढ़ जाये। सबे कहिए कि देखो ये लोग जौन है इनका जौन ये ग्रुप है बस अंग्रेजी बोला जाता है
1: तो ऊपर धनवा हम मैं सलूट मारी।
0: बिल्कुल मारी जब अंग्रेजी बुली हो तो मारी काहे ना मारी।
1: एक दिन हमसे कहते है दुलारी अपन भैंस लेके चली जाओ नहीं गिराक मारब।
0: तो अब जब तू अंग्रेजी बुली हो ना तो डराए जाये
3: हिम्मत है ना परी चाची।
1: तो बहनी बताओ
0: ना बोली फिर यही बन ना बोली
1: तो अंग्रेजी में हम का बोल दी?
0: अब अंग्रेजी सीख लो जैसे संजना बहनी
3: जैसे तो कुछ बताओ चाची तब हम जवाब बता सके थे। कुछ कहा वो का कहीं ना हमें प्रधान जी
1: कहा रे वो हमें कहीं कि हे दुलारी अपन भैंसिया लेके चली जाओ नहीं तुम्हें बहुत मारब।
0: तो तू कह
3: तो तू
0: पटप
3: और कहीं से कतरे हो जाती
1: पटप
0: सटप सटप
1: सटप
3: माइंड योर लैंग्वेज
1: मांगे लैंग्वेज।
2: सुनिए चाची देखिए मेरी बहन को इतना नॉलेज है
0: धीरे आई समझो।
1: हाँ बोलो
2: हम तो फिलहाल यहाँ रहते नहीं है लेकिन रचना आपको अच्छे से बहुत कुछ समझा देगी और पढ़ा देगी तो आप उससे पढ़ा करिए।
3: चाची एक जुए ना लागत है
1: तो तू थोड़े थोड़े मैं बता अब कही हुए मांगे
3: नहीं माइंड
1: माइंड
3: योर
1: और
3: लैंग्वेज
0: लैंग्वेज लैंग्वेज
1: लैंग्वेज।
3: हाँ अब इकट्ठे बोलो माइंड योर लैंग्वेज
0: माइंड योर लैंग्वेज
1: माइंड और
0: लैंग्वेज
1: लैंग्वेज।
3: हाँ के मतलब हो जानती हूँ कहा चाची।
1: हाँ हाँ
3: जुबान संभाल के बात करो।
1: अच्छा यह है भवा।
3: हाँ वही जो ना सब बोले
0: चलो हमरे साथ।
1: हाँ
0: यहाँ कहो
1: यहाँ हम उनका कही देवे जोर से
0: बस उनका चक्कर आ जाए।
1: हाँ
0: सुन के

0: उनके चक्कर ना आ जाए तो जो हम कहे तो हम हार जाए तो उनके चक्कर आई वो बेहोश जब हुई है तो उनका पानी ना डाले उनके ऊपर।
1: हाँ बिल्कुल नहीं,
0: उनका परा रह दियो इसे
1: चक्कर आ जाई है। हाँ से
0: आए
1: हाँ। संजना बहनी आई है तो एक ठो गनवा हो चाहिए।
0: हाँ इतना हाँ? दूर से नखलाऊ से पढ़ के आई है।
2: हाँ हाँ, अब फिर जाओ। में हम बहुत कुछ सुने हैं कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, हमको भी सुना दीजिए।
1: आपकी गए रहा
0: अब भाई। हाँ।
1: सुनो उमा कहते भंडारा।
0: हाँ
1: भंडारा में एक गाना बड़ा नीक बजत रहा है।
0: कौन?
1: अब हम याद करें हम ढोलकिया उठा तो बजाओ हम गाए नहीं
0: तो ढोलिया कहाँ पर तो ये आवा
1: ए पतरका तरी उपरा चली जाओ ढोलिया ले जाओ। हाँ
0: पतरका।
2: हाँ चाची
0: तई ढोलिया ले बहनी।
2: हाँ हाँ चाची काहे ना ले वे।
0: अब ये चाची तुम्हारे हथवा निकालेगा।
1: अरे हमार हथवा निकाल धका करी करवा हमार कम्बा कौन करे। हाँ
0: नहीं अठाई कहूँ काटे वाटे रे
1: वो तो ठिकाएगा है तभी थोड़ बहुत ठिकाएगा है लेकिन हाँ। चलत है काम कहा करी भाई।
0: चलो दो ये ढुलिया ले आए देखो।
1: हाँ तो हम हनुमान जी का एक गाना सुना। हाँ हमें बड़ा नीक लगा तुम गायो।
0: हाँ
1: ऐसा लागत है कि जैसे एकदम पूरे गाना हो।
0: हाँ
1: तो चलो गाय लिया जा। हाँ?

0: अंदर ये भजन बजत रहा है कि हम का बताई, हमका जुड़ते याद होगा तरी थोर बहुत जो हम याद किया।
1: हाँ।
0: जुड़ते याद होगा कि जो जौन चीज अपने मन का अच्छी लगे।
1: हाँ।
0: तो याद हुई जात है।
2: तो ये बताओ काकी, जहाँ जाई जहाँ देखी हुए का देखी, लेकिन तंबुआ ताने और खैकवा खवावत है।
0: हाँ, तो बड़ा पुण्य होत है।
2: हाँ
3: चाची, नोटिस
2: अब बहुत, हाँ, बहुत गरीब गरीब मने खाते हैं।
0: खाए चाहिए, देखो ये गरीबन के लिए होत
2: हाँ,
0: है।
2: हाँ, हाँ।
0: भंडारा, लेकिन भंडारा मतलब ये नहीं है सभी खाओ,
2: सभी खाओ।
0: तो जैसे हम लोग खाए थे।
2: हाँ।
0: तो चाहे 5 रुपया दे दान।
2: हाँ।
0: देख चाहिए दान।
2: हाँ,
0: भंडारा खाएगी।
2: हमारे एक जनी ही वो कहता है कि जब भंडारा खाओ तो चाहे 5 रुपया दियो।
0: लेकिन देखा तोरनिया आतनी पन्नी लेके गई, अब कहूँ कहा कि हमका चट्ठो पूरी दे दो कोई। अरे अब सबका खावावत है तो मांगे ना चाहिए।
2: नहीं नहीं,
0: और जो जे ना दे तो गरियाए देते।
2: हाँ,
0: ये बुरी बात है,
2: ये तो बहुत गलत है।
3: तो चाची मैं जान लो पाप करत थी,
0: बहुत पाप कमावत थी।
2: और का ये कुल ना ही करे चाहिए, समय बिल्ली बांट के खाई लो।
0: बट जहाँ हम सुनी है ना, गए हम कहीं किला बुलाए, नहीं तो चिल्ला चिल्ला उठ बचाए रही।
2: हाँ।
0: अरे पन्निया लाओ रे, अरे पन्निया लाओ रे, खनवा ले आए, आज खनवा ना बनी घर में।
2: अरे मोरी
3: मगियार कुल जान जाए चाची की आज इनके ये खाना ना बनी,
0: खाना ना बनी, सब मांग ली है, चार जगह मांगे जाओ, कितना बुरा,
2: बहुत बुरा लागत है।
0: अब ऐसे जाओ भाई, बैठ के खा लो एक आध पूरी।
2: तो हमारे संघरिया एक जनी कलिया रही ना काकी,
0: तू ज्यादा खा ले रहो।
2: अरे ना कहो चाची, जोन हमारे बगदार रहा। तो कलिया हमारे साथ एक जनी बाजारे में रही, एक जगह सुंदरकांड होत रहा, हम हूँ चली गए इनकी बैठ रहा, कुछ सुनी ले कर हम पर जाए। तब जब निकरन तब देखें का कि हनुमान जी के मंदिरिया पर यहाँ कढ़ी और चावल।
0: हाँ, ये बढ़िया।
2: तो वे कहा कि एक दू जनी तो कढ़ी चावल खा ली दोनों, ले ले अब एक जनी डब्बा भर के धैली। और कहीं रास्ता में हमसे हम कह की बड़ा सामान धरी डब्बा, कहीं एका लेके जाई थे, अब घर का ये गए है गांव के, यहाँ ये खाए के ही है और अपना हम खा लिए हैं। अब लड़के उनका यहाँ चावल डाल दे भी है, कढ़ी चौरवा खवा दे।
0: अब तो कढ़ी चावल का नाम लियो ना, हमार भूख जाग गई है।
2: अरे दादा हो।
0: हाँ, हमार मन करत है कि कढ़ी चावल खाए।
3: चाची तो नींद आवत।
2: हमने तो बहनी हम सकरवे उठे ने 4 बजे टहल करे गए, ओकरे बाद फिर कमाम बाज ही रहे।
0: और सुनो, एक नई तरीका की हम कढ़ी सीखे हैं।
2: वो कस गए
0: भंडरवा गए रहा ना।
3: चाची चाची चाची, पहले खवा दो फिर बताओ।
0: अरे खा लियो, पहले सुन लियो।
2: सुन ले पहले।
0: हाँ,
2: हमेशा बुखार रहा
3: चाची।
2: हाँ,
0: देखो वो गए भंडारा में।
2: हाँ।
0: तो वो कढ़ी चावल रहा है।
2: हाँ।
0: और कढ़ी अब तू सोचो काहे की रही हुई, हम लोग तो फुलौरी उलौरी
2: बनाए। हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो फुलौरी ना ही रहा है वो कढ़ी।
2: हाँ।
0: वो कढ़ी रहा है पापड़ की।
2: हाँ,
0: हाँ। पापड़ जो भुना जात है।
2: हाँ, हाँ, मुंगवा का है,
0: उर्दवा वाला, मुंगवा वाला पापड़ होत है।
2: वाह, के कसके कढ़ी
0: का इतनी नीक कढ़ी लागे।
2: ए मेरी मैया, कसकर हो
3: हमें ना बताए चाची, अकेले चली गए इतना नया चीज।
0: अरे हमें लग गए तुहार लोटन चाचा कहीं की, चलो हमार दोस्त किया आज भंडारा है।
2: हाँ।
0: और चलो हुआ खाए तो हम कहा चलो देखा जाए। अरे तो अतनी
2: बताओ की कसके पापड़ बाग बनाए रही।
0: अब ये हम ना जाने थे कि हमें लगा कि पापड़ भून करके और जो है कढ़ी बनाए दी है, कढ़ी बनाए दूध दूध गई थे दही।
2: हाँ।
0: और बेसन का घोल रहा था।
2: हाँ।
0: गुजमा लगा थे भूज भूज के पापड़ डाल देना है।
2: तो पापड़वा खड़ा है, खड़ा
3: मुलायम
0: बूंदियों पड़ी रहा है, कहूँ कहूँ बूंदी पड़ी रहा है, पापड़ पड़े रहा है, इतनी नीक कढ़ी की का बताई हम।
3: तो चाची वो जब पापड़वा मन डाले तो पापड़वा तो गील होएगा, हुए तो कैसे।
0: तो बहुत नीक लागत रहा वहा, तो नीक लागत रहा है गील गील
3: जैसे दाल में रोटी ना,
0: बहुत बढ़िया लागत रहा है।
2: अमन फुलौरी उलौरी नहीं रहा है,
0: फुलौरी नहीं रहा है, कहूँ कहूँ बूंदी पड़ी रहा है।
2: अच्छा, बूंदिया रहा है,
0: बूंदिया रहा है और पपड़वा रहा है, तभी नेक कढ़ी बनाई रहा है सबे।
2: हाँ।
0: मन करे की लाओ इनसे पूछ ले दादा कैसे बनाया,
2: कैसे बनाया हो। हाँ।
0: लेकिन
2: पूछ लेती हूँ।
0: अरे लोटन चाचा तो जानती हूँ ना।
2: हाँ।
0: कहा तुझे खाए से मतलब है कि तो हुआ रेसिपी पूछे चली गई हो कि कस बनत है।
2: तो कह दे तू की बनाई तो तू ना खवाई भाई।
0: अरे तब का करीब उनके सामने हमारे कहाँ चलत है तो जनते।
3: हाँ चाची, फिर कहूँ कहूँ चाची चुप्पो रही लेती, नहीं तो घरम तो चाची। हाँ। एक चलते।

0: गरबा तो चला था लेकिन बाहर जो था फिर हम चुप पे रही थे कि अब नहीं
1: इज्जतिया ना बिलाए जाए।
0: हाँ,
1: इज्जतिया ना बिलाए जाए।
0: एक का सुना है अब तो हाँ। तो चलो आज हम ट्राई किया है
1: हाँ।
0: तो बनाए बताए दाई रहा
1: हाँ।
0: वहाँ कढ़ीवा हम बनाए के रखा है
1: ये बहनी रचना कहीं ठंडवा चला दो मार्डर बहु में गर्मी में बहनी
2: ठीक है मदद कर दी परोस के ले आई खाना।
0: तो जाओ आज हम पापड़ वाली कढ़ी बनावा है और चलो बैठ के खावा जाए।
1: हाँ चलो खावा चलो बीरेक मार दो
0: हाँ एक ठो ले लो बीरेक
1: हाँ ठीक है।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: भाई बहुत नीक रहा जो ने परसदवा जो खवायू है।
2: ये परसदवा ना ही हम कापी किया है, कापी कापी जाना तो
1: नहीं
2: खाई के आए रहन क्या असर है, मतलब कढ़िया ऐसे बनी हुई है।
1: हाँ
2: मैं सोच के फिर हमऊ बनावा।
1: बहुत बढ़िया, बहुत नीक बनाये हुए।
2: हाँ पापड़ वाली कढ़ी
1: बहुत चटपट बनाई हुए, बहुत चटपटा।
2: तो
1: जब हमारी चटपटी चाची है
2: तो चटपटा
1: बनाई नहीं, बहुत नीक लाग हमें चाची।
2: हाँ तो आज चाचा को बढ़िया लगा कहे कि आज कढ़ी तो
3: उनका तो चाची सब चीजें अच्छा लागत हुई। हम लोग साथ लेके बताई थे।
1: हाँ अरे अब चाचा हुए वो लोटन चाचा हुए उनका कहे ना नीक लगी, कुछ बना के देते हैं चाची तो उन्हें नीक लगी।
2: अब असना ही है कब्बो कब्बो तो इतना बगदा जाते है की
1: हाँ
2: कहते ही ना तो तुहार बस खाली नौटंकी में तुहार मन लागत है।
1: हाँ
2: दुलारी खुआई जाओ बस नौटंकी तो हर लोगन की चालू हो जाए वह मन लागत है, खिलवा मन नहीं लागत है।
1: अब दिया खिलो हम मैं अब जो है तू है लड़ाई में बाझा रहा था
2: जानी था ना।
1: हाँ
2: तो चलो पक्का दो ना हमें का करे
1: खे तो अदतिये है बोले वाली। और
2: तो मटरू की यहाँ शादी भाई है वो दुल्हन आई है ना विदा हुई के
1: मटरू की हाथ ब्याह हुई गवाना लड़कवा क्या।
2: अरे हुआ नहीं रहा है अब तो दूसरी बात।
1: अच्छा गवाना भाई
2: आई है
1: गवनवा भाव हुई। हाँ।
2: अब तू तो कहने पहुँची रहा उनके यहाँ।
1: हम नहीं पहुँचे ना चाची हमारे
3: हम गए ना
1: बहुत
3: चाची।
1: रहा।
2: अच्छा पतोहिया कितना बढ़िया गनवा गाइस रहा है।
3: अरे चाची बढ़िया कि अरे तनी सा और मतलब ऊपर गई थी तो ससुरा गुस्सा ही जा जुन का हाथ रही
1: चाची कान
2: इतना बढ़िया गावत है
1: गवनवा के हमारे गनवा दुई लेनी आई आ दावत है।
2: देखो
3: ये रचना हम क्या रहा चाची हमें कुल याद
1: गाँव गाँव गाँव
2: एक सौ
1: याद है।
2: तो
1: हो तू याद है।

0: कौन गाय सतनी गाय दो तो बहनी
1: अगवा तो ना आया ना चाची का याद है जोन महिना गाय रही
0: हाँ।
1: नहीं कि उनके जोन बहुआ आई रही
0: हाँ।
1: वो याद है
2: मटर रूप पतोहिया जोन गाय से
0: गाँव गाँव
1: वही काका पतोहिया
0: गाँव गाँव गाँव

0: जाने ना चाची। हाँ। एक जनी रही, मतलब गौवे के रही, कोई हम नौवा ना जाने थे, उन्हें चाची रही, वह कहे न पतोहवा से कि अरे नहीं नहीं आए हूँ तो तनी कुछ गाय सुनो। अब बताओ चाची, उन्हें कुछ भाव भजन गाय देख चाहिए, और एक का गाय दी ना सब ससुराल वाले के मुंह बनी गए।
1: खूब हंसी लेकिन हम में भाई नीक लगा, मजा कर रही है, गाना तो गाना हो
0: है। चाची अगर ऐसे मन भाव देखा जाए,
2: ससुराल वाले को चेतावनी दे रही थी
1: और
2: मेरी कदर करना।
1: बहुत बढ़िया भाई, तो बहुत नई पतोहिया पाए गए हैं। और एक और कोनो गाना गाइस रहा याद नहीं आवत है, ए रचना तू तो रहा हुआ, एक और गाना गाइस रहा है बहुत नीक।
0: हाँ चाची,
1: हाँ हमें याद आ

0: अतना नीक नीक गावत रही।
1: हाँ। कहूँ तो पेंसिल वेंसिल ना लिया लिख डारो,
0: अब पेंसिल लेके कौन घर जावा जाता है।
1: अरे डालिन करो झोरावा में, इतना बड़ा झोरा लिया चली जाती हूँ
0: तब। अब हमें का पता कि वो बढ़िया बढ़िया
1: बड़ा नीक गाइस रहा।
2: एक ठू आओ चाची हमारे याद है, लेकिन ऊ ना गाइस रहा जानते हो कैसे थोड़ा। एक ठू चाची गौनो है मैया बहनिया ना लेके आवत थी कुंडली, वो अपन एक ठू बड़ी बहन लेके आई रहा। ओके बड़े पापा बिटिया रही तो वह गाइस रहा एक ठू गाना चाची।
0: कनवा उनके बड़े
1: याद है।
2: हाँ चाची
1: याद है,
2: तोहे से तो सब सीखे है ना, के चक्कर सुनी तो सब याद हो जाते।
1: तो सुना दो गाय दो।

0: धूम धड़ाका से
1: और चाची पूरे शादी में हमें सबसे अच्छा फंक्शन यही लागत है जो भात वाला होता है कि मनावत थी बहु लोग के सब मुंह देखा थे और बहु लोग का नया नया टास्क दिया जाते है
0: करो पूछा थे बहनी खाना बना ली थी तो वो धीरे से हाँ बना ली बहनी गनौर हो आवत है कि नहीं आवत है अब बेचारो नहीं आवत तो फंस जाती अब ऐसे नहीं कहे चाहे कि हाँ सब कुछ दे दो कि हाँ यहाँ सुनाई दो वहाँ सुनाई दो
1: कोनो कोनो चाची खुपेचिन होती
0: कोनो कोनो
1: जान बुझ के ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि बेचारे घबराए जाए
0: तो देखो भाई चाहे पतोहिया हो चाहे बिटिया हो एक समान समझे के चाहिए है ना
2: हाँ सबके समझे चाहिए
0: अभी ना कि पतोहिया आए कि उनके मतलब इज्जत ले लो
2: और का
0: लेकिन अपने गवा में सब ज्यादा जैसा होते राय जैसे लोग पहुंच जाए तो जान लो हुआ
2: अरे छीछा लेदर हो जाए हाँ छीछा लेदर हुआ हो जाए कहीं समझ लो लेकिन अब कहाँ कहाँ जाए भैया कुछ कहाँ नहीं जा सकत है अब जो होता है तो भैया देखा भाई पड़ी
0: तो वहाँ चलन है तब कहा किया जाए समाज हो तो
2: हाँ हाँ
0: इस समाज का एक अंग हो
2: हाँ
0: कोनो अच्छा है
2: तो कोनो बुरा है
0: हाँ तो भाई बहुत आज मजा आवा है
2: बड़ा चाची सबके साथ है बड़ा मजा आवा
1: सुन के हम थोड़े घबराए गए हैं हमारे सवाल के जवाब दे दो
2: कौन सा वादिया हो
1: अगर कोई हमसे गावे कह दी तो गाना तो आवत है
2: हाँ
1: अगर कोई कुछ मतलब डेकोरेशन वेकोरेशन वाला कुछ पूछी कि का कह लेती हूँ तो जवाब आवत है लेकिन अच्छा। अगर कोई कहे कि खाना कैसे बनावे है
2: हाँ।
1: तो हमने बहुत दिक्कत हो जाए चाची हम कहा बताए हमें कुछ ना आवत है
2: अरे सिखाई दीन जाई इतना ना परेशान हो सब सिखाई दीन जाई
1: पर हमें मन ही ना लगे तो चाची आज आप बताओ
0: जो खाना वाना बनावे ढंग होता है ना ये एक हिस्सा हो जीवन का और जिका खाना नहीं बनाओ का तो कर समझो कुछ नहीं आओ
2: हाँ तो सीख लो हाँ। मारी जाबो जहाँ जाबो तहाँ
0: कल के दिन दूसरे घरे जाइयो तो खाना तो बनावे पड़ी
2: और का देखो हमारे समय सब बनाई ले थे
1: तो चाची वैसे तो हम रोज कॉलेज जाए थे तो संडे का आई आपके यहाँ खाना बनाए सीखे
0: अब देखो आज हम तुका कढ़ी सिखावा की नहीं सिखावा
2: हाँ बहु पपड़ा के पापड़ की कड़ी
0: पापड़ वाली कड़ी खायो कि नहीं खायो
1: खाए हाँ। चाची
0: कैसे बस सीख जाइए हो धीरे धीरे आए परेशान हो जरूरत नहीं है जब तक तुहार बिहार ठिकाई तब तक तू बहुत कुछ सीख जाइयो
2: हाँ और का जब तक तुहार बिहार हुआ और ठानी तब तक सीख लो
1: यही तो चटपटी चाची ने क्या जवाब देवे
2: चटपटी चाची है पारंगत कही दे
1: हमको भी सिखा दीजिएगा हमको भी सीख
2: यही पिटी वक्त सिखा दियो नखलऊ से आई है
0: हाँ तो नखलऊ से आई हम कब कहे थे कि दिल्ली से आई है
2: हाँ अब दिल्ली जाई हो
1: चाची हम सिखाई दी
0: सदिया दिया है का दिल्ली में
1: नहीं चाची अभी कहाँ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं आप भी ऐसी बात कह देती हैं
0: जाए तो पढ़बे करी बहनी जब लड़की जन्म पाए हो तो कहो न कहो तो जाए पढ़िए
2: और का जाए तो पढ़बे करी तब चला जाए घरे हम लोग
0: हाँ तो
2: है ना बहुत देर होगा बहुत देर से हमारे लोग जो है
0: कह दो अपने श्रोताओं से कि अब भाई अब
2: हाँ भैया चले टाइम होगा फिर मिल पाए हाँ तो ये जो है 89.6 FM गुना शहर की धड़कन
0: तो इसके साथ सबका हम राम राम बोली
2: राम राम
1: राम राम राम राम
3: मैंने कटा

0: मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है लंदन से। मैं उसकी शादी में आई हूँ।
1: और तुम?
2: उसकी शादी मुझसे हो रही है।
0: What?
2: ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया? और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
0: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, remember?
2: ब्रेकअप? अभी तीन दिन पहले तक तो तुम मुझे बड़े सेंटी एसएमएस भेज रही थी, I miss you वाले।
0: तुमने रिप्लाई किया? नहीं ना, बस I got over you.
2: Got over you? तीन दिन में got over you?
0: See, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। We're free. So let's just enjoy ourselves, okay?
3: Bia, come. Let's this.
0: Come on.
3: Bia,
2: नाम भी बदल लिया?
3: भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? डांसिंग भाई साहब डांसिंग। आओ ना, लोनली लोनली करो।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-1-0-9-4-0-0।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन्स पर।

0: के इस सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे इस संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में, क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है, और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है, लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। पुरानी गीतों की बहार लिए मैं मनु उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जी हाँ, तो जब उसकी मेहरबानी मिल जाती है तो सब कुछ अपने आप संभव सा लगने लगता है, लगता है कि जो असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। किसी राइटर ने कहा था कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। और किसी ने ये भी कहा कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आप छोटे छोटे बच्चों में ईश्वर को देख सकते हैं। कभी राजेश रेड्डी ने कहा कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो जो छोटे बच्चों की ज़िंदगी होती है साहब, वास्तव में बहुत ही निर्दोष, छल कपट से रहित और एक अच्छी ज़िंदगी। हम अगर असली इंसान देखना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमको कैसा बनाकर भेजा, तो बच्चे के अंदर देखें। अगर आप उसको चार चॉकलेट देंगे और उसको अगर दो की भूख है तो वो दो ही लेगा, संचय करने की आवश्यकता नहीं होती। और हम बड़े लोगों में इकट्ठा करने की भावना आ जाती है, जागृत होती है। जी हाँ, हम ऐसा तोशुर जुड़ी हुई हैं भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार करते हैं आपको। और फिर भाई कुछ परेशानी है, किसी ने ब्लॉक कर दिया, भाई ये कौन है जो ब्लॉक कर रहा है भाई, हमको तो पता नहीं। धीरेंद्र जी हैं, हेलो जी, हाँ धीरेंद्र जी नमस्कार करते हैं आपको। और जी जी बिल्कुल सही कहा आपने भाई, गुस्सा आपका जायज़ है और इसकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। और आकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं भाई, आपको भी शुभ संध्या। और चलिए छोटे बच्चों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं क्या खूबसूरत हस्ती है उन प्यारे प्यारे बच्चों की जिन्हें भगवान ने इस दुनिया में बनाया, हमें ऐसे ही बनाया, हम आकर कैसे हो गए, देखते हैं इस प्यारे से गीत के माध्यम से।

0: हाँ, बच्चों से तो किसी को ईर्ष्या हो ही नहीं सकती, वे ईश्वर के वरदान होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप माने तो ईश्वर कहीं ना कहीं और नहीं बसता, बल्कि वो बच्चों की मुस्कान में रहता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं, तो माता पिता को ये होता है कि क्या कहें। अपने बच्चे को कई नामों से पुकारा जाता है, भाई कई सारे नामों से हम अपने बच्चों को पुकारते हैं, आप भी पुकारते होंगे। और बच्चों को कभी चांद कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। चलिए हम देखते हैं, हम भी आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत, और देखिए हमने इसमें बच्चों को क्या कह के पुकारा है, क्या आपने भी पुकारा है। गौर कीजिएगा और फिर बताइएगा।
1: सुपरहिट गाने

जी गंगाराम, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो शक्तिमान जो सीरियल आता था उसमें मुकेश खन्ना हूबहू गंगाराम के रोल में रहते थे। फिल्म पहचान में जिस प्रकार की वेशभूषा मनोज कुमार की है, ठीक वही वेशभूषा शक्तिमान में मुकेश खन्ना की है। गंगाराम की समझ में ना आया तो भाई बच्चे छोटे हो गए, फिर हमने उनको नाम दे दिया, सूरज कहा, चंदा कहा, और उसके पश्चात अब चिंता होती है कि भाई उनका विवाह हो जाए। अच्छा, विवाह होने के पश्चात फिर एक समस्या खड़ी होती है, अब शादी हो गई तो बच्चा अपने दम पर कमाए, यानी हम जन्म से चले और शादी की बात आई, और जब शादी होती है तो शादी में नाच गाना होता है, और नाच गाना होता है तो हमको लगता है कि अगर हम अपनी संस्कृति की ओर बढ़ें तो शायद राधिका से अच्छा नृत्य शायद ही किसी ने किया हो। चलिए अब संगीत से बढ़ते हैं नृत्य की ओर, और नृत्य के बाद फिर बढ़ेंगे इस ओर कि आखिर में पैसा कहाँ से आए, घर कहाँ से चले, आवश्यक है वो भी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। ज़िंदगी साहब एक मुकाम पर आती है, इंसान की ज़िंदगी में खुशी, प्रसन्नता, दुख, ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है जहाँ पर न इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और न बहुत दुखी होता है, वो ज़िंदगी भी होती है। नहीं टेके अभी घुटने, नहीं टेके अभी घुटने, ज़रा सी आस बाकी है, नहीं टेके अभी घुटने, ज़रा सी आस बाकी है, धड़कता दिल है धीरे से, ज़रा सी सांस बाकी है, समंदर लाख है गहरा, समंदर लाख है गहरा, मेरी कश्ती भी है टूटी, टिकी साहिल पे हैं आँखें, मेरा विश्वास बाकी है। जी हाँ, विश्वास बाकी है। और आइए अब आपको ले चलते हैं, जी राधा जी, माँ राधा नृत्य कर रही हैं, और कहाँ, मधुबन में। जी हाँ, देखिए शायद ये रफ़ी जी ने जितने भी गीत गाए उन सब में बहुत ही क्लासिकल गीत ये माना जाता है, और इस गीत को सुनेंगे आप तो लगेगा कि इस गीत को शायद गाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वो लोग, उन लोगों के लिए जो लोग रियाज नहीं करते, जो अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो आसान है, लेकिन रियाज किए बिना इस गीत को गा पाना शायद थोड़ा सा असंभव होता है। सुनकर बताइए आपको कैसा लगा।

और भाई इसी बीच हमारे साथ क्लासिकल सिंगर के बहुत अच्छे जो श्रोता हैं श्री अनिल शास्त्री जी, वो जुड़ गए हैं और निसंदेह इन क्लासिकल गीतों का आनंद ले रहे होंगे।

जी, मतलब ऐसे गीत, मधुबन में राधिका नाचे रे, लागा चुनरी में धाग, छुड़ाऊं कैसे। इस क्रम में मेरे पास एक गीत और भी है, वो भी आपको सुनाएंगे। कैसा दरिया है कि प्यासा तो न मरने देगा, कैसा दरिया है कि प्यासा तो न मरने देगा, अपनी गहराई का अंदाजा न करने देगा, खाके पाहो मिलो जिससे मिल फिर देखो, इस बुलंदी से तुम्हें कौन उतरने देगा। डूब जाने को जो तस्वीर समझ बैठे हो, डूब जाने को जो तस्वीर समझ बैठे हो, ऐसे लोगों में मुझे कौन उभरने देगा। और अंत की पंक्तियां जिनके लिए पूरी गजल कही कि सबसे जीती भी रही सबसे चहेती भी रहे, सबसे जीती भी रहे सबसे चहेती भी रहे, जिंदगी ऐसे तुझे कौन गुजरने देगा। जी हाँ, तो ये जीवन है। अगर आप सबसे जीत कर और फिर ये चाहते हैं कि सबसे चहेते बने रहें, तो मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है मेरा अनुभव कुछ सही न रहा हो, लेकिन जिन लोगों को कामयाबी ज़्यादा मिलती है उनके दुश्मन थोड़े से उतने बढ़ जाते हैं। तो सबके चहेते रहना और सबसे जीतते रहना, ये दोनों काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। जी हाँ, अनिल शास्त्री जी प्रणाम करते हैं आपको, कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। अमरेश शुक्ला जी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े हमको सपनों के शहर में, जी हाँ बिल्कुल। और रोशनी जी कुछ नाराज़ सी हैं, और फिर इसके पश्चात भाई अमरेश शुक्ला जी हैं, क्या बात है मनु जी, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, क्या बात है। ओल्ड सॉन्ग कलेक्शन अमरेश ने कहा, जी हाँ ओके। और फिर टाटा ये चाय की बात कर रहे हैं, और तान्या जी हैं, गुड इवनिंग सर, जी हाँ। और जुगल किशोर वर्मा जी सुनते हैं एमपी से, आरजे मनु सर शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। जी हाँ, तो क्लासिकल हमने आपको गीत सुनाए, और एक गीत मेरे जहन में और आता है क्लासिकल, और जब मैंने आपको दो सुना दिए हैं तो मन करता है एक और सुना दूँ, क्योंकि उसको सुनाए बिना ये दोनों हल्के से अधूरे रहते हैं। अब आप सुनकर बताइए कि हमारी ये क्लासिकल सॉन्ग्स की तीनों पसंद कैसी रही। क्लासिकल गीत की बात अगर आज मैं आज कर रहे थे, तो हमने तीन क्लासिकल गीत चुने थे आज के लिए, और दो आपको सुना चुके हैं, तीसरा आपको चलते हैं सुनाने। जी हाँ, सुनते रहिए, और रेडियो गण स्टेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा शास्त्रीय गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, और अब वो घड़ी आ गई भाई जिस घड़ी की प्रतीक्षा आपको है। जी, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं। प्रारंभ आपका दूरभाष क्रमांक वही है 6393316429 6393316429 6393316429। आपको जो सुनना हो वो कह डालिए और हम आपको सुना देंगे। फिलहाल आज की पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की, जो हमको सुनती हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और दूसरा गीत हमारे पास पहुंचा है अनु जी का बेलसर से, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। आइए शुरू करते हैं फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम। पहला गीत आशु मिश्रा जी लखनऊ की फरमाइश पर।

जी हाँ मित्रों, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत आभार। कुछ नेटवर्क का इशू था, सर्वर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हो गया, लेकिन अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब आपके गीत बजेंगे। फिलहाल आशु मिश्रा जी का गीत बज चुका था, थोड़ा सा रह गया था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अनु जी का गीत बज रहा है, तुमसे कितना प्यार है, और उसके बाद हम राजेश सिंह की तरफ जाएंगे। जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए, ये आपका शो है और आपकी फरमाइश है, फरमाइश पूरी होगी, लेकिन अगर कुछ तकनीकी खराबी आ जाए तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और ये परीक्षा होती है, ये समय होता है हमारे और आपके धैर्य का। आपने भी धैर्य बनाए रखा, हमने भी धैर्य बनाए रखा, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आनंद उठाइए गीतों का और आनंद उठाइए रेडियो कंसली 89.6 FM में, और अपने सभी श्रोताओं को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल, और एक बार पुनः नेटवर्क की समस्या के लिए आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी। फिलहाल ये पैसा

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई हमारी अगली फरमाइश है हमारे बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता श्री राजेश सिंह जी, जो हमको सुनते हैं मालवीय नगर से, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, बहुत ही प्यारा और दर्द भरा गीत ये श्री राजेश सिंह जी की।

जी हाँ, अगली फरमाइश हमारे पास है श्रीमती शशि सिंह जी की। इनके हाथ में जादू है भाई, और गाने के बोल हैं, गालो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो, कौन जाने कब कोई साथी छूट जाए।

गालो मुस्कुरालो महफिलें सजा लो। अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही क्लासिकल सिंगर की तरफ, हमारे बहुत ही क्लासिकल श्रोता श्री अनिल शास्त्री जी हमको सुनते हैं गोरखपुर से। अब क्या मिसाल दूँ तुम्हारे सब, आपकी बहुत ही प्यारा सा गीत ये गोरखपुर।

0: जी हाँ, और अब चलते हैं भाई जिनकी आवाज में बहुत अजीब सी खनक है, क्या शानदार तरीके से गाते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता है मुमताज अंसारी जी। फरमाइश है, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। वाह, कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जब आप सुनिए तो लगता है कि ओ सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। और लीजिए आपको सुनाते हैं।
1: मैं उसको कह दूं अभी जाऊं

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता और पुरानी गीतों के जानकार श्री राजू सलमानी जी की तरफ। और हुजूर की फरमाइश है, मेरा नाम है चमेली। हालांकि इनका नाम राजू सलमानी है, लेकिन आज फिलहाल ये चमेली हैं और आई हैं बीकानेर से। देखिए क्या गजब गाते हैं।

से। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत। और भाई राजू सलमानी जी को बहुत दिल से शुक्रिया कि इतना प्यारा गीत बहुत दिनों के बाद हमने सुना। आप चलते हैं हमारे बहुत ही मासूम श्रोता इम्तियाज जी की तरफ, और उनकी फरमाइश भी उन्हीं की तरह बढ़ित ही मासूम रहती है, हम सभी इंजॉय करते हैं। आइए चलते हैं, इम्तियाज जी की फरमाइश है, हवा हवाई।

0: एम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों को है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
3: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
3: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, ये गीत हमने एंजॉय किया मोहम्मद मुसीब जी की फरमाइश पर, और अब हम गीत एंजॉय कर रहे हैं मुस्तफ़ा सऊदी जी की फरमाइश पर, खिली खिली धूप हो जवां जवां शाम हो, और इसके बाद चलेंगे मोहिनी तिवारी जी की तरफ, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, बहुत ही प्यारा गीत ये मोहिनी तिवारी जी की फरमाइश।

जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने एंजॉय किया। अब चलते हैं भाई, बढ़ते हैं नेहा जी की जो गुरु हैं, यानी गुरु माता हैं। बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने भेजा है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। फिल्म मुगले आजम का ये प्यारी सी कव्वाली है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कव्वाली को यहाँ पर लाने के लिए।

जी हाँ, हम भी देखेंगे। और फिलहाल हमने देखा अचानक चैट बॉक्स की तरफ, तो दो सुपर स्टार हमारे साथ मौजूद हैं भाई, प्रबल मिश्रा जी और इट्स कुमार जी। आप दोनों को शुभ संध्या। आप दोनों का बहुत बहुत अच्छा शुभागमन हुआ, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे पास एक घंटे हैं, इसका मतलब बाहर एक गज़ल में आज मेरे साथ प्रबल जी का और इट्स कुमार जी दोनों का साथ रहने वाला है। और अब चलते हैं, राकेश वर्मा जी की फरमाइश है, अरे मेरे दोस्त लौट के आ जाओ। इसके बाद आखिरी फरमाइश है आज की दर्द कुमार की, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
10: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश लेट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, और आज जिस शख्सियत को आपके बीच लेकर आए हैं वो एक शायरा है, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उनके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, और नाम है अना देहलवी। फिलहाल हमारे चैट बॉक्स में बहुत से लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। कद्रदान बहुत देखे हैं जमाने में संगीत के, बेहतर संगीत हो तो आप प्रोग्राम का समय भी नहीं देखते, क्या बात है। इंट्री बहुत शानदार मारी आपने इस कुमार जी, आपका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और रोशू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भाई क्या बात है। थानेदार तब तक थानेदार है जब तक अपराधी एक है, यहाँ पूरी दुनिया ही अपराधी गर बन गई तो थानेदार कहेगा, क्या बात है भाई। सविता शास्त्री जी शुभ संध्या सर जी, प्रणाम करते हैं चरण स्पर्श, कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगी। और तान्या गुप्त

गोंडा से हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। और अनिल शास्त्री जी, अरे दादा चरण स्पर्श, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, था कौन कल में जो बदल गया, आज कल में ढल गया। क्या बात है, सही बात। बड़े बड़े पैमाने थे सारे ही हमारे थे, बात थी राजगारों की, सजा की कतार में सारे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आज लिखते हैं जी, आप बिल्कुल लिखिए, वाओ नाइस लाइन। और हाँ दीदार तेरा भी मेरी भी सुबह हो जाए, यूं हर रोज सूरज से पहले कौन जगे। उद्दालक शर्मा जी ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देशु जी लिखते हैं कि मेरी चाहत है मेरी आंखों से बयां होती है, तुम दूर रहकर भी मेरी रूह में रवा होते हो, तुम्हें जब जब देखती हूँ मन करता है आंखों से, तुम मेरी मोहब्बत में हर पल जवान होते हो। क्या बात है जी जी जी। बदला था वो बादल भी धरा भी जब थी व्याकुल, पक्षी थे जब प्यास में आकुल, बस गई थी तब मुश्किल, जब एक इंसान बदला तो किसी ने जीवन बना तन्हा और मुश्किल। क्या बात है भाई, वाह एक्स कुमार जी। उद्दालक शर्मा जी हैं, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार आपको भी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं भाई, आदाब है आपको जी। अब बढ़ते हैं अना देहलवी साहिबा की तरफ। जब कभी हुस्न की पाकीजा कहानी लिखना, पाकीजा मतलब पवित्र पवित्र, जब कभी हुस्न की पाकीजा कहानी लिखना, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना। अना देहलवी है, यही तो हिंदुस्तान है साहब, इसी हिंदुस्तान को समझना है हमको। जब कभी हुस्न की पाकीजा कहानी लिखना, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, उस घड़ी बैठ के अंजामे जवानी लिखना। मतलब फूल मुरझाया लेकिन कभी वो खिला रहा होगा एकदम से, उस समय उस तरह सुंदर कोई नहीं रहा होगा लेकिन मुरझाता है। यही एक कमी है दुनिया में साहब। कहा जाता है विकसते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। यहाँ किसी कहानी की शुरुआत ही उसके अंत का प्रतीक होती है। क्या करें साहब, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, जब फूल को मुरझाते हुए देखिएगा, उस घड़ी बैठ के अंजामे जवानी लिखना। आप सोचिएगा कि कभी आपकी भी यही स्थिति थी। जिंदगी जिसके तसव्वुर से संवर जाती है, तसव्वुर मतलब ध्यान करना, जिंदगी जिसके तसव्वुर से संवर जाती है, मेरे हिस्से में वही शाम सुहानी लिखना। अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ, अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ, किस तरह खोई बुजुर्गों की कहानी लिखना। क्या बात है, जब सियासत की बात आई तो मेरे मस्तिष्क में पंक्तियाँ आईं कि क्यों करवाते हो ये दंगे, रहने दो देश में गंगा बहती है तो बहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, रंगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण तिरंगा हो तो शायद हिंदुस्तान और खूबसूरत हो सकता है। अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ, किस तरह खोई बुजुर्गों की निशानी लिखना। इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, अपना हर किस्सा ए गम अपनी जबानी लिखना। जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में अना, अना नाम है उनका, जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में अना, इस कलम से कोई तारीख पुरानी लिखना। जी बहुत ही आसान लफ्जियात में जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूती हुई उनकी गज़ल निकलती है और यही उनकी खूबसूरती है। हाँ आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, एक गज़ल सुनाई थी आपको मुकेश कुमार की आवाज़ में। आइए अब आपको एक गज़ल सुनाते हैं,
रफ़ी जी की आवाज़ में। हो सकता है साथ में कोई और भी हो जी, हाँ पहचान लीजिएगा कि कौन है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं इस प्यारी सी गज़ल की ओर, और इस गज़ल के बाद आपसे फिर करते हैं प्यारी सी मुलाकात। सुनते रहिए और रेडियो गनस्टल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

है भाई हमारे बहुत जो श्रोता हैं बहुत अच्छे हैं, और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि कोई सी भी प्रकार की ऐसी बात न की जाए जिससे किसी को किसी प्रकार भी थोड़ी सी तकलीफ हो। तो इन चीज़ों से बच कर के आप अपना, हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है। तो आप सभी लोगों से भाई हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, मैं आपसे बड़ा ही हूँगा उम्र में, और अगर आप मेरा थोड़ा भी सम्मान करते हैं तो चैट बॉक्स की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो फिर हमने देखा है कुछ लोग कि चैट बॉक्स उन्होंने छोड़ दिया चैट बॉक्स में आना। तो ऐसा न करें कि कोई चैट बॉक्स में ना आए, आप सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परंपराएं हैं, और आपको आज़ादी है, लेकिन चूँकि ये एक हमारा एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें नारीगण असली परिवार है, 89.6 FM कोई FM नहीं है, ये एक परिवार है, और परिवार के सदस्य अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो परिवार टूटने का खतरा हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की बात कोई भी ना करे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, आप सभी समझदार हैं, और उम्मीद करता हूँ कि हंसी खुशी का माहौल रहेगा, अच्छा लगेगा। जी हाँ, तान्या जी लिखते हैं कि मुस्कुराने की आदत है, हंसने की नहीं, खुशी देने की आदत है, लेने की नहीं, गम छुपाने की आदत है, बताने की नहीं, मगर तुम्हारे आने से मैंने हंसना भी शुरू कर दिया। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एस कुमार जी हमारे साथ हैं, सर जी देशभक्ति गाना बिल्कुल सुना देंगे आपको, बिल्कुल सुनाएंगे भाई। एस कुमार जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, और जी सबको सिर्फ वक्त का इंतजार है। हेलो भाई, क्या बात है, आज जो आपने आज आप गोलियां नहीं मिसाइल चला रहे हो, घायल मैं पहले हो गया था। अरे दादा दादा, मैं सिर्फ गज़लें सुना रहा हूँ, गीत सुना रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पसंद आ रहा है। ये हमारी जो है वो क्या कहते हैं उसको, हमारा गुड लक है, हमारी हमारा सौभाग्य है कि आपको गीत पसंद आए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन आवाज़ की मालकिन नेहा जी बैराइस से आदाब करते हैं आपको, और कल आपकी आवाज़ नहीं सुन पाए उसका ज़रा अफसोस रहेगा। जैसा कोशिश किया कीजिए कि आवाज़ चाहे चार ही पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए तो अच्छा लगेगा। धर्मेंद्र मोहन जी हैं हमारे साथ, अल्फाज जैसा होना चाहिए कि अपने भी खुश हो दूसरे भी खुश। जी हाँ, तेरा गुंडा जी, जी सर नव्या ने इसीलिए चैट छोड़ा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और आकाश शर्मा जी, हम सारी से नहीं, सारी बोलने की कोई बात नहीं आकाश जी, बस मैंने एक बात कही कि हम सभी लोग ठीक ठाक रह पाएंगे, क्योंकि क्या साहब जिंदगी का भरोसा ही कितना है, क्या है, और अब तो सिर्फ देखना है। मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली अना देहलवी, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली, कभी तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली, मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, यानी अपना दिल न पेश कीजिए। हर किसी से मैं मोहब्बत नहीं करने वाली, जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, ऐसे लोगों की मैं इज्जत नहीं करने वाली, तूने दिल तोड़ दिया कर दिया मरहूम वफा, तूने दिल तोड़ दिया कर दिया मरहूम वफा, फिर भी मैं तेरी शिकायत नहीं करने वाली, खूने मजलूम से जो प्यास बुझाएं अपनी, मैं कभी उनकी हिमायत नहीं करने वाली, मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा, मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा, मैं मोहब्बत की तिजारत मतलब व्यापार, मैं मोहब्बत की तिजारत नहीं करने वाली, ऐना मेरी तबीयत में है शोखी, लेकिन शोखी मतलब चंचलता, ऐना मेरी तबीयत में है शोखी, लेकिन दिवसिकन कोई शरारत नहीं करने वाली। जी हाँ, मैं दिल टूट जाए ऐसी कोई शरारत नहीं करूँगी। जी हाँ,
बहुत से लोग यहाँ पर सर मायके हूँ तो मम्मी पापा के पास सारा टाइम बीत जाता है, फिर बच्चे जी हाँ उसी में फिर भाई हाँ बच्चों की भी जी हाँ जिम्मेदारियाँ। देखिए इस विश्व की हम बात करें तो हमको लगता है कि नारियाँ जो है वो वास्तव में पिस जाती हैं बेचारी, लेकिन मेरा एक अपना मानना ये है, हो सकता है गलत हो या सही है आप तय करें, जो मेरा मानना है देखिए आप हो सकता है मेरी बात से सहमत या असहमत हो, मैं एक चीज मानता हूं कि मैं एक बेटा हूं, एक भाई हूं, एक पति हूं, एक पिता हूं, एक अध्यापक हूं, एक आरजे हूं, एक भाई हूं, मामा हूं, कई सारे रिश्ते हैं। पंक्ति मुझे याद आती है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी का कुछ पल अकेले जीना चाहिए, मतलब हम इन सब के अलावा भी मैं मनु भी हूं, तो वो अपनी जिंदगी का कुछ लम्हा अगर आप अपने पास नहीं जी पाएंगे तो हमको लगेगा कुछ खाली खाली सा है। सबके लिए जीते जीते पता चला कि अपने लिए हम नहीं जी पाए, तो उम्मीद है कि हम अपने लिए 10-15 मिनट का समय जरूर निकालें जिसमें हमको खुशी मिलती है। अगर हमको खुशी मिलती है गाने में तो हम 24 घंटे में 15 मिनट निकालने की गाएंगे, 10 मिनट निकाल लें, कुछ भी जो हमको जो चीज़ हमको अच्छी लगती हो हमको लगता है कि करना चाहिए। आपको लगता है मतलब और मेरा मानना ये भी है कि जिस काम को आप दिल से करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए इंसान वक्त निकाल लेता है, वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त है बहुत प्यारा जिससे आपको बात करनी हो, आप बहुत मसरूफ़ हों, बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी दिन में एक बार फ़ोन लगा कर उससे बातचीत हो जाती होगी, क्या हाल है, कैसे हैं आप, इस दुनिया का सबसे आसान सवाल कैसे हैं आप, और इस दुनिया का सबसे कठिन जवाब बहुत अच्छा हूँ मैं, अच्छे हैं। और अच्छे कहाँ है साहब, कोई कोई नहीं अच्छा है, कुछ ना कुछ सबकी ज़िंदगी में चल ही रहा होता है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि मतलब अपनी ज़िंदगी का कुछ पल अपने लिए ज़रूर जिए। हम सब तो हो जाते हैं, मैं सब तो हूँ, लेकिन जो मैं हूँ मुझको लगता है कि मुझको उसकी भी कद्र करनी चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में जो अभी आप मायके में बैठी हैं तुमको याद आ गया, चलिए आप तो खैर मायके में बैठी हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर बैठे होंगे, अपने घर से दूर बैठे होंगे, आप तो खैर मायके में हैं। और अच्छा समझ में एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है मुझको कि बेटियों की शादी हो जाने के बाद अगर कोई पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई तो मैं कहता हूँ अपने घर गई, और अगर वहाँ पर हूँ और वहाँ उनके मायके से पूछा जाए कि कहाँ गई तो वो बोलती हैं कि अपने घर गई। और बेटियों को ये बड़ी इज्जत मिलती है कि उनका दो दो घर होता है, मायका भी उनका घर और ससुराल भी उनका घर, पतियों का सिर्फ एक ही घर होता है, हमारा एक ही घर है। अगर हमसे कोई पूछेगा कहाँ गए हो तो हम जा रहे हैं ससुराल जा रहे हैं, लेकिन उनका ये भी घर है, उनका वो भी घर है। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं भाई कि संस्कृत में बेटी को दुहिता कहते हैं। हमारे संस्कृत पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उन्होंने संधि विच्छेद किया और उन्होंने बताया कि दुहिता इसका मतलब हो जा होता है कि जिसको दूर कर देने में भलाई हो वो दुहिता। लोग कहते हैं बेटी की शादी हो जाए समझो गंगा नहाए, हमने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं ये गलत है, ये व्याख्या सही नहीं है दुहिता की। दुहिता का मतलब होता है द्विहिता, जो दो कुलों का हित करे वो दुहिता। बेटी
अपने घर का यानी अपनी मायके का विहित करती है और जहाँ जाती है उस परिवार को आगे बढ़ाती है। तो दो कुलों का हित करने वाली दुहिता होती है, बेटी होती है। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। हमारे यहाँ अवधि में कहावत कही जाती है कि बिन घर घरनी भूत का डेरा। तो बिना घर के आप चलिए, ये 15 दिन के बाद आइए, घर तो लगता है कि यहाँ पर इंसान नहीं। जी नहीं, अभी भी आपकी आवाज़ सुनी तो आ गए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये बात तो है, तभी तो जाते हैं टाइम निकाल कर, चाहे मम्मी की डांट ठीक हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में भी हम लोग यही करते थे, मम्मी पापा डांटते थे और हम वो काम करते थे जो हमको करना था, जिसमें खुशी मिलती थी। और मुझको लगता है कि वो बचपना हमको आज भी रखना चाहिए। जी तो बेटियाँ क्यों कहीं होती, कौन सा घर मेरा है, दोनों घर उनका है। जहाँ आप पैदा हुई वो घर आपका, जहाँ आपकी शादी हुई वो घर आपका। जी हाँ, हमारा भी ना है, मेरी मम्मी बोलती हैं तेरा घर है ना, ये मेरा है। क्या बात है कुमार जी, कोई बात नहीं, आप आइए, आप हमारे घर में रहिए। और जिंदगी ही तो घर है साहब, एक कहीं पढ़ा था, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब आके आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देखते हैं, अगर वो गीत हमको मिल जाता है तो आपको सुनाते भी हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि आप मायके में बैठी हैं और बहुत से लोग होंगे जो अपने घर से बाहर होंगे और उनको उनका घर बहुत याद आता होगा, होम सिक होंगे वो लोग, याद करते होंगे अपने घर को, तो चलिए जो अपने घर से दूर हैं ज़रा उनके दर्द को समझते हैं और इस दर्द को हम इस गज़ल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप समझेंगे।

मेरे पूज्य महाराज जी गाते हैं इस गीत को, मैं दूसरी बार आज गा रहा हूँ इस गीत को, 12 साल की यात्रा में, 10 साल की यात्रा में दूसरी बार। गोपाल भैया,

इट्स कुमार जी, आपकी ज़रा नवाजिश के लिए शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्दों का जादू तो आपके भी पास है, और निसंदेह आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हमें लगे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इट्स कुमार जी। और घड़ी की सुइयां क्या बताएं साहब, यही तो एक समस्या है कि बाहरी गज़ल एक घंटा कब बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता कि हाँ ये बीत गया। और चांद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, चांद को हुस्न गुलाबों को नज़ाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूँ कि तेरे साथ कटे उम्र मगर, चाहता हूँ कि तेरे साथ कटे उम्र मगर, वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाज़त दी है। जी हाँ, तो घड़ी की सुइयाँ बता देती हैं कि भाई बहारे गज़ल का जो समय है वो अब समाप्त हो रहा है। जी हाँ, और जी हाँ, मैं कभी शादी करूँगा तो मेरा एक ही बच्चा होगा, हम दो हमारे एक बिल्कुल। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं आकाश शर्मा जी, आपके आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सफल हो। और हम लोगों को ही बुलाइएगा बाराती चलने के काम, रेडियो 89.6 FM के जो परिवार के लोग हैं वो सब आपकी बारात में चलेंगे, झूम के ना गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। और जी खाना वेट कर रहा है जी, फिलहाल मेरा वेट 72 किलो है, खाना मैं 100 ग्राम ही खाता हूँ। और शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि मुझको लगता है ये दुनिया की वो कमाई है जो दुनिया की सारी कमाई से कहीं बेहतर है। आपके कारण अगर कोई हंस पड़ा, कोई मुस्कुरा पड़ा, तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है, इससे बड़ा सवाब का काम नहीं हो सकता, कोई पुण्य का नहीं हो सकता। और अगर आपके कारण किसी की आँख में आंसू आ जाएं, तो शायद आपका वो जो समय बीता वो दुर्भाग्यशाली बीता, वो पल अच्छा नहीं बीता। और उम्मीद यही करेंगे कि आप स्वयं भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने की, एक ऐसा जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना, रो लेना, सिसकना, उसको महफिल में गाते हुए देख रहे हो। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सब, और सबको अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध, हम सभी की अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ हैं साहब, और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई वो अच्छी होती है जिसमें होठों पे मुस्कान हो और हार जाने का खतरा ना हो। ये रहे कि लड़ाई लड़ रहे हैं, न वो बड़े न हम बड़े, हम दोनों बराबरी पर छूटेंगे, लड़ाई का ये जो मंजर होगा वो बहुत खूबसूरत होगा, ना आप हारे ना हम जीते, ये अच्छी बात हो सकती है। जी हाँ, बहुत दिनों बाद इसमें मिला था साहब, दिल लगाना तो लाजमी था, बहुत बहुत आभार बब्बाए। ओफो माँ जी क्या बात है, वासर जी आपने क्या जवाब दिया, क्या बात है, क्या बात है जी, बिल्कुल जिंदगी। और भाई अब शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल फिर 9:30 बजे बहारे गज़ल में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हेलो आरजे सिंपल, कैसे हो?
2: हेलो आरजे बीना, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: ठंडी बहुत है। मेरी आवाज से ही लग रहा होगा ना कि मैं बहुत खुश सी हूँ। एंड खुश होने के पीछे जानते हो क्या है कारण है?
2: क्या?
1: मैं जंगल सफारी करके आ रही हूँ। यू नो कि जंगल जहाँ पेड़, हवाएं और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग तरह के और अपनी आजादी से रह रहे होते हैं ना।
2: वाओ, इतनी ही आजादी से तो मैं भी रह रही हूँ, लेकिन एक आजादी जो चाहिए मुझे अभी वो पहाड़ों पे जाने की। जैसे आप जंगल के लिए एकदम से पैशनेट हो ना, वैसे ही मैं पहाड़ों पे जाने के लिए एकदम से पैशनेट रहती हूँ, लेकिन अभी जाने का चांस ही नहीं मिल रहा है।
1: यस, यू आर राइट सिंपल। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट कि जब नेचर की बात होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो,
2: चाहे
1: नदियां
2: हो,
1: हम हमेशा से अफेक्शनेट हो जाते हैं। एक अलग ही सा नाता है हमारा नेचर से, नेचर के साथ, और शायद वो नाता हमें आपस में भी फील होता है, ह्यूमन ह्यूमन का। ह्यूमन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर।
2: नेचर, या ऑब्वियसली।
1: एंड इस नेचर को फील करते हुए काश ऐसा होता कि हम भी पहाड़ों पे रह रहे होते, जंगलों में ही रह रहे होते।
2: हाँ, लकड़ी का घर होता, वुडन हाउस होता, और खास तौर पे वो जो पेड़ों पे घर बने नहीं होते, एक छोटा सा कमरा,
1: ट्री हाउस।
2: यस,
1: इट साउंड्स गुड। और वो बचपन के जो सुनहरे सपने होते थे ना कि पेड़ पे चल के घर बनाएंगे, और वो ट्री हाउस हमको बहुत अच्छा लगता था। बट रियली में हम कहाँ हैं यार, कभी नहीं पहुंच सकते जंगलों में। और अर्से सिंपल, आपको पता है कि अगर हम जंगलों में रहते तो लोग हमें क्या कहते?
2: दैट जनजाति टाइप?
1: Yes.
2: या फिर कोई आदिवासी?
1: हाँ, हम जनजातीय जरूर होते, लेकिन हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम अफेक्शनेट होते। क्यों आरजे सिंपल?
2: बिल्कुल, उतना ही प्यार, उतना ज्यादा लगाव, और उतना ही फीलिंग्स को समझना,
1: और एक दूसरे की वैल्यूज को केयर करना।
2: वाओ, ऐसे ही एक इंडोनेशिया की जनजाति है टोराजा, वहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट डेथ रिचुअल्स होते हैं, क्या आपको पता है?
1: हाँ, इस जनजाति के बारे में मैंने भी सुना है, जिसमें लोग मरते तो हैं शायद, लेकिन वो शायद सोल उनकी जाती है, बट उनका जो शरीर है वो अभी भी दुनिया में रहता है, शायद ऐसा कुछ।
2: हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और वो लोग उनको मरने का टाइटल नहीं देते हैं, वो लोग उनको टाइटल देते हैं बीमार होने का।
1: ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब शॉकिंग सा मुझे लग रहा है कि इंसान मर जा रहा है लेकिन उसे ये कहा जा रहा है
2: कि वो बीमार है।
1: वैसे दुनिया के हर कोने में इंसान एक ही सवाल से भागता है आरजे सिंपल, वो है मौत का सवाल।
2: बिल्कुल,
1: कोई उसे विज्ञान में छुपाता है, कोई धर्म में, तो कोई डर में।
2: और कहीं मौत का आखिरी सच माना गया, कहीं उसे भगवान का फैसला कहा गया, और कहीं उसे एक लंबी यात्रा, मीन्स लॉन्ग जर्नी।
1: यस, जस्ट इमेजिन कि अगर किसी समाज के लिए मौत कोई अंत ही ना हो,
2: अगर मौत सिर्फ एक पड़ाव हो जहाँ इंसान रुकता है, चलता नहीं।
1: बिल्कुल, और आज हम आपको किसी डरावनी कहानी में नहीं ले जा रहे, हम आपको एक आईना दिखाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया ने टोराजा जनजाति को देखा, जज किया, समझा, और कई बार गलत भी समझा।
2: और ये कहानी उस समाज की है जहाँ मौत को छुपाया नहीं जाता, उसे घर में जगह दी जाती है, जैसे हम अपनों को देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, और जो जीवित होते हैं उनको देते हैं।
1: यस, और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया इस जनजाति को देखकर एक साथ हैरान भी हो जाती है, और अनयूजुअल भी। इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। किसी किसी की तो मुझे लगता है कि जो रिएक्शंस है वो इतने शॉकिंग होते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भूत देख लिया हो।
2: ऑब्वियसली बहुत हॉरिबल होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ये कुछ लोगों के लिए, जो हम लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा दिल के प्यारे होते हैं।
1: यस,
2: तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टोराजा है कौन,
1: और ये जनजाति कैसे इतनी स्पेशल बनी, और आखिर वो ये रिचुअल्स करते कैसे हैं?
2: बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर ऐसे सोचने समझने बैठ जाएंगे तो।
1: टोराजा जनजाति इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी द्वीप के पहाड़ी इलाकों में रहती है। हरे भरे पहाड़, घुमावदार रास्ते और लकड़ी के ऊंचे घर, जिन्हें वे टोंगकोनन कहते हैं।
2: और ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, ये वंश, पहचान और आत्मा का सेंटर होता है।
1: यस, आत्मा का सेंटर ढूंढना इतना आसान तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ढूंढने चलो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो आत्मा का सेंटर ढूंढना कौन सी बड़ी चीज है। लंबे समय तक ये जनजाति बाहरी दुनिया से कटी रही। शायद इसी वजह से इनके विश्वास आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे।
2: और इन विश्वासों में सबसे गहरा विश्वास जो जुड़ा है वो है मौत से, मींस डेथ।
1: जब मौत को मौत नहीं कहा जाता तो एक अलग ही परिभाषा बनती है। टोराजा समाज में जब किसी की सांस रुकती है, दिल धड़कना बंद करता है, तो उसे मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता,
2: उसे कहा जाता है तोमकुला, यानी बीमार।
1: मतलब वह व्यक्ति अभी भी परिवार का हिस्सा है।
2: अच्छा अर्जिबीना, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन उनके लिए आत्मा अभी घर में होती है?
1: आत्मा तो घर में नहीं होती, लेकिन हाँ शरीर जरूर घर में होता है, और उस शरीर को प्रिजर्व करते हैं वो अपने तरीकों से। पहले के जमाने में एक केमिकल होता था जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं। वैसे इस केमिकल का आज भी यूज किया जा रहा है बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे एनिमल्स के ऑर्गन, ह्यूमन के ऑर्गन और ना जाने क्या क्या।
2: लेकिन उस टाइम पे ये केमिकल्स कैसे मिलते थे?
1: ठीक उसी तरह जैसे पहले कार्बन डेटिंग होती थी और आज भी होती है।
2: सो
1: ये केमिकल्स बहुत सारी चीजों से निकाले जाते हैं, और फॉर्मेलिन का प्रयोग करके वो पूरे शरीर को प्रिजर्व कर देते थे। इससे जो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर है, यानी कि सड़न क्रिया, ये रुक जाती है, और शरीर जो है उसे आप काफी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी और फ्रेश शरीर बना रहेगा।
2: अच्छा तो यहीं से शुरू होती है वो जिंदगी जो हमें बहुत ज्यादा हॉरिबल लगती है और उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार होता है।

0: मेजर करके उसकी केयर करते हैं कि वो शरीर हमारे घर में रहे। सुनने में थोड़ा अलग साउंड जरूर कर रहा है, लेकिन इससे एक चीज तो पता चल रही है कि अफेक्शन बहुत हाई है।
1: अब हम लोग इमेजिन करके देखते हैं मैम कि हम लोग घर में अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं और हमारे घर में एक डेड बॉडी रखी हुई है और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है। हम खाना खा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उस डेड बॉडी से हम बात भी कर रहे हैं, बात करने के बाद में फिर हम अपना डेली का काम कर रहे हैं।
0: उसे खाना ऑफर किया जा रहा है, उसकी केयर की जा रही है, उसको समय समय पर उसकी बॉडी पे फॉर्मेलिन लगाया जा रहा है। कितना नॉर्मल लग रहा होगा ना उन फैमिलीज के लिए। और वहीं अगर हमारे घर में एक चूहा भी मर जाता है तो घर में कुछ देर के लिए अशुद्धि हो जाती है ना।
1: कुछ लोग तो गंगा जल भी छिड़कने लगते हैं।
0: यस, पर ये थोड़ा सुनने में जरूर अजीब है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा होगा और शायद कुछ समय के लिए ही सही, उस इंसान से एकदम से रिश्ता नहीं टूटेगा।
1: आपको पता है तिब्बत में एक रिचुअल है कि वहाँ पे डेड बॉडीज को पहाड़ पे छोड़ के आते हैं और उस डेड बॉडी को चिड़िया चुग चुग के खाती है और ऐसे ही उनके यहाँ डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। एक वो रिचुअल देख लो और एक ये रिचुअल।
0: अच्छा आज सिंपल, हमारे पूरी दुनिया में अर्थ की अगर बात करें, अर्थ पे लाइफ अलग अलग तरह से ओरिजिनेट होती है और अलग अलग तरह से एंड होती है। लाइफ अगर है तो एंड भी है, डेथ भी है।
1: ऑब्वियसली
0: इट्स अ ट्रुथ
1: एंड इट्स अ साइकिल।
0: यस, इट्स अ साइकिल एंड इसमें किसी भी तरह का कोई हेर फेर या कोई चेंज नहीं हो सकता। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी आज सिंपल कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद ये दो चीजें होती हैं। साथ तो सभी निभा लेते हैं, लेकिन जिंदगी खत्म होने के बाद हम कितना याद करते हैं ये तो शायद किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट घर का इंसान आज डेथ हो जाती है, कल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक याद बन के रह जाता है। लेकिन इस जनजाति ने हमें ये मैसेज तो जरूर दे दिया कि लोग एकदम से नहीं जाते, धीरे धीरे
1: धीरे धीरे धीरे जाते। जैसे धीरे धीरे यादें जाती हैं, वैसे ही धीरे धीरे लोग भी जिंदगी से जाते हैं और इसीलिए टोराजा से मेरा अलग से अटैचमेंट हो चुका है।
0: और इतना ही नहीं, आज सिंपल वो जो डेड बॉडी जो उनके घर में होती है, जिसे वो लोग बीमार के नाम से बुलाते हैं, उसे वो लोग रोज खाना सर्व करते हैं एक प्रतीक के रूप में। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और यहाँ तक कि चाव उनकी फेवरेट चीजों को ऑफर करते हैं। जैसे कभी कभी कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट ला के देंगे, कोई चावल खाता है तो उसे चावल ऑफर करेंगे, उसे मीठा पसंद है तो उसे मीठा ऑफर करेंगे। और इतना ही नहीं, आज सिंपल लोग उनसे बातें भी करते हैं और जैसे वो सुन रहा हो, जैसे वो सारी चीजें फील कर रहा हो, क्योंकि उनके लिए वो सुन रहा है और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी है।
1: हाँ, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ दिन भर का अपना सारा काम करने के बाद में उनके पास आके बैठती है और अपने दिन भर का सारा स्केड्यूल उनसे शेयर करती है, फिर उसके बाद में सोती है। कितना स्ट्रांग बॉन्ड है ना दोनों के बीच में। लेकिन फिर जहन में एक ही सवाल आता है कि उनको घर में रखते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, सारे काम वो करते हैं, सारे प्रोसेस होते रहते हैं, तो उनको दफन कब किया जाता है? दफन किया भी जाता है कि नहीं किया जाता है,
0: या पूरी जिंदगी उनके साथ रहते हैं? ये सवाल आरजे सिंपल आपके जहन में, मेरे जहन में और मुझे लगता है व्यूअर्स के जहन में भी आ ही रहा होगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा सा अजीब है। जब परिवार तैयार होता है, और यहाँ तैयार होने का मतलब है फाइनेंशियली तैयार होना, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जब परिवार तैयार होता है इस बॉडी का, यानी कि इस बीमार शरीर का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है।
1: मैंने तो सुना है कि तोराजा में अंतिम संस्कार एक बहुत बड़ा आयोजन होता है।
0: यस, ऑफ कोर्स, ये अंतिम संस्कार एक आयोजन, जैसा आरजे सिंपल आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ ये आयोजन धूमधाम से मनाया जाता है, लोग सालों तक इसकी तैयारियां करते हैं, पैसे जमा करते हैं। जैसे हमारे देश में शादियों के लिए, मतलब बच्चा पैदा होते ही पैसे जोड़े जाने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पे डेथ के बाद पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उस आयोजन को करने के लिए। यहाँ पे भैंसों की बलि दी जाती है, माना जाता है कि भैंस आत्मा को परलोक ले जाती है।
1: इसका मतलब आप जितने ज्यादा अरेंजमेंट करेंगे, आप जितने ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप जितना ज्यादा फाइनेंशियली आयोजन को भव्य करने की कोशिश करेंगे, आपकी समाज में, उस तोराजा समाज में वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, सम्मान आपको ज्यादा मिलेगा।
0: यस, हम लोग में भी देखो, जितना ज्यादा हम लोग शादियों में खर्च करते हैं उतनी हमारी पहचान होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत पैसे वाला है, भाई इतना तगड़ा अरेंजमेंट था। ऐसा इस जनजाति में भी है, जितनी ज्यादा भैंसों की बलि दी जाती है माना जाता है कि उस इंसान ने उतना भव्य अरेंजमेंट।

0: या और इस आयोजन के बाद क्या आरजे सिंपल, क्या आयोजन तक ही ये जो यात्रा है सीमित रहेगी या उसके बाद भी कुछ होगा?
1: मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा हैं, इसी आयोजन पे कुछ रुकने वाला नहीं है। जैसे मैंने सुना है कि ये तोराजा लोग जमीन में दफन नहीं करते हैं, वे लोग पहाड़ काटते हैं।
0: जी मैंने भी सुना है कि चट्टानों में कब्रें बनाई जाती, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों में एक छोटे से कमरे की तरह एक कब्र बनाते हैं और वो पहाड़ों में यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानों में कब्रें बनाते हैं और वो कब्रें जो होती हैं वो एक कमरे के नुमा होती हैं और उसी के अंदर जो है उस बॉडी को, उस बीमार शरीर को वहां पे दफन किया जाता है।
1: लेकिन आपको नहीं लगता कि पहाड़ों को भी काटने में बहुत समय लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से बॉडीज को इतने दिन तक वो रखते हैं अपने घर में। पहले पैसों का कलेक्शन करते हैं, पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, चट्टाने काटते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल आयोजन नहीं होता ये अंतिम संस्कार का?
0: मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होगी वो इस आयोजन के लिए कुछ सालों तक इंतजार भी करता होगा। और जब बात हम उस शरीर को दफन करने की करते हैं तो लाश को चट्टान में बनी कब्र जो होती है उसमें रखा जाता है और बाहर रखी जाती है लकड़ी की एक मूर्ति जिसे वो ताऊ ताऊ कहते हैं। ये लकड़ी की मूर्ति हमें बताती है कि ये कब्र है वो किसकी है। बेसिकली एक आइडल बना के लकड़ी की मूर्ति का रख दिया जाता है
1: आइडेंटिफिकेशन के लिए
0: कि हाँ भाई ये कब्र किसकी है। और जब मरे हुए लोग लौटेंगे तो वो अपने मतलब लोगों को पहचान पाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है।
1: हाँ मैंने सुना है कि हर कुछ सालों में तो राजा लोग एक रस्म मनाते हैं जिसका नाम है मनेनी। मनेनी मीन्स जब मरे हुए लौटते हैं तो क्या वो लोग दफन करने के बाद भी बॉडीज को बाहर निकालते हैं?
0: हाँ कुछ सालों बाद जो पुरानी कब्रें होती हैं उन्हें खाली कर दिया जाता है और शरीर बाहर निकाले जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है, परिवार के साथ उन्हें खड़ा किया जाता है। ये डरावना नहीं है, ये बिल्कुल प्रेम है।
1: क्यों नहीं डरावना है? अब यहाँ आप देखिए, हम लोग कब्रिस्तान की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, रात के टाइम पे हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और ये लोग दफन करने के बाद में उस स्केलेटन को आप निकालते हो बाहर। बाहर निकालने के बाद में मैंने कई वायरल वीडियोस भी देखे हैं तो राजा के, अभी वो लोग सिगरेट मुंह में निकालते हैं, चश्मा पहनाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, पार्टी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, डांस करते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सीन नहीं हो जाता है?
0: यस, लेकिन जिसकी रस्में हैं वो अपनी रस्मों को पूरा करता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड जरूर है सुनने में कि उस मरे हुए शरीर को कुछ सालों बाद बाहर निकाला जाता है और उसके साथ परिवार वालों का फिर से मिलन होता है। ये उनकी एक प्रथा है और प्रथाएं हमेशा अलग होती हैं।
1: जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई शहर से बाहर चला गया तो रक्षाबंधन और होली पे घर आता है, ऐसे फिर इन मरे हुए लोगों को डेथ बॉडीज का वो रीवेलकम करते हैं।
0: यस, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं जैसा कि आपने कहा, उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है। और आपको पता है आरजे सिंपल, ये जो चट्टानों में इनकी कब्रें बनती हैं, इन कब्रों के बाहर इनकी फैमिली की फोटोज भी लगाई जाती हैं।
1: क्यों?
0: कई कई तो कब्रें इतनी बड़ी बनाई जाती हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ डाल दिया जाता है। ऐसी कब्रें भी बनाई जाती हैं जिससे कि पता चले कि इस परिवार के लोग इस कब्र में ही हैं।
1: और जैसे एक फैमिली पूरा घर में रहता है, ऐसे ही पूरी की पूरी फैमिली एक कब्र में है।
0: और आरजे सिंपल, जैसे कि हमने ये बात की कि जो तोराजा जो जनजाति है वो किसी इंसान के मरने के बाद जो कहते हैं ना कि बॉडी को प्रिजर्व करती है काफी समय तक, तो वो जो प्रिजर्वेशन का टाइम है वो कभी कभी बहुत लंबा चला जाता है। जानती है क्यों?
1: क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, पैसे इकट्ठा करने में दिक्कत होती है।
0: और कई बार आज सिंपल ऐसा भी होता है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करते करते घर में एक दो और मौतें हो जाती हैं और एक साथ घर में दो दो तीन तीन डेड बॉडीज को बीमार व्यक्ति की तरह ट्रीट करना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ रहना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने रिचुअल्स को वो लोग दिल से फॉलो करते हैं और ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है।
1: मैंने सुना है कि तोराजा जनजाति का मानना है कि जब तक सही से विदाई नहीं होगी तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्या ये सही है?
0: बिल्कुल। और मौत एक अंतिम यात्रा नहीं है उनके हिसाब से। आधुनिक दुनिया जो है उसकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, जैसे कि मोबाइल कैमरा और बहुत सारे जो हमारे टूरिस्ट हैं वो उनकी अलग अलग फुसफुसाहट रहती है कि कैसी जनजाति है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए। इस संस्कृति को ग्लोबल बना दिया गया है, लोगों तक पहुंचा दिया गया है, लोग इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। पर सवाल ये है, क्या परंपरा इन सब चीजों से बदली? तो आंसर है नहीं। क्यों आर जी सिंपल?
1: शायद कुछ हद तक, क्योंकि आजकल डेड बॉडीज को सेफ रखने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और कई परिवार बॉडीज को घर में कम समय रखते हैं।
0: लेकिन आत्मा वाला विश्वास आज भी जिंदा है। लोग थोड़ा सा परंपरा को कम कर चुके हैं, कम मतलब कि बहुत ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखते, लेकिन ये जो परंपरा है ये आज भी वहाँ पे बरकरार है। नई जो पीढ़ियां हैं वो अपनी ही जो कहते हैं ना कि पीढ़ी से सवाल करती हैं, लेकिन पूरी तरह इन परंपराओं को बदला नहीं गया है, यानी कि आत्मा को धीरे धीरे विदय किया जा रहा है।
1: हमने अपना रिएक्शन तो जान लिया, हमने तो राजा के नई जेनरेशन का भी रिएक्शन जान लिया, और हम लोग तो पब्लिक रिएक्शन से भी अवगत हैं ही। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में और ग्लोबल कवरेज की गई है, क्या ये 100% सही है?
0: अब ग्लोबल कवरेज की बात करें तो हर इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सप्लोर करें, दुनिया को जाने। अभी विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या है? विज्ञान हर जगह चीजों को डिस्कवर करता है, जो चीजें अंडर कवर हैं उनका कवर हटा के उनके अंदर छुपा जो विज्ञान है वो निकालता है। और कहीं ना कहीं यहाँ भी एक विज्ञान है, कई समय तक बॉडीज को अगर वो रख रहे हैं, हो सकता है उन बॉडीज से आने वाले समय में उस समय की जो प्रॉब्लम थी उससे लड़ने की जो उनकी क्षमता थी उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ये एक विज्ञान के लिए एक बड़ा एक क्लू हो सकता है कि उस समय लोगों की बॉडी कैसी थी, कैसे वो सस्टेन कर सकते हैं। तो विज्ञान के लिए बॉडी की प्रिजर्वेशन हमेशा से सही रही है, लेकिन जब दुनिया के बात करते हैं तो दुनिया इस चीज को थोड़ा सा वियर्ड तरीके से देखती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और वो जहां तक मुझे लगता है कि कर पाना सबके लिए मुश्किल है। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने रिचुअल्स की तो हम बहुत सपोर्ट करके कहते हैं कि हमारा रिचुअल ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। जैसे हमारे रिचुअल्स के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हमारी सोच है, वैसे ही मुझे लगता है हर किसी की परंपरा के लिए हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट का कॉर्नर होना चाहिए। वी डोंट हैव टू डिसओबे देयर रिचुअल्स। हो सकता है थोड़ा वियर्ड हो, लेकिन उनका वियर्ड होना ही उनकी पहचान है। क्यों आर जी सिंपल?
1: जी हाँ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस के बाद में, इतनी सारी बातों के बाद में मेरे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि तो राजा की जैसे और भी कोई जनजातियां हैं क्या? कोई और भी समाज ऐसे अंतिम संस्कार करता है क्या, या फिर उनके अलग डेथ रिचुअल्स हैं क्या?
0: बहुत सारे, हम मौत के कई सारे तरीके मतलब देख चुके हैं। लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं और उनके जो कहते हैं ना कि उनके अंतिम संस्कार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं पे दफनाया जा रहा है, कहीं पे जलाया जा रहा है, और कहीं पे उन्हें मिट्टी दी जा रही है, अलग अलग तरीके हैं। कहीं कहीं हम ताबूत में डाल के रखते हैं, और ये माना जाता है कि शरीर जो है वो आखिरी दान है, और ऐसा कई जगह किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम आज सिंपल अपना थोड़ा सा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, रुक करें तिब्बत की ओर, तिब्बत में शव को पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, पहाड़ों पे रख दिया जाता है शव को, और वो जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उस शव को खाते हैं। वहां पे उनकी ये विचारधारा है कि अगर शव कोई इंसान मर गया है तो वो किसी का खाना बन जाए और इससे कई लोगों का पेट भर जाए। हम उसको जला देंगे तो वो एक वेस्ट होगा, और अगर हम उस शव को पहाड़ों पे रख देंगे तो बहुत सारे जानवर उसे खा के शायद उसे दुआएं देंगे।
1: ऐसे ही मेडागास्कर में भी कुछ है, मुझे अच्छे से वहाँ की स्टोरी नहीं पता, लेकिन वहाँ भी अंतिम संस्कार के टाइम पर शोक नहीं उत्सव मनाया जाता है, एकदम तो राजा जनजाति की तरह,
0: और उस उत्सव को कहते हैं डे ऑफ द डेथ। और हाँ, मैक्सिको में मौत डर नहीं एक रंग है। और अब थोड़ा वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री में, क्यों आरजे सिंपल?
1: बिल्कुल,
0: और हमारे देश में मौत के भी बहुत सारे रंग हैं, बस हमने थोड़ा सा कहते हैं ना कि डर से देखा है उस रंग को। थोड़ा फील करें तो शायद लगेगा कि नहीं, मौत भी एक सुहाना सफर है जिसपे हम सब खुशी से जा सकते हैं। और ऐसा वाराणसी में लोग कहते हैं कि मौत जो है वो
1: मोक्ष का रास्ता है।
0: बिल्कुल, और यादों में हम गीत गुनगुनाते हुए किसी को याद कर सकते हैं। सपोज कोई मर गया है हमारा अपना, तो उसे हम वाराणसी में जाके गीतों के माध्यम से गा के याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं?
1: सही कहा आपने। आज हमने तो राजा की बात की, लेकिन सच ये है कि तो राजा अकेले नहीं है। दुनिया भर में इंसान ने मौत को समझने के लिए अजीब अजीब रास्ते चुने। कहीं लाशों के साथ नाच होता है, कहीं उन्हें आसमान के हवाले किया जाता है और कहीं उन्हें घर में सुलाया जाता है।
0: हमने आज मौत को डर के चश्मे से नहीं, संस्कृतियों की आंखों से देखा है। और ये आंखें जब संस्कृतियों का जो कहते हैं ना कि आड़ में कोई चीज देखती हैं, तो वो खूबसूरती से भरी हुई होती है। और आज मौत के ऊपर से जो डर का साया था, मुझे लगता है वो हट चुका है।
1: और शायद यही सबसे मुश्किल काम है, बिना जज किए समझना, क्योंकि हो सकता है जो हमें अजीब लगे वही किसी और के लिए सबसे पवित्र चीज हो, और जो हमें सामान्य लगे, एकदम नॉर्मल लगे, वही किसी और के लिए अमानवीय हो जाए।
0: बिल्कुल, हमने इतने सारे रिचुअल्स को समझा, लेकिन अगर हम अपने रिचुअल्स के साथ उन रिचुअल्स की तुलना करें तो हमें वो रिचुअल्स थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे रिचुअल्स कैसे लगेंगे? शायद बहुत ही वाहियात। और बस इसे एक ही पैमाने पे देखा जाए कि रिचुअल्स जैसे भी हों, जिसके भी हों, वो उसके लिए खास हैं, और हमारे जैसे हमारे लिए खास हैं, वैसे उनके रिचुअल्स उनके लिए खास हैं।
1: हाँ, मौत सबकी एक है, लेकिन मैं भी सबसे यही कहना चाहूंगी कि उनके रिचुअल्स को उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनके कल्चर को उनको फॉलो करना चाहिए, और जिंदगी में ऐसे ही हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए।
0: और जो मौत की हकीकत है उसे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कमियों को ना ढूंढते हुए हम उसको एक रियलिटी ऑफ लाइफ समझें कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारा जाना तय है। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता लिखी जाए तो वो मौत होगी,
1: ना आगे कुछ और ना पीछे कुछ भी। हाँ, मृत्यु एक सुंदर कविता है, ना कोई शब्द ना कोई सरगोशी।
0: निर्वात एक हादसा कविता कि जमीन ना सुख ना दुख, लिखने वाला एक अंतिम रेखा खींचेगा, धैर्यवान होगा काल, परिस्थिति और जगह जहाँ इसे लिखा जाएगा।
1: इसे लिख जाने के बाद शब्द सब अपनी समापन यात्रा पर ठिठके रहेंगे। मौन लिखना चाहेगा मगर ना लिख सकेगा, ना लिख सकेंगे कुछ और गहरा।
0: सन्नाटा होगा शोक गीत, कविता अब महाप्रयाण पर जाएगी और मौत एकदम अलग सी दुनिया में चली जाएगी।
1: आपने आज क्या सीखा ये आप तय करेंगे।
0: मिलेंगे हम लोग अब अपने अगले एपिसोड के साथ। आप तब तक कुछ नया सोचिए और हम भी कुछ नया लेके आते हैं आपको नया एडॉप्ट कराने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, तेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा, तेरे अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे।

89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो के प्यारे श्रोतागण, आप सभी को आरजे बेनाम का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आरडी बर्मन जी के बारे में। प्रसिद्ध संगीतकार आरडी बर्मन यानी कि हमारे प्यारे पंचमदा।

आरडी बर्मन जी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म 27 जून 1939 में हुआ था। मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन व इंदिरा की ये इकलौती संतान थे। संगीत तो इन्हें अपने परिवार से विरासत के रूप में मिला था।

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। दम मारो दम जैसे अनेकों लोकप्रिय गानों को संगीत देने वाले पंचम दाजी को कौन नहीं जानता। गुलजार जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, पंचम के संगीत में नए नए प्रयोग होते थे, इसलिए आज भी उन्हें प्रोग्राम पुराना नहीं लगता। कहते तो है नाम में कुछ नहीं रखा है, मगर इनके नाम पंचम दा के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बता दे, ये नाम दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार जी ने दिया है। आरडी बर्मन अगर कुछ भी गुनगुनाते थे तो उसमें पा अक्षर का अक्सर इस्तेमाल करते थे। इसको अशोक कुमार ने नोटिस किया और उनको पंचम नाम दे दिया। धीरे धीरे ये नाम इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि दुनिया भर के लोग इन्हें राहुल के नाम से कम और पंचम दा के नाम से ज्यादा जानने लगे।

आरडी बर्मन उनके करियर का पहला ब्रेक 1959 में मिला था राज फिल्म के लिए, मगर ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके दो साल के बाद फिल्म छोटे नवाब में संगीत देने का मौका मिला। बाद में 1965 में भूत बंगला में एक्टिंग भी की। इनकी असली पहचान भूत बंगला से ही हुई। इसके गाने तो लोग आज भी गुनगुनाते हैं, ओ हसीना जुल्फो वाली, ओ मेरे सोना रे सोना, दीवाना मुस्सा नहीं जैसे गाने इस फिल्म में पंजम दा ने दिए। इसके बाद पंजम दा ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले वनराज भाटिया ने एक बार कहा था कि पंचम दा एक जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर थे। पंचम दा ने अपने संगीत पर की हुई 18 फिल्मों में आवाज दी।

0: एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य है। उनके पिता महान संगीतकार सचिन देव बर्मन मुंबई के जुहू के एक पार्क में अक्सर टहलने जाया करते थे। एक दिन वो सुबह टहलकर घर आए और बोले, पंचम आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं रोज टहलने जाता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं, देखो एसडी बर्मन जी जा रहे हैं, लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। लोग कह रहे थे कि देखो आरडी बर्मन के पिताजी जा रहे हैं।
1: दीवाना

आरडी बर्मन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सहायक के रूप में की। शुरुआती दौर में वो अपने पिता के साथ संगीत सहायक थे। उन्होंने अपने फिल्म करियर में हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगू और मराठी में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने अपने आवाज का जादू भी बिखेरा। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई सफल संगीत दिए जिसे बकायदा फिल्मों में प्रयोग किया जाता था।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो

दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। इसके बाद पंचम दा बेहद दुखी रहने लगे और घर छोड़कर एक होटल में रहने लगे। इस गम के माहौल में एक गाना बनाया जो बेहद प्रसिद्ध हुआ, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हमें चलते जाना है।

तालाक के बाद उनकी नजदीकियां आशा भोसले से बढ़ने लगी। दोनों की जिंदगी का दर्द एक ही था। आशा जी भी अपने तालाक को लेकर बेहद दुखी थी। 1956 में फिल्म तीसरी मंजिल के गाने में दोनों की मुलाकात हुई और बाद में दोनों की शादी हो गई।

कुछ वर्ष तो बहुत ही अच्छे बीते, मगर आरडी बर्मन जी के शराब और सिगरेट की लत से आशा जी बहुत परेशान रहने लगी। दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे और आशा जी अलग रहने लगी। आखिरी समय में आरडी बर्मन की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई, उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। बाद में विधु विनोद चोपड़ा जी ने उनकी मदद की और 1942 अ लव स्टोरी में काम दिया, जो बेहद सुपरहिट रही।

फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे, लेकिन वो इस कामयाबी को देख नहीं पाए। 80 के दशक के अंत में उन्होंने बहुत ढेर सारे डाउनफॉल देखे। गायक भूपिंदर ने बताया, वो आदमी जो हमेशा ढेर सारे दोस्तों से घिरा रहता था, वो अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेला रह गया और मात्र 54 वर्ष की उम्र में 4 जनवरी 1994 में उनका निधन हो गया।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल।

0: नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए
2: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।